सुप्रभात। मिडी वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। श्रोता, हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस समय सुबह के ठीक 5:48:30 हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: 简单。
1: यह शाश्वत सत्य है, जीवन और मृत्यु इस मृत्युलोक में अवश्य प्राप्त होता है। जीवन के साथ मृत्यु भी सत्य है, इससे कोई बचा नहीं है। लेकिन मनुष्य जीने के लिए प्रतिबद्ध है, आतुर है, कोई मरना नहीं चाहता। जीने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता है और क्या नहीं सहता है, ऐसे संघर्ष करते हुए ही वह जीवन में प्रेम और श्रेय का हकदार होता है। वेदों में वर्णित है कि देवता कर्मशील को ही चाहते हैं, स्वप्नशील और अकर्मण्य को नहीं। संपदाएं प्रमाद रहित कर्म करने वाले के पास ही जाती हैं। श्री कृष्ण गीता में संघर्ष करने से मुंह चुराने वाले को कायर और अपयश का पात्र बताते हैं। ईशोपनिषद के अनुसार कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। कर्म ही जीवन है, अकर्मण्यता मृत्यु है। मनुष्य के कर्म करते रहने में ही उसके परिवार, समाज और राष्ट्र का भला निहित है। सबकी भलाई के लिए कर्म करते हुए जीना ही जीने की उत्तम राह बताई गई है। वैसे कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, सात्विक कर्म, राजस और तामस। सात्विक कर्म वे हैं जो आपके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, जिनसे सभी का भला होता है, जो निस्वार्थ भाव से और अहंकार रहित होकर किए जाते हैं। राजस कर्म वे कर्म है जिनसे अपना लाभ हो परंतु दूसरे की हानि ना हो और जिनके करने में दंभ भी हो। तामस कर्म वे कर्म हैं जो विवेकहीनता पूर्वक, नृशंसता पूर्वक दूसरों को क्षति पहुंचाने और समाज में अव्यवस्था फैलाने के लिए किए जाते हैं। मनुष्य को केवल सात्विक कर्म करने की इच्छा करनी चाहिए, उसी में उसके जीवन की सार्थकता निहित है और इसी के माध्यम से उसे आनंद की प्राप्ति भी होती है। सबके कल्याण का चिंतन कर कर्म करता हुआ मनुष्य धन, वैभव और यश को प्राप्त करता है। आज तक किसी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन को न ही सराहा गया है और न ही सफल कहा गया जो मात्र अपने स्वार्थ के लिए जिया या जिसने जीवन में दूसरों को क्षति पहुंचाई हो। ईशोपनिषद का पहला मंत्र आदिकाल से हमें जीवन की राह दिखा रहा है। उसके अनुसार सभी में परमात्मा का वास है, इसलिए किसी को दुख मत पहुंचाओ और तुम्हारे पास जो भी है उसे दूसरों को देते हुए और बांटते हुए मिलजुल कर भोग करो। दूसरे के धन, स्त्री, वैभव आदि से ईर्ष्या मत करो। यह धन आज तुम्हारे पास है या दूसरे के पास है, वह सदा नहीं रहने वाला है।
0: ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए कृषि सूचनाएं।
2: किसान भाइयों नमस्कार। फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों से यानी कि फसलों और वृक्षों से लाभ प्राप्त करने की विधि को कृषि वानिकी कहा जाता है। इसमें हम पेड़ों के साथ साथ शाकीय पौधे, झाड़ियाँ, फल फूल एवं अनेक तरह के वृक्षों को लगा करके लाभ लेते हैं। कृषि वानिकी का अर्थ है खेतों पर वनों के विकास एवं विस्तार से है। कृषि वानिकी कृषकों को अकेले अथवा भागीदार में अपने संसाधनों के संबंध में अपनी भूमि पर वन लगाने अथवा प्रबंधन करने की दिशा में किया गया एक संकल्प है। कृषि वानिकी के उद्देश्य क्या होते हैं इस संबंध में आप जान लें। वर्षा के जल का प्रभावी उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन लेना इसका मुख्य उद्देश्य है। बेकार बंजर भूमि का वैकल्पिक उपयोग कर पोषक तत्वों के जमाव से भूमि का सुधार भी इससे होता है। बेरोजगारों एवं कृषि श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी

0: इसका प्रमुख कार्य है पर्यावरण पारिस्थितिकी जलवायु को सुव्यवस्थित कर सुधार करना भी कृषि वानिकी का उद्देश्य है। किसान अपनी जमीन से आवश्यक वस्तुएं जैसे भोजन, फल, चारा, जलावन, लकड़ी इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। निम्न भू उर्वरता, अधिक क्षरण और भू अपरदन से प्रभावित भूमि के टिकाऊपन तथा भूमि उत्पादकता में बढ़ोतरी इससे कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि वानिकी का विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भवन निर्माण के लिए इससे सस्ती और हल्की लकड़ी प्राप्त होती है। स्थानीय लोगों के लिए जलावन हेतु लकड़ी मिल जाती है, पशुओं के लिए चारा भी मिलता है और हरी खाद भी प्राप्त हो जाती है। ठंडी हवाओं से फसलों की सुरक्षा भी होती है। कृषि वानिकी हेतु जो आप पौधे का चुनाव करेंगे या पेड़ का चुनाव करेंगे वो शीघ्र बढ़ने वाला होना चाहिए, जिससे कि कम समय में किसान को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। सीधा तना वाला होना चाहिए ताकि ज़्यादा छाया नहीं फैलावे, और ज़्यादा छाया नहीं फैलाने से हमारी मुख्य फसल को नुकसान नहीं हो। कृषि वानिकी में लंबी जड़ों वाले वृक्षों को उगाना बहुत लाभदायक होता है। जड़ें भूमि में नीचे जाकर पोषक पदार्थ ऊपर लाती हैं, जिससे कि अन्य फसलों को भी लाभ होता है। दलहनी बीज वाले जो वृक्ष होते हैं कृषि वानिकी में वे बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि वे वायुमंडल से नेत्रजन इकट्ठा करते हैं और उससे मुख्य फसल को भी प्राप्ति हो जाती है। कम से कम शाखाएं निकले और जमीन पर से ही अधिक घनी न हो, इस बात का आप ध्यान रखते हुए वैसे वृक्षों को साथ लगावें। कम पोषक तत्व, सिंचाई और देखभाल की आवश्यकता पड़े उस तरह के पेड़ों को भी लगाना चाहिए। प्रतिकूल दशाओं में भी सफलतापूर्वक जो पेड़ वृद्धि कर सकें कृषि वानिकी के लिए आवश्यक होते हैं। कृषकों के लिए उसकी पत्तियां, लकड़ी आदि लाभदायक हो, पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा प्रदान कर सकें, रोगों के प्रति रोग रोधी हो, छाया से सहनशील हो, ऐसी फसलें और ऐसे वृक्षों को ही लगाना चाहिए। जड़ें एवं उनकी वृद्धि की विशेषता ऐसी होनी चाहिए जिससे भूमि की विभिन्न सतहों पर कृषि फसल प्रभावित न हो। पौधों का प्रत्येक भाग किसानों के लिए उपयोगी है, तो इसलिए आप कृषि वानिकी का प्रयोग कर सकते हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। इससे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ईंधन, चारा, पत्ती और रेशा, गोंद आदि प्राप्त हो सकता है। भूमि कटाव की रोकथाम हो सकती है। कृषि के साथ यदि आप पशुपालन करते हैं तो कृषि वानिकी इसके लिए वरदान है। इस पद्धति के द्वारा ईंधन की भी प्राप्ति होती है, इमारती लकड़ियों की भी प्राप्ति होती है। तो यदि किसानों की आय दोगुनी करनी है तो इसके लिए कृषि वानिकी आवश्यक है।
1: कृषि सूचनाएं कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता कृषि वानिकी। जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में हिंदी समाचार का प्रसारण होगा, इसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2020

0: 25 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा

0: नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देश वंदना से।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आगे प्रस्तुत है कुछ भजन।

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ, मुख्य स्वर है सुरेश वाडेकर का।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया।

राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य सूचनाएं। विषय है मोटापा में छुटकारे, योग कितना कारगर। इस विषय पर डॉक्टर सीमा गुप्ता से बातचीत कर रहे हैं अनिल कुमार तिवारी।
1: स्वास्थ्य चर्चा सुनने वालों को अनिल का नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम की मेहमान हैं सीमा गुप्ता जी, जो हमें बताएंगी मोटापा से छुटकारा, योग कितना कारगर विषय पर। तो सीमा जी, आप जरा हमारे सुनने वालों को बताएं कि मोटापा क्या है और ये क्यों होता है लोगों में, किन किन कारणों से होता है।
2: सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आजकल मोटापा एक आम समस्या है और मोटापा में शरीर के भार में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। खाना अधिक मात्रा में खाना, सही आहार का चुनाव नहीं करना, खाने के समय टीवी या मोबाइल का प्रयोग करना, इंटरनल ग्लैंड आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं अगर वो सही से कार्य नहीं करेंगी तो भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रभावित होगा, जीवन में क्रियाशीलता की कमी का होना और नींद की कमी, ये कुछ संभावित कारण हैं जिसकी वजह से मोटापा होना संभव हो सकता है।
1: तो जो मोटापा होता है, इससे योग हमें किस तरह से छुटकारा दिला सकता है, किस तरह से मोटापा को कम करने में मदद कर सकता है, जरा ये हमें बताएं।

0: सबसे पहले तो हमने जो संभावित कारण लिए उस पर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे कारण का को हम लोग उस पर सही ढंग से कार्य करें, उसके बारे में सोचें। और रही जहाँ तक योग की बात, तो योग में सबसे पहले तो खाना खाने के बाद आप वज्रासन में जरूर बैठें, जिससे कि खाना जो है वो आपका आसानी से पच सके। और साथ ही साथ अगर संभव हो तो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। और कुछ ऐसे आसन हैं जो कि हमारे पेट के तंत्र को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखते हैं और साथ ही साथ मोटापा से भी हमें दूर रखते हैं। तो जैसे नौकासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, धनुरासन, त्रिकोणासन, साइकिल चालन, ऐसे कुछ आसन हैं जो कि आपको मोटापा से दूर रख सकते हैं। और अगर मोटापा है भी तो उसमें अवश्य अगर नियमित रूप से इन आसनों को किया जाए तो उसमें सुधार देखा जा सकता है।
1: तो मोटापा के बारे में कहा जाता है सीमा जी कि ये बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देने वाली समस्या है। तो कौन कौन सी बीमारियां इससे हो सकती हैं, उनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से योगासन कारगर हो सकते हैं, इसके बारे में जरा बताएं।
0: मोटापा से जहाँ तक बीमारियों का प्रश्न उठता है, तो जैसे आज मधुमेह जैसी समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर, फिर आपका हृदय रोग से संबंधित समस्याएं, आर्थराइटिस, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं मोटापा इसकी बहुत बड़ी वजह है। तो हम कुछ आसनों को कर करके अगर पता चल जाता है कि मोटापा अगर किसी संभावित बीमारी से है, तो उस बीमारी से संबंधित अगर कुछ आसनों का चुनाव करें, उस सेट का हम प्रतिदिन अभ्यास करें, उसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास होंगे, तो निश्चित तौर पर मोटापा से दूर रहा जा सकता है या उसका निराकरण संभव है।
1: तो जरा सा उन आसनों की चर्चा अगर आप साथ साथ करें कुछ बीमारियों के साथ संक्षेप में।
0: अगर जैसे मधुमेह जैसी समस्या को हम ले लें, तो मधुमेह जैसी समस्या में तो अगर हम आसनों की बात करें तो अर्धमत्स्येन्द्रासन एक बहुत ही उत्तम आसन है, पश्चिमोत्तान आसन, ये सारे आसन किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ हम ध्यान के अभ्यास करें, जैसे हम ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसके साथ ही आप जब बैठें तो श्वास के ऊपर सजगता रखें, श्वास के प्रवाह को देखें, इस तरह से आप विचारों से भी छूटेंगे और जब मन और मस्तिष्क आपका स्वस्थ रहेगा तो निश्चित है कि जो बीमारियां हमारे मन और मस्तिष्क के सही नहीं रहने की वजह से होती हैं, उन बीमारियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।
1: तो सीमा गुप्ता जी, आपने हमारे कार्यक्रम में मोटापा क्या है और मोटापा से छुटकारा में योग कितना कारगर हो सकता है, इस विषय पे बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सुनने वालों को भी हमारा धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य सूचनाएं कार्यक्रम में अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे मोटापा में छुटकारा छुटकारे के लिए योग कितना कारगर, इस विषय पर डॉक्टर सीमा गुप्ता से बातचीत कर रहे थे अनिल कुमार तिवारी। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं आपको बता दें, आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हालचाल। सुबह 7:15 पर कुछ गजल का आनंद उठा सकते हैं आप चंदन कुमार श्रीवास्तव की आवाज में। और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:25 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी से शास्त्रीय गायन राग

हम अंजुमन पेश करेंगे सुबह 9:10 पर। सुबह 10 बजे रसमंजरी कार्यक्रम में आप आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का, और सुबह 10:30 पर सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें प्रस्तुत करेंगे रत्ना अरुण और मोहम्मद इनामुद्दीन की आवाज में चंद गजल, और 11 बजे दिन में सुनेंगे फिल्म संगीत।

दोपहर 12 बजे का समय है, कार्यक्रम बिहार के लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे संस्कार गीत की 10वीं कड़ी। महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर।

संध्याकालीन सभा में शाम 4:30 पर आप सुनेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। मैथिली कार्यक्रम भारती का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे शाम 6:30 पर और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं शाम 7:00।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात्रि 8:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम बातों बातों में।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेशः हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमं अन्तिमं प्रचरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योग

0: लोगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 सप्तविंशतितमं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमन्त्री अमितशाहः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबंगालराज्ये दक्षिण 24 परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य परीक्षां कुर्वन्ति, येषु 2 निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 4 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
0: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली

आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की

भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के 1 साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल। श्रोताओं, हाल चाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 मई और इतिहास के पन्नों में दर्ज है 21 मई की ये तारीख कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए। आज सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में मनाया जाता है। 1991 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दुखद हत्या हुई थी। उनकी स्मृति, उनकी याद में और देश में आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन, ये दिवस मनाया जाता है। साथ ही आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 21 मई को वैश्विक स्तर पर चाय के आर्थिक और स्वास्थ्य लाभों को जश्न मनाने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस भी आज के ये दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में संस्कृतियों की विविधता को समझने और बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो 1904 में आज ही के दिन पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा का गठन किया गया था। 1881 में अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना क्लेरा वॉटन द्वारा आज ही के दिन की गई थी। श्रोताओं, ये तो थी 21 मई से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। बातें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल सुनते ये एक प्यारा संगीत किशोर कुमार की आवाज में।

अभी आप चंदन कुमार श्रीवास्तव की आवाज़ में सुन रहे थे ये गज़ल। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आज सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी से शास्त्रीय गायन। इनसे हम सुनेंगे राग रामकली। तबले पर इनका साथ दे रहे हैं नाना मूले। तो लीजिए सुनिए राग रामकली पंडित भीमसेन जोशी से।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी से शास्त्रीय गायन राग रामकली। तबले पर इनका साथ दे रहे थे नाना मूले।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेल्ला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य

0: सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिक बेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ उर्मी। प्रियंका
1: जी, जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह 8 सुबह 10 बजे लोग

0: भवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
1: अमरीका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, CBSE की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने CBSE के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, UGC नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति

0: their lives. And with that, we end the morning news. Have a great day. आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पांच मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुजाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हल्के में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। इससे कबल कल भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को खुसूसी कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया, जो बाहमी ताल्लुकात में एक अहम कदम है। दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इनमें ज़राअत, अहम मादनियात, आयुर्वेद, साइंस, टेक्नोलॉजी और भारत से भारतीय नर्सों के इटली जाने में सहूलत पैदा करना शामिल हैं। दोनों मुल्कों ने टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने की रोकथाम से मुतालिक मुफाहिमत नामों पर भी दस्तखत किए। रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुश्तरका अखबारी बयान में कहा कि इटली दुनिया भर में डिजाइन और दुरुस्तगी के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान अपने हुनर, सलाहियत और कम खर्च इख्तिरा के एक पावर हाउस की है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली डिजाइन तैयार करने और दुनिया के लिए मुहैया कराने के उसूल पर आगे कदम बढ़ाएंगे। वजीर आजम ने कहा कि भारत और इटली के दरमियान दिफाई सनती खाके के तहत साजो सामान मिलकर तैयार करने की राह हमवार हुई है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कामयाब दौरा भारत के बैन अलावामी ताल्लुकात और सकाफती ताउन को मजबूत करने की उनकी जारी कोशिशों का हिस्सा रहा है। वजीर आजम मोदी का यह इटली का पहला दो तरफा और मजमूई तौर पर तीसरा दौरा था। उनके इस दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम प्रोग्राम और सरगर्मियां अंजाम पाईं। उन्होंने इटली के सदर सर्जियो मटरेला से मुलाकात की। उन्होंने वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी के साथ वफद की सतह की बातचीत की, जिसमें भारत और इटली के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई। खुराक और ज़राअत की तंजीम के उनके दौरे का मकसद कसीर जेती और आलमी सतह पर खुराक की यकीनी फराहमी के भारत के अज़्म को मुस्तहकम करना था, जहां उन्हें अहम यूएन एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। दोनों फरीकों ने 2027 के लिए सकाफत और सियाहत के इटली भारत साल के आगाज का भी फैसला किया। उन्होंने पुरजोश भारतीय और इतालवी फनकारों से भी मुलाकात की, जिन्होंने रोम आमद पर उनका इस्तकबाल किया। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान सकाफती तबादलों को फरोग देने और मुजाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझबूझ को बढ़ावा देने और सकाफती सिफारतकारी को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात सिर्फ सियासी और इक्तसादी राबतों के जाविये से ही नहीं देखे जाते, बल्कि अवाम और मुआशरों के दरमियान रिश्तों से

0: भी इनकी अक्कासी होती है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल गूगल, मेटा और टेलीग्राम समेत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की और मुकाबला जाति इम्तिहानात से मुतालिक गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात, खासतौर पर टेलीग्राम चैनल्स और नामालूम ऑनलाइन ग्रुपों के जरिए गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। 21 जून को दोबारा होने वाले नीट यूजी इम्तिहान से कबल ये मीटिंग अहमियत की हामिल है। हुकाम ने कहा है कि अहम इम्तिहानात से पहले इस तरह के कई चैनल बहुत ज्यादा सरगर्म हो जाते हैं और पेपर लीक होने के फर्जी दावे करने लगते हैं, जिससे तलबा और वालिदैन में गैर जरूरी तौर पर घबराहट, फिक्रमंदी और इबहाम की कैफियत पैदा होती है। मगरबी बंगाल में जनूबी 24 परगना जिले के फाल्टा असेंबली हलके में आज दोबारा पोलिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी कमीशन ने वहां 29 अप्रैल की वोटिंग को रद्द कर दिया था और पूरे फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया था, क्योंकि वहां राय दहिंदकान को डराने धमकाने, पोलिंग मराकज में गैर मजाज अफराद की मौजूदगी और वोटिंग मशीनों के साथ मुमकिन छेड़छाड़ समेत बेजाबतगियों की कई इत्तलात मौसूल हुई थी। 2 आजाद उम्मीदवारों समेत 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने ऐलान किया है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता बैलेट पर उनका नाम मौजूद है, क्योंकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख पहले ही गुजर चुकी है। इस चुनाव में दिबांशु पांडा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक को मैदान में उतारा है। सीपीआईएम की तरफ से शंभुनाथ कुर्मी चुनाव लड़ रहे हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। कल नाबन्ना में रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अहदेदारों की मौजूदगी में बाजाब्ता तौर पर इस अमल का आगाज किया। मजीद तफसील हमारे नामा निकार से।
1: रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने साबिका सरकार पर तआवुन न करके सरहदी सिक्योरिटी में रखना डालने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरहद पर बाड़ लगाना मुल्क और रियासत की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने इस तनाजुर में दरंदाजी, स्मगलिंग, जाली करेंसी, जबरन मजहब बदलने और गैर कानूनी बांग्लादेशियों के आने से वाबस्ता जराइम का हवाला दिया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 4000 किलोमीटर तवील सरहद में से लगभग 2200 किलोमीटर का सरहद का इलाका मगरबी बंगाल से मुत्तसिल है। तकरीबन 1600 किलोमीटर के इलाके पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर के इलाके में कोई बाड़ नहीं है। कल जो 27 किलोमीटर अराजी हवाले की गई है, उसमें 18 किलोमीटर खारदार तार लगाने के लिए और 9 किलोमीटर बीएसएफ की जांच चौकियों और बुनियादी ढांचे के बंदोबस्त के लिए है। वजीर आला ने यकीन दिलाया कि मजीद अराजी जल्द ही मुंतकिल की जाएगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाजाराई में आम शहरियों के तहफ्फुज के बारे में सलामती काउंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे हरीश परवदा नैनी ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सितम जरीफी की बात है कि पाकिस्तान ने जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है, उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो बिल्कुल भारत के दाखिली मामलात हैं। जनाब हरीश परवता नैनी ने ये रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। अमेरिका के वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो भारत में अपने साझेदारों के साथ अमेरिका के कयाम को 250 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के मुंतजिर हैं। अपने दौरे से कबल एक वीडियो पैगाम में जनाब रूबियो ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी और अमेरिका दुनिया की सबसे कदीम जमहूरियत है, लिहाजा अमरीका इसे मिलकर मनाने का मुतमन्नी है। भारत में अमरीका के सिफारतखाने ने भी मजकूरा वीडियो शेयर किया है।

0: अमेरिका 4 जुलाई को आज़ादी के ऐलानिये पर दस्तखत किए जाने के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। जनाब रूबियो इस महीने की 23 तारीख से भारत के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। ये उनका भारत का पहला दौरा होगा। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोदुलिदिस कल शाम भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचे। उनके हमराह एक आला सती वफ्द भी है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई हवाई अड्डे पर सदर क्रिस्टोदुलिदिस का इस्तकबाल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खारिजी उमूर की वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सदर क्रिस्टोदुलिदिस का ये दौरा भारत कुब्रुस शराकतदारी की बढ़ती हुई रफ्तार को उजागर करता है और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं जो मुश्तरक अकदार और मजबूत अवाम से अवाम के दरमियान रवाबित पर मबनी हैं। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। कांग्रेस कानून साज पार्टी के रहनुमा राजेश कुमार और मेलूर से रुकने असेंबली पी विश्वनाथन को काबीना में शामिल किया जाएगा। साल 1967 के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस सरकार रियासती काबीना में शामिल होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम, मनिकम ठाकुर और दीगर बहुत से रहनुमाओं ने मखलूत हुकूमत कायम करने के वजीर आला विजय के फैसले का खैर मकदम किया है। हलफबरदारी की तकरीब आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज भी शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के बाद हिस्सों में भी गर्मी का जोर जारी रहने का इम्कान है। आज मुल्क में इंसदादे दहशतगर्दी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आम लोगों की तकलीफ को उजागर करते हुए और ये दिखाते हुए कि कैसे दहशतगर्दी कौमी मफाद के खिलाफ है, नौजवानों को दहशतगर्दी और तशद्दुद से दूर करना है। इस दिन दहशतगर्दी के खिलाफ हलफ लेने के साथ साथ दीगर सरगर्मियां मुनक्किद की जाती हैं। साल 1999 में आज ही के दिन मुल्क ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को एक दहशतगर्दाना हमले में खो दिया था। आईपीएल क्रिकेट में कल रात ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उम्मीद बरकरार है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का चौथा और आखिरी हॉकी मैच 3-3 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। इससे कबल इसी मैदान पर 18 साल तक की उम्र की खातून खिलाड़ियों के चौथे और आखिरी मैच में भारत ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में इटली का दौरा करने और वजीर आजम जॉर्जिया मिलोनी से मुलाकात करने से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम मोदी के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि भारत और इटली के दरमियान बातचीत सिर्फ रस्मी ताल्लुक तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक ने खसूसी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। अखबार ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को नुमाया किया है कि इंतजामी फैसले में ताखीर लोगों को उनके जायज़ हकूक से महरूम करने के मुतरदिफ। अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान दिए गए इस बयान को अहमियत दी है कि जनूबी कोरिया के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी और होगी मजबूत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुज़ाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये

0: आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अब उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
3: जागो ग्राहक जागो।
2: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
8: एक जमाने से कहा

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया। प्रदेश के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया, राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में छठे वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राशि का हस्तांतरण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सातवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं अब तक प्राप्त नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 में स्थानीय निकायों को अनुदान देने के छठे राज्य वित्त आयोग की पूर्व स्वीकृत अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि यदि अनुदान राशि का हस्तांतरण नहीं होता तो ग्रामीण और शहरी निकायों की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी। इस स्थिति से बचने के लिए 2021-25

0: इस तक लागू व्यवस्था के अनुरूप ही राशि का हस्तांतरण और योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रहेगा। कैबिनेट बैठक में कैमूर के कुदरा में पावर प्लांट और ग्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नालंदा जिले के बेन में वायल राइस उत्पादन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
1: उद्योग विभाग का दो मामला था, एक मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड अरावन बेन नालंदा को निवेश प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई, और इसी प्रकार दूसरा एजेंडा था मेसर्स ईएसई एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड खुदरा कैमूर को भी सिमिलरली वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने प्रदेश में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्क बढ़ाने की नीति के तहत इंडिगो को गया जी से बैंकॉक सीधी उड़ान की अनुमति दे दी है।
1: नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य हेतु नॉन स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो एयरलाइंस से गया जी बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को बिहार वित्त संशोधन नियमावली के संगत प्रावधान के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने तथा वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 12 महीने के लिए अधिकतम 10 करोड़ 40 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। प्रदेश में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर डायल 112 के अंतर्गत अब रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पथ परिवहन विभाग और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें भी इस हेल्पलाइन पर दी जा सकेंगी। राज्य तकनीकी सेवाएं और संचार के अपर पुलिस महानिदेशक अमित लोढ़ा ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए डायल 112 का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे।
2: डायल 112 पूर्णतया से निशुल्क सर्विस है और अभी इसमें हम लोग और भी काफी सारे डेवलपमेंट्स करेंगे। जितने पार्क्स वगैरह हमारे जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे हम लोग पैनिक बटन लगाएंगे, जिससे कि 112 की सेवाएं तुरंत उससे इंटीग्रेट हो जाएं। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, बिहार में भी अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो कार से ही ऑटोमेटिकली 112 को सीधा सूचना चली जाए।
0: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9,347 लाभार्थियों का चयन किया गया है। उद्योग सह खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने योजना के अंतर्गत आवेदकों का औपबंधिक चयन किया। अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद 3 किस्तों में लगभग 910 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें 50% राशि अनुदान और 50% राशि बिना ब्याज के ऋण के रूप में दी जाती है। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले के महषि प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बलुआहा में मध्यान्ह भोजन खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक को मामले की अगली सुनवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोकभवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ दिलीप कुमार केसरी को कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। प्रोफेसर केसरी बिना कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति के कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। यह बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाह फैलाते हैं। इससे छात्रों

0: और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू चलने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पटना, गया और कटिहार समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस दौरान रोहतास का डेहरी का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद का 41.5, छपरा का 40.2 और पटना का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए भोजपुर जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 23 जून तक जारी रहेगा। प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक ही संचालित होंगी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से मधुबनी जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर बलिराजगढ़ के व्यापक उत्खनन के लिए 10 वर्ष की परियोजना शुरू करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर श्री झा ने दरभंगा स्थित मिथिला शोध संस्थान को ज्ञान भारतम मिशन में शामिल करने का भी आग्रह किया। रेलवे ने वाराणसी मंडल को गोरखपुर कैंट पनियहवा रेलखंड के उनौला पिपराई स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य को लेकर 8 जून तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। इसके चलते नरकटियागंज गोरखपुर कैंट खंड की कई सवारी रेलगाड़ियां पूरी तरह रद्द रहेंगी। वहीं लालकुआ कोलकाता स्पेशल ट्रेन, दिल्ली मोतिहारी स्पेशल ट्रेन, दिल्ली सीतामढ़ी और गांधीधाम भागलपुर स्पेशल ट्रेन समेत 16 स्पेशल ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। इसके अलावा कटिहार दिल्ली एक्सप्रेस और गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस समेत 13 रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इधर रेलवे ने दानापुर मंडल के नवादा और बारसलीगंज स्टेशनों के बीच स्थित बाघी बरडीहा स्टेशन पर जमालपुर गया मेमू ट्रेन को 25 मई से 1 मिनट का ठहराव देने का निर्णय लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव चाय के टिकाऊ उत्पादन, उपभोग और व्यापार को बढ़ावा देता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। चाय का उत्पादन और प्रसंस्करण लाखों परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। चाय की उत्पत्ति 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और आज भी यह 1,30,00,000 से अधिक लोगों का भरण पोषण करती है। मधुबनी जिले में भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मानव तस्करी, मादक पदार्थों के सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण, अतिक्रमण और जाली नोटों पर अंकुश सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में स्थानीय जिलाधिकारी आनंद शर्मा और नेपाल के सिराहा जिला के सीडीओ

0: सुरेंद्रपुर रेल शामिल समेत दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भाग लिया। सारण जिले के छपरा में जनगणना कार्य में सहयोग नहीं करने पर जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत 106 पंचायत सचिवों पर ₹1,000 का अर्थदंड लगाया है। इस राशि की कटौती पंचायत सचिवों के वेतन से की जाएगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के डेल्टा रैंकिंग में सीतामढ़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर से दिसंबर 2025 की डेल्टा रैंकिंग में जिले ने कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। औरंगाबाद जिले में ऋषियप थाना क्षेत्र के पहरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। औरंगाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि मौके से सिलेंडरों के अलावा 90 गैस पासबुक, उज्ज्वला गैस चूल्हा तथा अन्य उपकरण बरामद किए गए। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना के नौबतपुर में सीडीपीओ कार्यालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर संतोष कुमार को ₹37,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। संतोष कुमार आंगनबाड़ी केंद्रों से अवैध वसूली के तहत यह राशि ले रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग आगामी 25 मई से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थानों में आवेदन तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, तकनीकी संस्थानों में युवा पेशेवरों की नियुक्ति होगी। प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, गया से बैंकॉक के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान। दैनिक भास्कर लिखता है, यूपीएससी 2027 सिविल सेवा प्रीलिम्स 23 मई को। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू रखने का फैसला किया। प्रदेश के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती के लिए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन करने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया, राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर और रोहतास जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु

0: संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

दोबारा से अंजुमन में आप सभी का इस्तकबाल है। शगुफ्ता हाजिर है एक बार फिर आपकी अंजुमन लेकर। सामीन, आज की तारीख उस शख्सियत की योम वफात की याद दिलाता है जिसे मुल्क हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र तरीन वजीर आजम बनने का इजाज़ हासिल हुआ। जी हाँ सामीन, आज 21 मई 1951 को एक खुदकश हमले में इंतकाल करने वाले राजीव गांधी की शख्सियत पर एक मुख्तसर से गुफ्तगू लेकर हम हाजिर हैं। राजीव गांधी को जदीद हिंदुस्तान का मैमार माना जाता है। उनके दौरे हुकूमत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कॉम में इनकलाब आया था। जी हाँ सामीन, हमारी ये मुख्तसर से गुफ्तगू चलती रहेगी। फिलहाल आइए एक और प्यारी सी गज़ल आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ। हरी हरन की आवाज़ में सजी ये खूबसूरत सी गज़ल समात कीजिए।

0: नौजवानों को मुल्की सियासत से जोड़ने के लिए वोटिंग की उम्र 18 साल कराई ताकि ज्यादा से ज्यादा अवाम मुल्क के लिए अपनी जिम्मेदारी समझे और नौजवानों को मुल्क की सियासत से जोड़ा जा सके। हमारी इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे सामीन हजरात, लेकिन फिलहाल वक्त का इशारा है कि आज की खास पेशकश अफसाना समाप्त किया जाए। तो आइए स्टूडियो में तशरीफ फरमा अफसाना निगार रुमाना तबस्सुम की तरफ रुख करते हैं और समाप्त करते हैं अफसाना जिसका उन्वान है तलाश।
1: अपनी बीवी बच्चों के साथ चारपाई पर सोया हुआ था कि तेज आंधी गरज और बारिश के साथ ओले पड़ने की आवाज से इसकी आंख खुल गई। वो चारपाई पर से बेख्तियार उठकर दरवाजे पर आ गया और आसमान की तरफ देखने लगा। आंधी इतनी तेज थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आंख में धूल पड़ने से इसकी आंखें खुल नहीं रही थी। दोनों हाथों से आंखों को रगड़ कर बिदबिदाने लगा। सभी फसलें तैयार हो चुकी थीं। कुछ ही दिनों में इनकी कटाई शुरू होनी थी। आंधी के साथ इसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। दलान में टंगा लालटेन भी आंधी की वजह से हिल रहा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता धूल से भरी आंखें खोली और खूंटी में टंगा छाता निकाला और लालटेन लेकर बाहर जाने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी तेज आंधी में कहाँ जा रहे हो? इसकी बीवी गौरी ने हाथ से छाता और लालटेन लेकर दरवाजा बंद करते हुए कहा, खेत पर फसलें देखने। गोपाल ने लालटेन दोबारा गौरी के हाथ से लेने की कोशिश करते हुए कहा, इतनी तेज आंधी और ओले पड़ने में बाहर निकलने का है? बाहर आंधी में लालटेन भी ठहरेगा? घर में तो बुझा जा रहा है, सुबह होगी तो देख लेना। भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा, गौरी ने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जब तलक सुबह होगी गौरी, सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, गोपाल ने उदास लहजे में गौरी की तरफ देखते हुए कहा। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, गौरी ने आहिस्ता से कहा। कैसे सब ठीक हो जाएगा गौरी? हम किसानों की तो किस्मत ही खराब है। दिन भर अपना खून पसीना बहाकर खेती करते हैं, जब फसलें तैयार होने को आती हैं तो ऊपर वाले का कहर बरसने लगता है। गोपाल दोबारा चारपाई पर जाकर लेट गया। चारपाई के पास छप्पर से पानी टपक रहा था। गौरी ने बच्चे को उठाकर दूसरी जगह सुला दिया। गोपाल बिस्तर मोड़कर आधे खुले चारपाई पर लेट गया। बिस्तर मोड़ते मोड़ते तकिया की शक्ल अख्तियार कर चुका था। एक कमरा हो, छत वाला हो। गोपाल ने अपने दोनों घुटने पेट में अड़ा लिए और बिदबिदाते हुए कहा और सुबह होने का इंतजार करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता आंधी थमने लगी और ओले पड़ने की आवाज भी कम हो गई। मुर्ग की बांग और चिड़ियों की चहचहाट ने सुबह होने का एहसास कराया। वो जल्दी से उठा और धोती मोड़ते हुए तेज तेज कदम उठाता हुआ खेत की तरफ जाने लगा। गोपाल को बाहर जाते हुए देखकर गौरी भी इसके पीछे निकल पड़ी। रास्ते में आम लीची के दरख्त गिरे हुए थे जिससे खेत तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही थी। गोपाल ने गौरी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। किसी तरह गोपाल और गौरी खेत तक पहुंचे। खेत में फसलों की हालत देखकर गोपाल की आंखों से आंसू बेख्तियार गिरने लगे। खेत में लगे नीम पुख्ता गेहूं की बाली पौधे जमीन पर गिरे हुए थे जो पानी में तर होने की वजह कर उठ नहीं पा रहे थे। बारिश से पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। गोपाल पानी में सने गेहूं की फसलों को देखता और कभी दलहन और तिलहन की फसलात को और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी में सने होने की वजह कर उठ नहीं पाए तो वो मायूस होकर फसलों के बीच बैठकर दोनों हाथ सर पर रखकर रोने लगा। क्या सरकार इसका मुआवजा देगी? इसने फसलों की तरफ इशारा करते हुए गौरी से कहा। गौरी उसे किसी तरह समझा बुझा कर खेत से घर ले आई। इधर बच्चे माँ को घर में ना पाकर बेतहाशा रो रहे थे। चुप सुबह हुई नहीं कि रे रे शुरू हो गया, गोपाल ने बच्चों को झिड़कते हुए कहा। इसकी झड़क सुनकर बच्चे और जोर से रोने लगे। बच्चों को क्यों झिड़कते हो जी? इन्हें क्या मालूम कि हमारे साथ क्या हुआ है, गौरी ने गोपाल को समझाते हुए कहा। गौरी इस वक्त इन लोगों को किसी तरह चुप करा, इसने दांत पीसते हुए कहा। जबकि गोपाल अपने बच्चों को बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन इस वक्त इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और कोई भी चीज उसे अच्छी नहीं लग रही थी। गौरी ने रात की बची बासी रोटी नमक तेल के साथ लपेट कर इसके हाथ में थमा दिया। बच्चे हाथ में रोटी लेकर चुप हो गए। थोड़ा तुम भी कुछ खा पी लो, सब ठीक हो जाएगा, गौरी ने थाली में नमक और प्याज गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कैसे ठीक हो जाएगा गौरी? इसने थाली अपने सामने से हटाते हुए कहा। महाजन का कर्ज सर पर चढ़।

0: है। हर साल सोचते हैं कि इस बार कर्ज चुका देंगे, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। सूद पर सूद चढ़ा जा रहा है। हम लोगों का किसी तरह खेती बाड़ी करते आधी जिंदगी गुजर गई। अब ये लोग भी बड़े होकर दिन भर खेत में हल चलाएंगे? इसने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो हर फिक्र से बेनियाज होकर आंगन में जमा पानी में कूद रहे थे। गौरी, ए गौरी, गोपाल ने गौरी को हिलाते हुए कहा, जो किसी गहरी सोच में गुम थी। हाँ, गौरी ने आहिस्ता से कहा। गौरी, बहुत सोचने के बाद एक फैसला लिया है। कैसा फैसला जी? यही कि अब हमसे खेती बाड़ी ना होगा, अब शहर जाकर कोई काम करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बाप दादा सब खेती करते आए हैं और तुम शहर जाओगे? यहाँ का घर दरवाजा कौन देखेगा? देख गौरी, मेरी बात समझ। इस घर की हालत बहुत खस्ता हो गई है, इसका सही से मरम्मत होना जरूरी है। सारा पैसा महाजन का कर्ज चुकाने में ही खत्म हो जाता है। सैलाब की वजह कर हर साल अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, इसलिए अब शहर जाकर वहीं कमाएंगे। पक्का और खूब ऊंचा घर बनाएंगे ताकि सैलाब की वजह से हम लोगों को किसी दूसरी जगह ना जाना पड़े। इसकी बात सुनकर गौरी खामोश हो गई। इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शहर जाकर अपना ख्याल रखना। हाँ गौरी, हम अपना ख्याल रखेंगे, बस तुम यहाँ घर दरवाजे और बच्चों का ख्याल रखना। गांव से वो एक पुरानी कमीज पजामा पहनकर और हाथ में पुराना थैला लेकर इसने शहर का रुख किया। शहर आकर उसे एक अच्छी फैक्ट्री में काम मिल गया। घर की हालत को और बेहतर बनाने के लिए वो नाइट ड्यूटी भी करने लगा। शहर आए उसे अभी कुछ महीने गुजरे थे कि आहिस्ता आहिस्ता घर की हालत बदलने लगी। अच्छा खाने पीने से बीवी बच्चे की शक्ल भी निकल गई थी। घर में ऐश व आराम के सामान भी आ गए थे और महाजन का कर्ज भी अदा हो गया था। इसने फैसला कर लिया था कि अब गांव का घर बनाने से अच्छा है शहर में एक घर बनाएगा और बीवी बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी गुजारेगा। हजारों ख्वाब अपनी आंखों में लिए बीवी बच्चों के पास आ रहा था। इसके जिस्म पर आज कीमती लिबास था और ढेर सारे सामानों की पैकिंग थी। वो जल्द अज जल्द बीवी बच्चों के पास पहुंचना चाहता था। ट्रेन से उतरकर इसने टैक्सी ली और ड्राइवर को टैक्सी तेज चलाने की हिदायत दी। जब गांव की सरजमीन पर कदम रखा तो पूरा गांव सैलाब में डूबा हुआ था। हर तरफ चीख पुकार की आवाजें थीं। सभी लोग परेशान हाल इधर से उधर जा रहे थे। इस कयामत खेज मंजर को देखकर इसके कदम एक जगह जम गए। वो फर्त हैरत से सबको देख रहा था। कल ही बीवी बच्चों से फोन पर बात हुई थी और आज हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। इसकी बीवी बच्चों का कुछ पता न था। वो परेशान हाल ऊंचे टीले पर खड़ा होकर अपना घर तलाश करने लगा। सैलाब की वजह कर किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। सबकी जबान पर बस यही बात थी कि बांध टूटने के सबब पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका ही न मिला। दूसरी तरफ कुदरत ने अब्र रहमत को जहमत बनाकर गांव के हजारों अफराद को लुकमा अजल बना लिया। झील का बांध अचानक टूट जाने से दर्जनों मकानात का निशान खत्म हो गया और हजारों मकानात जमीन बोस हो गए थे। फिर से इस गांव के लोगों को जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी और सैलाब में जो बच गए हैं अपनों से जुदा होने के गम में इनकी जिंदगी मौत से बदतर हो गई। तो क्या मेरी भी बीवी बच्चे? नहीं नहीं, मेरी बीवी बच्चे जिंदा हैं। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और अपनी बीवी बच्चों के लिए शहर से लाए सामानों पर इसकी नजर जाकर ठहर गई। वो जिंदा हैं और बैग से सभी सामान निकालने लगा। ये लाल साड़ी गौरी के लिए, ये खिलौने मेरे बच्चों के लिए। वो सैलाब में डूब नहीं सकते, वो जिंदा हैं, जिंदा हैं। वो पागलों की तरह बैग से तमाम सामान निकाल रहा था। सरकार की तरफ से सैलाब जुदा अफराद के रूबरू तमाम लवाहिकीन वर्षा को नाम पुकार कर 50-50 हजार रुपया दिए जा रहे थे। गोपाल के वर्षा की तरफ से गोपाल को भी 50 हजार। गोपाल बोलते बोलते अचानक खामोश हो गया। इसका दिल धक से होकर रह गया। इसके हाथ में 50 हजार का चेक था। वो चेक को गौर से देख रहा था। इसकी आंखों से बेशुमार आंसू चेक पर गिरने लगे। नहीं नहीं, मैं ये चेक नहीं लूंगा। इसके हाथ कांपने लगे। इसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई और चेक इसके हाथ से छूटकर सैलाब में बह गए। मैं इन्हें तलाश करके लाऊंगा। भीम बांध इन्हें अपने साथ बहा कर नहीं ले जा सकता। और इसके कदम सैलाब की तरफ बढ़ने लगे। सभी लोग उसे आवाज देते रहे लेकिन वो नहीं रुका।
1: सामीन, गुफ्तगू को रफ्तार दें इससे कबल आइए आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ एक प्यारी सी गजल। समात करते हैं हरी हरन की आवाज में सजी हुई।

0: राजीव गांधी की पैदाइश मुंबई में हुई, जबकि उनकी इब्तदाई तालीम देहरादून के मशहूर जमाना दून स्कूल में हुई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, तो बाद में इम्पीरियल कॉलेज लंदन भी गए। सामिन, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल आइए वक्त हुआ जाता है अशफाक रसूल के कलाम से महजूज होने का। समात करते हैं कलाम शायर।
1: गजल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। मतला अर्ज किया है, लोग नफरत के हलके बनाते रहे, लोग नफरत के हलके बनाते रहे, हम मोहब्बत की महफिल सजाते रहे। एक घायल तड़पता रहा राह में, एक घायल तड़पता रहा राह में, शहर वाले निगाहें चुराते रहे। और ख़ास तौर से इस शेर पर तवज्जो चाहूँगा कि अहले दिल सुरखरू हो गए उस जगह, अहले दिल सुरखरू हो गए उस जगह, अक्ल वाले जहाँ मात खाते रहे। पत्थरों का हमें खौफ कुछ भी न था, पत्थरों का हमें खौफ कुछ भी न था, आईना हम जहाँ को दिखाते रहे। और आखिर शेर देखिए कि बेखुदी रंग लाई कुछ अशफाक यूं, बेखुदी रंग लाई कुछ अशफाक यूं, उम्र भर हम गजल गुनगुनाते रहे। लोग नफरत के हलके बनाते रहे, हम मोहब्बत की महफिल सजाते रहे। और दूसरी गजल के चंद अशार पेश खिदमत है। ये भूल हमारी थी

क्या मुझे, और आखिरी शेर देखिए, क्या अशफाक अपना दर्द जिगर और बढ़ गया।

सामिन, आपको बताएं कि राजीव गांधी को जमीन से ज्यादा आसमान पसंद था। जी हाँ, उन्हें उड़ान भरने का शौक था और इसी वजह से लंदन से लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब से कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेकर इंडियन एयरलाइंस में पायलट के तौर पर अपनी खदमात अंजाम दी। राजीव गांधी नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के विजन की वजह कर और अपनी साफ सुथरी शख्सियत को लेकर हमेशा याद किए जाते रहेंगे। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी जिंदगी को अपनी आवाम के लिए वक्फ कर दिया। इसके साथ ही सामिन, वक्त का इशारा है कि हम आपको कहें अलविदा, लेकिन आपकी समातों के हवाले चलते चलते एक खूबसूरत सी गजल कर रही हूँ। आइए समात करते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

आमीन। गर्मी अपनी तपिश पर है और ये गर्मी न जाने कितनी बढ़ेगी ये कोई नहीं जानता। तो जब भी शम्स यानी धूप में बाहर निकलें तो कोशिश कीजिए कि अपने छाता स्टॉल वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, साथ ही पानी का बॉटल रखिए क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है, और पानी की मकदार को अपने जिस्म में बनाए रखिए। और जो भी खाएं इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि सेहत बहुत अहम है। इस बदलते मौसम में कब कहाँ किसकी तबीयत किस तरह नासाज हो जाए ये कोई नहीं जानता। खाना ऐसा हो कि हमारे जिस्म को वो बर्दाश्त कर सके, यानी कि हमारे जिस्म में वो डाइजेस्ट हो सके, हज़म हो सके आसानी के साथ। अपना और अपनों का रखिए साथ ही खूब सारा ख्याल। और चूँकि अंजुमन कल फिर सजेगी नए गुलों के साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी पटना और अपने दोस्तों मेज़बान शगुफ्ता को दीजिए आज के अंजुमन के साथ ही इजाज़त। रखिए सबका ख्याल और दुआ में सभी को रखिए याद। शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। श्रोता और रसमंजरी कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं पहला गाना इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से शिल्पा राव की आवाज में। इस गाने को लिखा है स्वानंद क्रिकेरी ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

आइए सुनते हैं कमाल खान और नीति मोहन की आवाज़ में ये गाना जिसे लिया हमने गोरी तेरे प्यार में। कौसर मुनील के बोल और संगीत है विशाल शेखर का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।

0: राहत फतेह अली खान की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे अनजाना अनजानी फिल्म का गाना, जिसे लिखा था विशाल ददलानी ने और संगीत विशाल शेखर का था। श्रोताओं, इसके साथ ही रसमंजरी का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम लुत्फ उठाएंगे कुछ गजल का, साथ ही आनंद लेंगे कुछ भजन का भी। तो आइए पहले सुनते हैं रत्ना अरुण और मोहम्मद इमामुद्दीन की आवाज में ये गजल, दाग की लिखी ये गजल है। लीजिए सुनिए रत्ना अरुण और मोहम्मद इमामुद्दीन की आवाज में।

0: फिराक और फुली की लिखी ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे रत्ना अरुण और मोहम्मद इमामुद्दीन की आवाज़ में। सुगम संगीत का शेष भाग सुनिए एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। में लीजिए पेश है कुछ भजन। कलाकार हैं प्रियंका।

0: इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं। एक अंतराल के बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: फिल्म संगीत, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में पहला गाना। आशा भोसले, रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में जमाने को दिखाना है। इस गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी।

आनंद बख्शी का लिखा ये गाना आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। आर डी बर्मन ने इस गाने को संगीतबद्ध किया है और फिल्म है अजनबी।

0: दादू?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: तरह मैं दुश्मन तो नहीं।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है संस्कार गीत। लेकिन एक अंतराल के बाद है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
6: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
7: अनजान ऐप से बचें।
8: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संस्कार गीत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को रेडियो सखी गुंजन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हम भारत देश के वासी हैं। हमारा देश भारत अलग अलग भाषाओं, धर्मों, परंपराओं, खान पान और त्योहारों से भरा हुआ है। बहनों, जब लोग अलग अलग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ मिलकर रहते हैं तो उसे सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। यही विशेषता हमारे देश को खास बनाती है। बहनों, हमें इस विविधता से आनंद लेना चाहिए और इसे सम्मान भी देना चाहिए। बहनों, समाज में अलग अलग संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और अपनी अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। भारत में हर राज्य की अपनी अलग पहचान है, जैसे पंजाब में भांगड़ा, गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र का लावणी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। इसी तरह से हर क्षेत्र का भोजन भी अलग अलग होता है, जो हमारी संस्कृति को और भी समृद्ध बनाता है। बात करें बिहार की तो बहनों, बिहार का भोजन सरल और स्वादिष्ट होता है। यहाँ का प्रसिद्ध भोजन जैसे कि लिट्टी चोखा, खाजा, ठेकुआ, सत्तू, जो खाने में स्वादिष्ट भी है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। बिहार की लोक कला और संगीत भी बहुत समृद्ध है। मधुबनी पेंटिंग तो विश्वभर में प्रसिद्ध है, जिसमें प्राकृतिक रंगों से सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। बहनों, सांस्कृतिक विविधता हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब हम अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से मिलते हैं तो हमें नई बातें जानने और समझने का अवसर मिलता है। हम दूसरों की भाषा, पहनावा और परंपराओं को जानकर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। बहनों, इससे हमें आनंद भी मिलता है। जब हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली, वैशाखी, तो हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ जाती हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम एक दूसरे के करीब आते हैं और आपसी प्रेम बढ़ता भी है। विविधता हमें एकता का संदेश देती है और हमें जोड़ कर रखती है। बहनों, आजकल के समय में सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग अपने धर्म या संस्कृति को दूसरों को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, जिससे समाज में भेदभाव और तनाव पैदा होता है। हमें ऐसे विचारों से दूर रहना चाहिए और सभी संस्कृतियों का सम्मान रूप से आदर करना चाहिए। हमें ये समझना है चाहिए

कि हमारी असली ताकत हमारी एकता में है। सच बहनों, सांस्कृतिक विविधता हमारे जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाती है। ये हमें एक दूसरे से जोड़ती है और समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ाती है। इसलिए हमें हमेशा सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना चाहिए और इससे आनंद लेना भी चाहिए। यही हमारी देश की असली पहचान और शक्ति है। और आनंद तो हमें गीत संगीत से भी मिलता है बहनों, तो

0: बहनों, इस गीत के बाद अब आइए सुनते हैं किरण सिंह से काव्य पाठ।
1: मेरी पहली कविता वंदे मातरम पर है। हमारी आन बान शान वंदे मातरम, हमारी आन बान शान वंदे मातरम, हमारे देश का सम्मान वंदे मातरम। सुवर्णित सुंदरम मधुरम मनोहर है प्रियम, सुवर्णित सुंदरम मधुरम मनोहर है प्रियम, सुसमृद्ध शब्दों का भी खान वंदे मातरम, सुसमृद्ध शब्दों का भी खान वंदे मातरम। चलो बाटे भरे हैं शब्दों में जो जोश वो, चलो बाटे भरे हैं शब्दों में जो जोश वो, सुरीले छेड़ कर हम तान वंदे मातरम, छेड़ कर हम तान वंदे मातरम। मुखर हो कह रहे देखो ये अक्षर खुद बखुद, मुखर हो कह रहे देखो ये अक्षर खुद बखुद, यही है प्रार्थना सदगान वंदे मातरम। चले हैं दूत बनकर शांति का उच्चार कर, चले हैं दूत बनकर शांति का उच्चार कर, जगत में बांटते गा ज्ञान वंदे मातरम। दिगंबर की तरह विषपान करता है स्वयं, दिगंबर की तरह विषपान करता है स्वयं, कराता प्रेम का मधुपान वंदे मातरम। यही है मंत्र पावन प्रेम का उद्गार ये, यही है मंत्र पावन प्रेम का उद्गार ये, किरण है पूर्ण उर अरमान वंदे मातरम, किरण है पूर्ण उर उद्गार वंदे मातरम। और आगे मैं पर्यावरण पर कुछ दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। नभ देता चेतावनी धरती करे प्रलाप, नभ देता चेतावनी धरती करे प्रलाप, नदियों में मत फेंकिए कूड़ा कचरा आप। अब तो चेतो हे मनुज सोचो करो विचार, अब तो चेतो हे मनुज सोचो करो विचार, वरना झेलोगे तुम्हें क्रुद्ध प्रकृति की मार, वरना झेलोगे तुम्हें क्रुद्ध प्रकृति की मार। और इधर उधर मत फेंकिए कूड़ा करकट आप, इधर उधर मत फेंकिए कूड़ा करकट आप, वरना कुदरत क्रुद्ध हो देगी सबको शाप, वरना कुदरत क्रुद्ध हो देगी सबको शाप। वृक्ष धूप सहकर स्वयं देता ठंडी छाँव, वृक्ष धूप सहकर स्वयं देता ठंडी छाँव, भटक गए पथ जो पथिक उनको देता ठाँव, भटक गए पथ जो पथिक उनको देता ठाँव। और सुंदर सहज चरित्र है तासीर विचित्र, सुंदर सहज चरित्र है तासीर विचित्र, इस जग में तरु है किरण सबसे सच्चा मित्र, इस जग में तरु है किरण सबसे सच्चा मित्र। और आओ हम मिलकर करें कुदरत का श्रृंगार, आओ हम मिलकर करें कुदरत का श्रृंगार, पेड़ लगाएं हम सभी अपने आंगन द्वार, पेड़ लगाएं हम सभी अपने आंगन द्वार। और थोड़ी दूरी के लिए नहीं निकालें कार, थोड़ी दूरी के लिए नहीं निकालें कार,

थोड़ा पैदल भी चलें करके किरण करार, थोड़ा पैदल भी चलें करके किरण करार, और पॉलीथीन का आज से कर दें हम सब त्याग। पॉलीथीन का आज से कर दें हम सब त्याग, परिरक्षण परिवेश में ले हम सब यूं भाग। परिरक्षण परिवेश में ले हम सब यूं भाग, शौच खुले में मत करें, शौच खुले में मत करें भूले से भी आप, शौच खुले में मत करें भूले से भी आप। अच्छी आदत डालिए क्यों करना है पाप, अच्छी आदत डालिए क्यों करना है पाप, और स्वच्छ रखे पर्यावरण सुंदर रखे विचार, स्वच्छ रखे पर्यावरण सुंदर रखे विचार, तभी बचेगा मानिए यह सुंदर संसार, तभी बचेगा मानिए यह सुंदर संसार। गजल सुना रही हूँ, शीर्षक है हाल देखेंगे मेरा तो रो देंगे वे, हाल देखेंगे मेरा तो रो देंगे वे, हाल देखेंगे मेरा तो रो देंगे वे, वक्त पर दाग दिल का भी धो देंगे वे, हाल देखेंगे मेरा तो रो देंगे वे, वक्त पर दाग दिल का भी धो देंगे वे, हमको इज्जत न देंगे मेरे हक का तो, हमको इज्जत न देंगे मेरे हक का तो, प्यार पाने का हक हमसे खो देंगे वे, प्यार पाने का हक हमसे खो देंगे वे, और गुल खिलाने की चाहत रखे दिल में खुद, गुल खिलाने की चाहत रखें दिल में खुद, राहों में अपने कांटे भी बो देंगे वे, माना बिखरा दिया वक्त ने जिंदगी, माना बिखरा दिया वक्त ने जिंदगी, एक दिन फिर से माला पिरो देंगे वे, माना मौसम अभी शुष्क है पर कभी, माना मौसम अभी शुष्क है पर कभी, बन के सावन तुम्हें भी भिगो देंगे वे, जख्म बातों के मरहम से भरते रहे, जख्म बातों के मरहम से भरते रहे, मांग रब से दुआ आपको देंगे वे, सब्र थोड़ा रखो तुम किरण वक्त पर, सब्र थोड़ा रखो तुम किरण वक्त पर, सुनी आँखों में सपने संजो देंगे वे, सुनी आँखों में सपने संजो देंगे वे। और अगली गज़ल है मुझ पे उनकी नज़र ने असर कर दिया, वक्त खामोश मेरा अधर कर दिया, मुझ पे उनकी नज़र ने असर कर दिया, वक्त खामोश मेरा अधर कर दिया, देखो तुम भी ज़रा आके जज्बा मेरा, देखो तुम भी ज़रा आके जज्बा मेरा, रात को भी किरण ने सहर कर दिया, आज कैसे सुनाएं कहो ये गज़ल, आज कैसे सुनाएं कहो ये गज़ल, शेर कुछ हमने जब बेबहर कर दिया, आज कैसे सुनाएं कहो ये गज़ल, शेर कुछ हमने जब बेबहर कर दिया, बोलो कैसे शिकायत किसी से करूं, बोलो कैसे शिकायत किसी से करो, हमसे छल खुद खुदा ने अगर कर दिया, छीन कर ले गई मौत जिसको किरण, छीन कर ले गई मौत जिसको किरण, देख लो मैंने उसको अमर कर दिया, देख लो उसको मैंने अमर कर दिया। और अगली गज़ल मैं तरन्नुम में सुना रही हूँ, कैसे कह दूँ तुमसे मैं प्यार नहीं करती, कैसे कह दूँ तुमसे मैं प्यार नहीं करती, कैसे

तुम मुझसे करो न करो, हाँ प्यार किया मैंने। तुम मुझसे करो न करो, हाँ प्यार किया मैंने। तुम मुझसे करो न करो, मैं रिश्ते निभाने का।

तुम जीत के खुश हो लो, मैं हार के भी खुश हूँ। तुम जीत के खुश हो लो, मैं हार के भी खुश हूँ। तुम जीत के खुश हो लो, मैं हार के भी खुश हूँ। हो प्रेम प्रसंग तुम्हें।

तुम अपने से लगते हो, तुम पर है यकीन मुझको, तुम अपने से लगते हो, तुम पर है यकीन मुझको, तुम अपने से लगते हो, तुम पर है यकीन मुझको, किसी गैर की बातों पे इतबार नहीं करती, किसी गैर की बातों पे इतबार नहीं करती, जिसका जितना हक है उस इतना ही देती हूँ, जिसका जितना हक है उसे उतना मैं देती हूँ, जिसका जितना हक है उसे उतना ही देती हूँ, रिश्तों को कभी भी मैं इकसार नहीं करती, है इश्क किरण को भी हद से भी अधिक तुमसे, है इश्क किरण

Sí. तो बहनों, इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तो बहुत धूप भी तेज है और तापमान भी बहुत बढ़ गया है। इससे में हमारा शरीर भी, पसीना भी बहुत निकलता है। ऐसे समय में ठंडा पेय हमारे लिए राहत का काम करते हैं। गर्मियों में चाय शरबत का एक अपना ही आनंद आनंद होता है। यह न केवल शरीर को ताजगी देता है बल्कि मन को भी प्रसन्न करता है। और बहनों, गर्मी के मौसम भले कठिन हो, लेकिन सही खान पान और ठंडे पेय पदार्थों के साथ हम इसे आनंददायक बना सकते हैं। और दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर अच्छे अच्छे शरबत पीजिए और मौसम का आनंद उठाइए। फिलहाल आनंद उठाते इस गीत का।

0: पैनो इसी गीत के साथ अब दीजिए रेडियो सखी गुंजन कुमार को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से

0: अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी की पटना केंद्र से बोल रहे हैं। सुर भारती कार्यक्रम में प्रस्तुत है संस्कृत वार्ता।
2: महाकाव्येषु नायकानाम आदर्श आदौ इदम ज्ञातव्यम यद किम नाम काव्यम कवेः कर्म काव्यम तत्र दृश्य सभ्यत्व भेदेन काव्यम पुनः द्विधा मतम दृश्यम काव्यम श्रव्यम काव्यम च तत्रापि श्रव्य काव्यस्य नैकाः भेदाः सन्ति। महाकाव्यम खंडकाव्यम चंपूकाव्यम दूतकाव्यम इत्यादीनि तेषु एव महाकाव्यस्य गणनापि भवति। नामना एव स्पष्टः वर्तते यद् महत् काव्यम् इति विशालं काव्यम् इति महाकाव्यम्। अतः संस्कृत वाङ्मये एतादृशानि बहूनि महाकाव्यानि सन्ति। तेषु आदिकाव्यत्वेन महर्षि वाल्मीकिना विरचितं रामायणं ऐतिहासिकं उपजीव्यं महाकाव्यम् इति उच्यते। यदा संस्कृतस्य वैदिकं वाङ्मयं सर्वेषां कृते सरलं नाभवत् तदा मुनिना संकेतितः महर्षिं वाल्मीकिं यद् तादृशः कश्चन चरित्रः कश्चन महान चेतव्यः यस्य चरित्र वर्णने सांगोपांगम भारतीया सनातनी दृष्टि तत्र उल्लिखिता स्यात्। तया दृष्ट्या एव को अस्ति अस्मिन् युगे तादृशः आदर्शभूतः तर्हि एकमेव उत्तरं प्राप्तं भगवता रामस्य तद चरित्रमेव आदर्श चरित्रं विद्यते यस्मिन् लेशमात्रम् अपि अवगुणस्य स्थानम नास्ति। तादृशं श्रेष्ठं चरित्रं स्वीकृत्य महर्षि वाल्मीकिः आदिकाव्यं प्रणीतवान्। तत्र महाकाव्यस्य लक्षणं लक्षणाचार्यैः वर्णितं वर्तते। तत्र किं नाम महाकाव्यम् इति तत्र लक्षणं भवति सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः सदवंशः क्षत्रियो वापि धीरो दात्त गुणान्वितः एकवंशभुवाः कुलजा बहवो अपि वा श्रृंगारवीर सांदानाम एको अंगिर शिष्यते नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गाष्टाधिका यः। एवं प्रकारेण विस्तरेण एतस्य महाकाव्यस्य लक्षणं लक्षणाचार्यैः प्रदत्तं विद्यते। तर्हि नामना एव स्पष्टं भवति महाकाव्यम् इति। तत्र अस्मिन् महाकाव्ये एकः नायकः भवति, सः दैवकोटिकः भवति उत्वा कस्मिंश्चित् सद्वंशे व्युत्पन्नः भवति, क्षत्रियः भवति वा, सः धीरः उदात्त चरित्रयुक्तः गुणानाम् आग्रह भवति, एकवंश भुवा भवति। तत्र श्रृंगार वीर शांत इति त्रिषु रसेषु कश्चन एकः रसः मुख्य रसः भवति, अन्ये जे रसाः सन्ति ते तत्र सहायीभूताः भवन्ति। परञ्च त्रिषु अर्थात् श्रृंगाररसः वीररसः शान्तरसः वा तत्र प्रमुखत्वेन भजते। नाति स्वल्पा नाति दीर्घाः

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए रानू मुखर्जी को। फिल्म का नाम है मासूम। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हेमंत कुमार।

लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है कभी कभी। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार खयाम।

फिल्म अंदाज में सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: रोटी वोटी कुछ न मिली पीछे पड़ी मोटी।
1: रे मामा रे मामा रे।

लीजिए सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है वक्त की दीवार। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई है। ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोकभवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. दिलीप कुमार केसरी को कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। इधर लोकभवन ने 6 विश्वविद्यालयों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए 20 जून तक आवेदन मांगे हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 24 मई को होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 3 नए परीक्षा केंद्र शुरू किए हैं। आयोग के अनुसार केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही देश भर में केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए कुल 8,19,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का दिन देशभर में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर करना है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया है कि समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा समेत अन्य अधिकारियों और कर्मियों ने आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ ली। काल बैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, कटिहार समेत राज्य के

0: उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि इस दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। इधर दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पटना, गया, नालंदा, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अधिकतर स्थानों पर लू की स्थिति बनी हुई है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान और उमस के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुपौल जिले के बीरपुर में सैलेशपुर चौकी के पास एसएसबी जवानों ने एक नेपाली महिला के पास से हिरण का सिंग बरामद किया है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अररिया जिले के पलासी प्रखंड के 5 पंचायतों में आज जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। मधुबनी जिले के खजौली रेलवे स्टेशन के करीब जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन में ट्रैक पर गिरी एक मोटरसाइकिल फंस गई। ट्रेन के चालक की सूझबूझ के कारण हादसा होने से बच गया। रेल अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नवादा जिले के गोविंदपुर स्थित ककोलत जलप्रपात में प्रवेश और पार्किंग शुल्क को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने, उनकी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए ये बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मीटा, गूगल और टेलीग्राम समेत अहम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इस दौरान मुकाबला जाति इम्तहान से मुतल्लिक गलत इत्तलात की बढ़ती तशहीर पर तशवीश जाहिर की गई। ये मीटिंग 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तहान से कबल काफ़ी अहम समझी जा रही है। एक दीगर मीटिंग में वजीर तालीम ने नीट यूजी दोबारा इम्तहान के गैर जानबदाराना और बेहतर इनाकात को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और पुख्ता इंतजाम की ज़रूरत पर जोर दिया। मगध यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को फौरी असर से हटा दिया गया है। लोक भवन ने इससे मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी को वाइस चांसलर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर लोक भवन ने 6 यूनिवर्सिटियों ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर श्री दरभंगा संस्कृत विद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बीआर अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी और जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा में तकरीरी के लिए 20 जून तक दरखास्तें तलब की हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने 24 मई को होने वाले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रिलिमिनरी इम्तहान के लिए 3 नए मराकज शुरू किए हैं। कमीशन के मुताबिक सेंटरों पर भीड़ कम करने के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में इम्तहानात मराकज कायम किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे मुल्क में सेंटरों की कुल तादाद 83 हो गई है। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि ये यकीनी बनाया जा रहा है कि माजूर उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा इम्तहान मराकज अलॉट किए जाएं। इस साल सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी इम्तहान 2026 के लिए कुल 8,19,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। मुल्क आज साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। इस दिन साल 1991 में साबिक वजीर आजम को दहशतगर्दों की साजिश का शिकार हो गए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में साबिक वजीर आजम को खराज अकीदत पेश किया है। पटना वाकई कांग्रेस सदर दफ्तर सदाकत आश्रम में मुनक्किद ताजियती जलसे में पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान ने साबिक वजीर आजम के मुजस्मे पर गुलपोशी की। आज का दिन पूरे मुल्क में दहशतगर्दी मुखालिफ दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों को दहशतगर्दी और तशद्दुद की सकाफत से दूर करना है। इस मौके पर हलफ बरदारी तकरीब समेत कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। हमारे औरंगाबाद नवानिगार ने बताया कि कलेक्ट्रेट में मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान जिला मजिस्ट्रेट अभिलाषा शर्मा समेत दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने दहशतगर्दी और तशद्दुद का डटकर मुकाबला करने का हलफ लिया। कल बैसाखी के असर से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत रियासत के शुमाली इलाकों में बेशतर मकामात पर आंधी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि इस दौरान गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर न रहें। इधर जनूबी बिहार के बेशतर हिस्सों में शिद्दत की गर्मी का कहर जारी है। पटना, गया, नालंदा, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक हवलदार इंस्पेक्टर के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी।

आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 के कुल 190 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.in

army.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की।

0: है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
1: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
3: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड,
4: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
4: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल

0: में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के दो सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
3: चाय, ये चाय।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज की फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजर

0: वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
1: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान

0: यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: जी
0: यही वो अनोखी जगह है जहाँ विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
1: जी
0: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओ, शोला वन

0: और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन, यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहां बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊंचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जल धाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं।
0: जी,
1: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CITNCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है, लो सुनो।

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
0: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओहो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
2: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर
1: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
6: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान।

0: अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
1: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
2: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
1: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
2: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
1: हाँ।
0: अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़।
1: इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
2: बिल्कुल सही कहा अटकू।
3: इसे काट।
4: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
2: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल।
0: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
5: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
1: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
2: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
0: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
2: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
1: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
0: वो उसे काटने लगे।
4: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
1: अच्छा ठीक है
2: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
0: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
6: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
2: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
0: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
7: अरे वाह अटकू मटकू,
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
1: पेड़ हमारे
8: दोस्त हैं।
1: जीवन में हरियाली लाओ,
8: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
9: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
10: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार।
11: उमंग, उमंग।
12: अभी

सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप
2: चंचल जी? और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
1: भाई देखिए, आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहाँ अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने।
2: लेकिन इस वजह से वहाँ पे भी गर्मी होने शुरू हो गई है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
1: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहाँ रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर
2: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
1: हाँ,
2: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो और आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
1: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
2: हाँ, फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है।
1: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
2: वो उन्हें बताएं अपना।
1: हाँ,
2: बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ, किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
1: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राहीबाई सोमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता यानी कि सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई,
2: हाँ,
1: चाय दिवस, चाय की चुस्कियां लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
2: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50 आप सोच लीजिए कि गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय चाहिए। चाय के बिना गुजारा नहीं है।
1: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज होती है, वो चाय होती
2: है।
1: दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो है वो अपना आलम बांध देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में
2: बात करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ।

0: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
1: जी और बिल्कुल, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
0: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
1: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
0: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
1: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, हम लोगों ने इतनी बातें करी तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपड़े की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपड़े का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेतीबाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी थी तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान असुनपन त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपड़े जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात यह थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो, और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती हैं कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वास पूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
0: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई

0: सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बाबलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
1: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
0: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
1: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है।
1: सच में
0: और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की
1: गर्म
0: प्याली
1: चाय,
0: अगर
1: बिल्कुल
0: मिल जाए।
1: चाय मिल जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने
0: जी,
1: दिमाग को हम ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं
0: और
1: पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े
1: हाँ
0: थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सरदर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है
1: अरे
0: ना
1: अगर
0: वो
1: कहीं
0: वर्ल्ड
1: गए
0: फेमस
1: आप,
0: है।
1: अगर आप किसी के घर गए, चंचल जी, अगर
0: हाँ
1: आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन
0: जी
1: आप घर गए, उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, पता
0: भाई,
1: चाय बस चाय नहीं पिलाई, तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं।
1: बिल्कुल
0: और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर इसे हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज़्यादा चाय एक दिन में पी जाती हैं।
1: सच में बहुत ज्यादा,
0: और
1: बहुत
0: पौराणिक कथाएं हैं ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्याली चाय अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समा बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहां लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले
1: हाँ
0: हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: और वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं,
0: जी
1: चलो एक बार और हो जाए, एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा।
1: एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सबका हल
0: जी
1: निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे हमें मिल जाए अगर समय, बात करते करते तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो वो फाइलें निपट जाती हैं फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भिन्नी भिन्नी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक
1: बिल्कुल
0: गीत भी सुन लेते हैं।

0: भाई हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में।
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा।
0: हाँ, और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, और फिर हम बैठकर
1: आज तो
0: चाय
1: बनता है
0: लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो
1: बिल्कुल।
0: भाई उस चाय को
1: आज
0: कहते ना तौहीन
1: चाय
0: हो
1: का
0: जाएगी।
1: सम्मान करना जरूरी है
0: बिल्कुल।
1: भाई।
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है, ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है। साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे। खेत से लेकर कप तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं।
1: जी, और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला
0: बिल्कुल
1: क्यों गया आखिर। तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ है, ये तो हम कहेंगे।
0: चाय की बात और भारत की बात ना हो ऐसा कैसे
1: बिल्कुल,
0: होगा।
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी।
0: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया, और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया,
1: बिल्कुल।
0: और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया, और पहली बार

0: 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई है।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए हैं इस पे। और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है। और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है और रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश है उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहाँ भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी प्याली लेकर
1: स्वादिष्ट मिलती है
0: और वहाँ घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला।
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज
1: की। आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा न वा।
0: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं, जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं। लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं। भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है। और हाँ, मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी की कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है।
0: चाय के प्याले भी करवा लिए जाते हैं
1: कप चाय मिल जाने पे।
0: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है।

0: धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना, शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो, सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
1: ओहो, क्या बात है भाई।
0: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है
1: इनका। एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है, सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
0: तो वही चलिए, गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: भाई, हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूंट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षित हैं जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने, आप दोनों बहनों को 2 कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी है उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही
0: हमारे श्रोता
1: है।
0: साथी लिखते हैं कि हर घूंट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो
1: वाह,
0: आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है

0: जो लिखते हैं कि हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात
1: हमारे
0: है।
1: श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन, और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी, ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं छोड़ता।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है। हाथों को तलब है हाथों की, और दिल को तलब है साथ की।
1: देखो भाई, संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं
0: विषय को नहीं
1: छोड़ पा रहे।
0: छोड़ा।
1: हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और
0: बिल्कुल।
1: बताओ कौन कौन से
0: और बहुत
1: फोबिया
0: से
1: होते हैं।
0: फोबिया होते हैं, जैसे कि किसी को किसी जैसे किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
1: हाँ
0: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है ना,
1: हाँ
0: ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है
1: जी,
0: अनावश्यक तौर पर, तो वो फोबिया ही है।
1: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है
0: हाँ,
1: उसे कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जाँच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
0: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपेनोफोबिया, जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको। और सोशल फोबिया, जैसे कि सोशल, जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको, वो होता है। और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है, वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहाँ फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा, तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं, ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो फोबिया कहलाता है।
1: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: भी देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा, ये क्यों ऐसा हो रखा है, फितरों से उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहाँ से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी,
2: बिल्कुल जाना है, शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है, तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर ही इसका हिस्सा बनेंगे।
2: बिल्कुल पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा, तो वहां से आंखें जल्दी सूखती हैं। और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
1: बिल्कुल। और हम सुन लें गाना और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से
1: येलो में
0: इजाजत। हाँ
1: चलिए
0: हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आदि श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओ, विविद भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओ, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविद भारती से आपके रेडियो तक पहुँचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्ही गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: तो विविद भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। तो यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे।
1: पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है।
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी सहेली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सखियों की बात होती है और सखाओं की बात होती है, फेसबुक पे कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियाँ हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
1: अभी इसे बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाके, और इसमें गाने के बोले डक डक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा इंटर सारिया प्रिया से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप 10वीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहे हैं रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहलिम जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं ही कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, नेहा संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं, क्योंकि आप 10वीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: में फिर तेरी कहानी आ गई, काले बोले दिल में सनम की सूरत, आंखों में आके दे मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है आजकल, तो पक्षी की मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, ऐसे घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानों से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, देवल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेके आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में, हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमे बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत। कसम

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छे हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: ठंडक पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं।
0: हाँ जी जी जी हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा और क्या करती हैं
1: इसके अलावा? तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, अभी जो मंच आएगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल है।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी मेहरबानी आप लोगों की,
0: क्योंकि मैं आपको जो आपका नाम है वो बहुत पुराना, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
1: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
0: जी अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
1: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं, और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और हमको अभ्यास भी है। राजस्थान के लोग हैं हम तो, गर्मी का अभ्यास है।
0: तो नरोत्तम जी ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ। पूरे दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है, और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
0: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
1: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
0: तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर।
1: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूँगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है।
0: जी
1: धर्मेंद्र हेमामालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है, राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए। कितना

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:30 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इस सभा में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: के आपके अपने चहेते कार्यक्रम युववाणी में मैं हूं आपकी दोस्त अस्मिता सिंह
1: और मैं हूं प्रीतेश कुमार।
0: और आज तारीख है 21 मई। दोस्तों, आज का दिन कैलेंडर में बड़ा ही खास और थोड़ा सा मिक्स इमोशंस वाला है। क्यों, चलिए बताते हैं
1: सबको। अस्मिता, पहले तो उन सभी के लिए एक जोरदार चीयर्स जिन्हें सुबह उठते ही सबसे पहले एक कप गर्म प्याली की जरूरत होती है। क्यों, आपको जरूरत होती है कि नहीं सुबह सुबह चाय? तो उसी को लेकर, जी हाँ, जैसा कि आपने बताया, आज है 21 मई और आज है इंटरनेशनल टी डे। तो दोस्तों, चाय की चुस्की के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल प्रीतेश, चाय के इस मिठास के साथ साथ आज का दिन हमें बहुत कुछ सोचने और समझने का मौका भी देता है। आज वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी और डायलॉग एंड डेवलपमेंट भी है। इसका सीधा सा मतलब है हमारी भाषा, हमारा रहन सहन भले ही अलग हो, लेकिन यही विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अलग होकर भी साथ रहना ही तो असली स्वैग है।
1: बिल्कुल, और इसी एकता को बनाए रखने के लिए आज देश मना रहा है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। आतंकवाद के खिलाफ हम युवाओं को एकजुट होना है और देश में शांति और अमन का माहौल बनाना है। क्यों अस्मिता?
0: बिल्कुल प्रीतेश, शांति की बात चली है तो आज का दिन भारत के इतिहास के एक बेहद दुखद पन्ने की याद भी दिलाता है। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। एक ऐसे नेता जिन्होंने भारत को डिजिटल युग और टेक्नोलॉजी की राह दिखाई। आज हम उन्हें भी नमन करते हैं।
1: बिल्कुल अस्मिता, तो श्रोताओं, यादों, संकल्पों और चाय की खुशबू के साथ आज के इस सफर में मेरे साथ बने रहिए। युवानी पर बातों और गानों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। चलिए सुनते हैं आज का यह पहला कूल ट्रैक। क्यों अस्मिता?
0: बिल्कुल प्रीतेश।

0: तो श्रोताओं, जैसा आप सुन रहे थे द ब्रेकअप सॉन्ग अरिजीत सिंह की आवाज में, वहीं आज 21 मई है अश्मिता, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। श्रोताओं, यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया की असली खूबसूरती उसके अलग अलग रंगों, भाषाओं, खान पान और संस्कृतियों में छिपी है। क्यों अस्मिता?
1: बिल्कुल प्रीतेश, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिन सिर्फ संस्कृतियों का जश्न मनाने का नहीं, बल्कि संवाद और विकास के लिए एक सेतु बनाने का है।
0: बिल्कुल सही कहा। अक्सर लोग जो होते हैं अस्मिता, संस्कृति का मतलब सिर्फ नाच गाने या त्योहार से लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में संस्कृति हमारे जीने का तरीका है, हमारी सोच है और हमारे पूर्वजों की विरासत है। दुनिया में हजारों जनजातियां और समुदाय हैं और सबकी अपनी एक अनूठी जीवन शैली है।
1: सही कहा प्रीतेश, जैसे एक बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल उसकी शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही मानव समाज में विभिन्न संस्कृतियां इसे जीवंत बनाती है। ये विविधता हमें संकीर्णता से बाहर निकालती है और दुनिया को एक व्यापक और नए नजरिए से देखने की समझ देती है।
0: बिल्कुल सही कहा। इस दिन के नाम में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और वो है संवाद। आज की दुनिया में जहां गलत फहमियों के कारण दूरियां बढ़ रही हैं, वहीं संस्कृतियों के बीच संवाद होना बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों की परंपराओं को सुनते हैं और समझते हैं अस्मिता, तो होता यह है पूर्वाग्रह अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब जो नहीं होता है कि इस चीज़ को हम नहीं समझते थे पहले, तो जब उस चीज़ को समझते हैं अच्छे से, तो सारी जो बाधाएं होती हैं, सारी जो दुविधाएं होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं।
1: बिल्कुल प्रीतेश, संवाद का मतलब केवल बात करना नहीं, बल्कि सम्मान पूर्वक एक दूसरे को सुनना होता है।
0: बिल्कुल,
1: जब दो अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपस में मिलते हैं तो नफरत की दीवारें गिर जाती हैं और भाईचारे का जन्म होता है।
0: बिल्कुल,
1: बिना संवाद के कोई भी समाज शांतिपूर्ण नहीं रह सकता।
0: यही नहीं, यूनेस्को का मानना है कि दुनिया के 3/4 बड़े संघर्ष सांस्कृतिक मतभेदों के कारण होते हैं। बताइए, इसलिए वैश्विक शांति और सतत विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करना बेहद जरूरी है अस्मिता। संस्कृति आर्थिक विकास का भी एक बड़ा ईंधन माना जाता है। जैसे
1: जी हाँ, पर्यटन, हस्तशिल्प, संगीत और सिनेमा जैसे सांस्कृतिक उद्योग आज दुनिया भर में करोड़ों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। 2026 के इस दौर में क्रिएटिव इकोनॉमी वैश्विक जीडीपी में एक बड़ा योगदान दे रही है, जो विकास का नया मार्ग है।
0: और यही नहीं, जब सांस्कृतिक विविधता की बात हो तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। मतलब अब कोस कोस का मतलब तो समझ ही गई होंगी और जो हमारे श्रोता हैं वो भी समझ चुके होंगे। उत्तर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के समुद्र तट तक भारत विविधताओं का एक जीता जागता अजायब घर है। मतलब बहुत सारी विविधता है इसमें।
1: बिल्कुल प्रीतेश, हमारे यहाँ खान पान, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग हो, लेकिन रूह एक ही।

0: है। ईद, दिवाली, क्रिसमस और छठ पूजा में पूरा देश एक साथ झूम उठता है। यही गंगा जमुनी तहजीब और समरसता हमारी भारतीयता की असली पहचान और ताकत है।
1: बिल्कुल सही कहा। यही नहीं, अगर हम देखें कि आज बिहार की मिट्टी को भी नमन करते हैं। बिहार सांस्कृतिक विविधता का एक अद्भुत केंद्र है। अगर आप देखें, यहाँ भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका जैसी बोलियों की मिठास है। सूफी संतों की दरगाहें हैं और बौद्ध जैन धर्म के स्तूप यहाँ एक साथ मुस्कुराते हैं।
0: और प्रदेश, मधुबनी पेंटिंग हो या सुजनी कढ़ाई,
1: वाह,
0: यहाँ की लोक कलाओं ने दुनिया में धूम मचाई
1: मचा दी।
0: है।
1: हाँ,
0: मनेर शरीफ का उर्स हो या सोनपुर का मेला, यहाँ हर संस्कृति का स्वागत बाहीं फैला कर किया जाता है। बिहार का इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा ज्ञान और विविधता का सम्मान किया है।
1: अस्मिता, इस दिन पर हमें एक गंभीर चुनौती पर भी बात करनी होगी। आज वैश्वीकरण के दौर में दुनिया की कई छोटी भाषाएं और बोलियां तेजी से विलुप्त होते जा रही हैं। जब एक भाषा मरती है तो उसके साथ सदियों का ज्ञान और संस्कृति भी दफन हो जाती है।
0: यह बहुत चिंताजनक है प्रदेश। दुनिया के लगभग 40% भाषाओं पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। हमें अपनी मातृभाषाओं का सहेजना होगा।
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हम अपनी लोक कथाओं और बोलियों को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
1: इंटरनेट और सोशल मीडिया ने भले ही कुछ चुनौतियां खड़ी की हों, लेकिन इसने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बहुत आसान बना दिया है। हम एक तरफ देखते हैं, आज बिहार के किसी गांव का लोकगीत YouTube पर अमेरिकी का कोई नागरिक भी सुन सकता है और सराहना करता है उस चीज को।
0: बिल्कुल, डिजिटल टूल्स ने दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है। अब हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने की कला, वास्तुकला और इतिहास को देख समझ सकते हैं। तकनीक का ये सही उपयोग संस्कृतियों को करीब लाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है।
1: आज का युवा देखें तो सांस्कृतिक रूढ़ियों को तोड़कर एक समावेशी दुनिया का निर्माण करने का संकल्प ले चुका है। युवा अब रील्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग्स के जरिए अपनी पारंपरिक पहचान को आधुनिक रंग में पेश कर रहे हैं, जो कि सराहनीय है।
0: युवा ही इस विविधता के सबसे बड़े संवाहक हैं।
1: बिल्कुल,
0: वे न केवल अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, बल्कि दूसरों की कला और विचारों को भी खुले दिल से अपनाते हैं। जब युवा फ्यूजन संगीत या बहुसांस्कृतिक स्टार्टअप बनाते हैं, तो वे दुनिया को जोड़ते हैं।
1: बच्चों को बचपन से ही विविधता का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम में अलग-अलग राज्यों और देशों की संस्कृतियों, उनके इतिहास और त्योहारों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे सहिष्णुता और संवेदनशील बन सके।
0: सही कहा प्रदेश। विविधता में एकता की सीख केवल किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि स्कूलों में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए। जब बच्चे बचपन से ही अलग-अलग पृष्ठभूमि के दोस्तों के साथ रहना सीखते हैं, तो बड़े होकर वे एक शांतिपूर्ण समाज बनाते हैं।
1: बिल्कुल, सांस्कृतिक विविधता का एक और बड़ा पहलू है अस्मिता, पारंपरिक ज्ञान। हमारी विभिन्न जनजातियों के पास प्रकृति, जड़ी बूटियां और पर्यावरण संरक्षण का एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है जिससे आज का आधुनिक विज्ञान भी सीख ले रहा है।
0: बिल्कुल, चाहे वो आयुर्वेद हो, जैविक खेती के पुराने तरीके हो या जल संचयन की पारंपरिक प्रणालियां, यह सब हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इस ज्ञान को सहेज कर और आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर हम जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं।
1: साहित्य हो या फिर संगीत, सिनेमा ने हमेशा संस्कृतियों को आपस में जोड़ने का काम किया है। एक विदेशी फिल्म देखकर भी हम वहां के लोगों के दर्द और खुशियों से जुड़ जाते हैं। कला सीमाओं के बंधन को नहीं मानती। आप देखती होंगी कि अलग-अलग कलाएं जो होती है वो हमें उस संस्कृति से जोड़ती है, तो वही हमें पूरी दुनिया की संस्कृति की सैर करा देता है।
0: जी हाँ, ऑस्कर के मंच पर जब नाटू नाटू गूंजता है, या सूफी संगीत की धुनें बजती है तो भाषा की दीवार

0: टूट जाती है।
1: बिल्कुल
0: सिनेमा और कला वो माध्यम है जो बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के हमें पूरी दुनिया की संस्कृति की सैर करा देते हैं।
1: सांस्कृतिक पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण है। आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है। लोग अब सिर्फ आलीशान होटलों के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन, उनके खान पान और त्योहारों और लोक कलाओं को करीब से अनुभव करने के लिए यात्रा करते हैं।
0: और ये पर्यटन केवल पैसा नहीं लाता, बल्कि दो अलग-अलग विचारों और समाजों को करीब लाता है।
1: बिल्कुल
0: जब एक पर्यटक किसी ग्रामीण कलाकार के घर रुकता है, तो दोनों के बीच एक अनमोल रिश्ता बनता है। यही रिश्ता विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत करता है।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस पर हमारा सबसे बड़ा संकल्प यही होना चाहिए कि हम किसी भी संस्कृति, भाषा या समुदाय को खुद से छोटा या अलग ना समझें। नफरत और संकीर्णता को अपने मन से निकाल फेंके। क्यों अस्पताल?
0: हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां हर नागरिक बिना किसी डर के अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ जी सके, अपनी संस्कृति से प्यार करें, लेकिन दूसरों की संस्कृति का सम्मान करना भी सीखें। यही इस दिवस का सबसे सच्चा और गहरा संदेश है।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं को इतनी बातें बताने के बाद क्यों ना एक और कूल सा ट्रैक बजाया जाए।
0: बिल्कुल प्रीतेश।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बैंड बाजा बारात से एवे एवे। आवाज़ थी सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान की। श्रोताओं को तो कूल ट्रैक जो है एकदम मस्ती भरा लग रहा है। आज श्रोताओं का जो मूड है चाय की चुस्कियों के साथ, जो मज़ा आ रहा होगा उनको, नहीं?
1: बिल्कुल
0: वही, अभी हमने बात की सांस्कृतिक विविधता के बारे में, तो वहीं और एक सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो होता है एकजुटता।
1: बिल्कुल
0: और वही आज का हमारा ये है कि आज 21 मई है, जहां एक तरफ हमने सांस्कृतिक विविधता की बात की, तो दूसरी तरफ आतंकवाद विरोधी दिवस भी आज है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म डे। श्रोताओं, आज का यह दिन हमारे इतिहास का एक बेहद भावुक और गंभीर पन्ना है। आज ही के दिन 1991 में हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को एक क्रूर आतंकवादी हमले में खो दिया था।
1: बिल्कुल प्रीतेश, उनकी शहादत की स्मृति में ही हर साल ये दिन पूरे देश में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल उस काले दिन को याद करना नहीं, बल्कि देश के युवाओं और नागरिकों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करना और शांति का संदेश फैलाना है।
0: बिल्कुल, आज के दिन पूरे देश के सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में एक विशेष शपथ ली जाती है, पता है स्मिता? वो शपथ ये होती है कि देश की अहिंसा और सहनशीलता की परंपरा में अटूट विश्वास रखने की, मतलब तथा हर प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने की।
1: जी हाँ प्रीतेश, ये शपथ हमें याद दिलाती है कि मानव जाति के बीच करवाहट पैदा करने वाली ताकतों के खिलाफ हमें एक दीवार बनकर खड़ा होना है। जब तक देश का हर नागरिक मानसिक रूप से इस बुराई के खिलाफ तैयार नहीं होगा, तब तक इस जंग को पूरी तरह जीतना मुश्किल है।
0: बिल्कुल, और वही नहीं, आतंकवाद किसी एक देश या राज्य की समस्या नहीं है अस्मिता। हमारे श्रोताएं भी जानते हैं कि किसी एक देश में आतंकवाद हो सकता है, नहीं, ये कारण है कि ये एक वैश्विक महामारी है। यह निर्दोष लोगों के मन में डर पैदा कर समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करता है। भारत दशकों से एक सीमा पार और आंतरिक आतंकवाद का सामना मजबूती से करता आ रहा है।
1: सही कहा प्रीतेश, चाहे वो 26/11 का मुंबई हमला हो या संसद पर हुआ हमला, भारत ने बहुत गहरे जख्म सहे हैं, लेकिन इन हमलों ने हमारे देश के हौसलों को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत किया। हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने हमेशा अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। आज का ये जो दिन है वो उन वीर जवानों और पुलिस कर्मियों को नमन करने के लिए है, जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। चाहे वो मेजर संदीप उन्नन कृष्णन से लेकर अनगिनत गुमनाम नायकों तक, उनकी शहादत ही है कि आज हम और आप अपने घरों में सुरक्षित सांस ले रहे हैं।
1: बिल्कुल प्रीतेश, उनके परिवारों का त्याग भी देश के लिए किसी वंदना से कम नहीं
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही कहा आपने।
1: राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर हमें उन वीरों को, वीर गाथाओं को युवाओं तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी यह समझ सके कि आज हम जो आजादी और शांति देख रहे हैं, उसकी कीमत क्या है।
0: 2026 के इस डिजिटल दौर में अस्मिता, आतंकवाद का चेहरा भी बदल गया है। हमें सिर्फ लगता है कि जो सीमा पार हो रहे हैं वही आतंकवाद है, लेकिन अब

0: इंटरनेट के माध्यम से भी जो है आतंकवाद किया जा रहा है। इसका आप साफ तौर पे दे सकते हैं कि साइबर आतंकवाद, मतलब लड़ते हुए डार्क वेब जैसे वेबसाइट्स हो गए और डिजिटल फंडिंग के जरिए युवा मस्तिष्क को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम देखें कि अब यह लड़ाई केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि इंटरनेट के स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है।
1: ये गंभीर बात कही प्रदेश। सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी खबरें फैलाना और नफरत के बीज बोना भी इसी का एक हिस्सा है।
0: बिल्कुल
1: हमारी सुरक्षा एजेंसियां अब साइबर विक को बहुत मजबूत कर रही है ताकि इन
0: अदृश्य जो खतरे हैं, ये जितने भी अदृश्य खतरे हैं, इनविजिबल, जो हमें दिखते नहीं है, अब इंटरनेट के माध्यम से कौन जान पा रहा है कि कौन बैठा है और कौन ये फेक न्यूज़ फैला रहा है।
1: बिल्कुल प्रदेश।
0: तो यही सबसे बड़ा है। और यही नहीं, अगर हम देखें कि आतंकवादी संगठन जो होते हैं अक्सर उन युवाओं को निशाना बनाते हैं जो बेरोजगारी, हताशा या अधूरी जानकारी का शिकार होते हैं। आज के युवाओं को यह समझना होगा कि हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। शिक्षा और सही मार्गदर्शन ही युवाओं को सबसे बड़ा रक्षा कवच है।
1: बिल्कुल, हमारे युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर होने के साथ साथ वैचारिक रूप से भी पारंपरिक होना होगा।
0: हाँ,
1: किसी भी भड़काऊ पोस्ट या कट्टरपंथी विचारधारा के झांसे में आने के बजाय उन्हें तर्क और देश हित की कसौटी पर हर बात को परखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: युवा ही इस देश का भविष्य और रक्षक दोनों हैं।
0: एकदम ये बात आपने बिल्कुल सही कि आने वाले समय में जो युवा है वही इस देश का भविष्य भी है और वही इस देश का रक्षक भी है। अगर आपने देखा कि हमारे युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर तो होना ही, जैसा आपने बताया, वहीं जब आंतरिक सुरक्षा की बात आती है तो बिहार पुलिस और विशेष, जैसे आप देख लें दोस्तों, जैसे ATS ने भी राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार ने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है जो आतंकवाद जैसी ताकतों को पनपने से रोकती है।
1: सही कहा प्रदेश। पटना और राज्य के अन्य संवेदनशील इलाकों में प्रशासन की चौकसी और कम्युनिटी पुलिसिंग ने जनता और सुरक्षा बलों के बीच के विश्वास को बढ़ाया है।
0: बिल्कुल
1: जब जनता पुलिस की आंख और कान बन जाती है तो देशद्रोही तत्वों के छिपने की जगह खत्म हो जाती है।
0: बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब जनता जागरूक हो जाती है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है किसी के पास। तो बस यही है कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ सबसे प्रखर आवाज उठाई है। भारत का रुख हमेशा साफ रहा है, अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद जैसा कुछ नहीं होता। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश को वैश्विक स्तर पर अलग थलग किया जाना चाहिए।
1: जी हाँ, भारत की नो टॉलरेंस पॉलिसी को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीतियों में भारत का योगदान और G20 जैसे मंचों पर इस मुद्दे को उठाना, ये साबित करता है कि भारत दुनिया में शांति का सबसे बड़ा परोपकार है।
0: बिल्कुल। और यही नहीं अस्मिता, अगर हम देखें आतंकवाद का सबसे पहला निशाना हमारे समाज की एकता होती है, वो हमारे समाज की एकता को तोड़ते हैं, तब वो जो आतंकवाद होता है वो और ज़्यादा फैलता है। वे चाहते हैं कि हम धर्म, जाति और मजहब के नाम पर आपस में लड़ें। इसलिए हमारे समाज का आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब को, जैसे गंगा जमुना आपने सुना होगा, गंगा जमुना तहजीब को पूरी तरीके से मजबूत रखना ही आतंकवाद पर सबसे बड़ी जीत है।
1: बिल्कुल सही। जब ईद, दिवाली, क्रिसमस और छठ पूजा में पूरा मोहल्ला एक साथ खड़ा होता है तो नफरत फैलाने वालों के मंसूबे अपने आप ढेर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: जागरूकता का मतलब सिर्फ संदेशापद वस्तुओं की रिपोर्ट करना नहीं, बल्कि समाज में किसी भी प्रकार की करवाहट को ना बढ़ने देना भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। हमारी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को बचपन से ही शांति, अहिंसा और राष्ट्रवाद के मूल्य सिखाए जाने चाहिए। उन्हें महापुरुषों जैसे महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद और APJ अब्दुल कलाम के विचारों से जोड़ना चाहिए, जिन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण और सह-अस्तित्व की बात की है।
1: शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण करने वाली होनी चाहिए। जब हमारे बच्चे

0: संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनेंगे तो वे समाज की किसी भी बुराई या बहकावे के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। अक्सर हम उन हमलों की चर्चा करते हैं जो हो गए, लेकिन उन सैकड़ों हमलों की बात नहीं हो पाती है अस्मिता, जिन्हें हमारी खुफिया एजेंसी, जैसे बहुत सारी एजेंसियां हैं, वो समय रहते नाकाम कर देती हैं। पर्दे के पीछे काम करने वाले ये जासूस जो होते हैं, वो देश के असली रक्षक होते हैं।
0: सच कहा प्रतीश, दिन रात देख कर डेटा का विश्लेषण करना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और सुरक्षा बलों को सटीक इनपुट देना, ये एक बेहद कठिन और जोखिम भरा काम है। इन खुफिया तंत्रों की मुस्तैदी के कारण ही आज हमारे त्योहार और आम जनजीवन सुरक्षित है।
1: बिल्कुल, आतंकवाद से लड़ने के लिए केवल हौसला काफी है क्या? काफी है क्या स्मिता? सिर्फ आपके पास हौसला होगा तो आप किसी भी चीज से लड़ लोगी? नहीं,
0: नहीं,
1: बल्कि सख्त कानून भी जरूरी होता है। नहीं तो फिर आपके पास हौसला होगा तो अब तो आप संविधान जो है उसका भी ये खंडन कर दोगी। आपके पास जब तक एक बैरिकेड नहीं होगा, एक बैरियर नहीं होगा, तो कैसे आगे बढ़ोगी? वैसे ही जैसे विशेष संस्थाएं आतंकवाद के मामलों की त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करती है।
0: इन कानूनों को मकसद अपराधियों के मन में डर पैदा करना और पीढ़ियों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना है।
1: बिल्कुल, वही नहीं, अगर आप देखें कि इस लड़ाई में मीडिया की भूमिका भी बहुत संवेदनशील होती है। आतंकवाद से जुड़े खबरों को दिखाते समय सनसनी फैलाने के बजाय जिम्मेदारी और संयम बरतना चाहिए। कई बार लाइव कवरेज से सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बाधा आ सकती है, जैसा हमने अतीत में देखा था। तो अस्मिता, श्रोताओं को हमने आतंकवाद पे इतनी सारी बातें बताई, श्रोताएं बहुत कुछ जानते थे पहले से और हमने बहुत कुछ बताया, तो चलिए फिर से एक प्यारा सा ट्रैक श्रोताओं को सुनाया जाए।
0: बिल्कुल प्रतीश।

0: तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अब तो फॉरएवर फिल्म तारा रमपम, गायक हैं के।
1: अस्मिता, इतने दिन में तो लग रहा है हमारे श्रोताओं ने खूब चाय पी ली होगी क्या?
0: बिल्कुल
1: लेकिन चलिए, क्यों नहीं अपने अगले विषय पे जाने से पहले श्रोताओं को एक संदेश सुना दिया जाए।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: तो आज है जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, तो श्रोताओं हमारे देश में सुबह की शुरुआत तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक रसोई से अदरक और इलायची की महक वाली चाय की खुशबू ना आ जाए। आज हम इसी अमृत तुल्य पेयजल का जश्न मनाएंगे।
0: बिल्कुल प्रीतेश, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिन सिर्फ चाय पीने का बहाना नहीं है बल्कि ये उन लाखों बगान श्रमिकों और किसानों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन है जो दिन रात मेहनत करके चाय की पत्तियां चुनते हैं और हमारे प्यालों में खुशियां भरते हैं।
1: बिल्कुल, क्या आप जानती हैं कि चाय का इतिहास लगभग 5,000 साल पुराना है? हमारे श्रोताओं को भी ये नहीं पता होगा कि ये जो हम चाय सुबह सुबह पीते हैं या फिर जब मन करता है तब पीते हैं, हमारे जो चाय का इतिहास है वो 5,000 साल पुराना है। इसकी शुरुआत चीन से हुई थी जहाँ एक राजा के गर्म पानी का जो बर्तन था उसमें जंगली चाय की कुछ पत्तियां गिर गई और पानी का रंग जो है वो बदल गया। राजा ने देखा, अरे ये क्या हो गया। राजा ने इसे चखा तो उन्हें एक नई ताजगी महसूस हुई।
0: जी हाँ प्रीतेश, और भारत में इसे व्यवसायिक रूप से लाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है जिन्होंने 19वीं सदी में असम की पहाड़ियों में चाय के पौधे खोजे और इसके बगान लगाए। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और यहाँ की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है।
1: बिल्कुल, भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि एक भावना है, एक संस्कृति है। हमारे यहाँ सुख हो दुख हो, अगर कुछ भी हो, इन दोनों को साझा करने के लिए, राजनीति पर बहस करने या नए रिश्ते जोड़ने का सबसे पसंदीदा बहाना है चाय। नुक्कड़ की टपरी से लेकर आलीशान होटलों तक चाय हर जगह बातचीत का एक माध्यम बना हुआ है।
0: सही कहा।

0: चाय पे चर्चा हमारे सामाजिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। जब भी घर पर कोई मेहमान आता है तो पहला सवाल यही होता है,
1: चाय
0: चाय।
1: लेंगे क्या?
0: हाँ, ये हमारी मेहमान नवाजी, अपनेपन और भारतीय संस्कृति के मिठास का सबसे बड़ा प्रतीक है।
1: बिल्कुल, जब हम बेहतरीन चाय की बात करते हैं तो आपको तो पता ही है, दार्जिलिंग और असम का नाम अपने आप जुबान पे आ जाता है। दार्जिलिंग की चाय को चाय का सैंपेन कहा जाता है क्योंकि इसकी खुशबू और स्वाद दुनिया में सबसे अनोखा है। इसे भारत का पहला GI टैग भी मिला हुआ है अस्मिता।
0: और असम की करक CTC चाय अपनी मजबूत बनावट और गहरे रंग के लिए जानी जाती है, जो दूध वाली चाय के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा दक्षिण भारत के नीलगिरी की पहाड़ियों की चाय भी अपनी सौम्य खुशबू के लिए दुनिया भर के बाजारों में धूम मचा रही है।
1: वाह, क्या बात कहा आपने। जब भी चाय बनती है ना कहीं भी, तो चाय पीने से ज्यादा जब उसकी खुशबू हमारे नाकों तक आती है तो ऐसा लगता है वाह, अब इस चाय को पीने के बाद जितनी टेंशन है वो सारी दूर हो जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: वहीं अगर हम देखें कि आज के इस आधुनिक दौर में चाय का स्वरूप बहुत बदल गया है। पारंपरिक कड़क दूध चीनी वाली चाय के अलावा अब बाजार में बहुत सारे, जैसे ग्रीन टी हो गए, ब्लैक टी हो गई, व्हाइट टी हो गई, बताइए, हमने तो एक ही टी के बारे में सुना था, बहुत सारे नाम आ गए हैं इसके, और उलोंग टी हो गई, जैसे कई विकल्प मौजूद हैं जो फिटनेस पसंद करने वाले युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं।
0: बिल्कुल। इसके साथ ही हमारी देसी हर्बल चाय जैसे लेमन ग्रास टी, हिबिस्कस टी और कैमोमाइल टी भी बहुत लोकप्रिय हो रही है। ये चाय न सिर्फ तनाव कम करती है बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है।
1: बिल्कुल।
0: चाय अब स्वाद के साथ साथ सेहत का भी खजाना है।
1: भले ही हम कांच के फैंसी कप या चीनी मिट्टी के बर्तन में चाय पी लें, लेकिन जो मजा मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीने में आता है, वाह, मतलब हमारे श्रोता तो ऑर्डर दे दिए होंगे कि एक कप चाय। तो जो मजा आता है ना मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीने में, उसकी बात ही कुछ और है। तुलना नहीं हो सकती है किसी भी चीज की उसकी, बल्कि कुल्हड़ की जो सौंधी महक चाय के स्वाद को कई गुना और बढ़ा देती है।
0: सच कहा प्रीतेश, कुल्हड़ की चाय हमें हमारी मिट्टी और जड़ों से जोड़ती है। इसके अलावा कुल्हड़ का उपयोग पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। ये प्लास्टिक के कपों का एक बेहतरीन विकल्प है और स्थानीय कुम्हारों को रोजगार भी देता है।
1: बिल्कुल सही कहा। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी है। अगर हम इसे देखें तो चाय उद्योग भारत के सबसे पुराने और संगठित उद्योग में से एक है। ये देश में प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से अधिक और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों अन्य लोगों को आजीविका प्रदान करता है, जिनमें एक बड़ी संख्या महिलाओं की है।
0: जी हाँ, चाय के बगानों में पत्तियों को चुनने का काम मुख्य रूप से महिला श्रमिक ही करती है, क्योंकि उनके हाथों में वो संवेदनशीलता होती है जो कोमल पत्तियों को सही से चुन सके।
1: बिल्कुल।
0: ये उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत देने और महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।
1: बिल्कुल, तो क्यों ना एक चाय पी ही रहे हमारे श्रोता, तो
0: हाँ
1: चलिए एक प्यारा सा कूल सा ट्रैक सुनाया जाए, चाय पीते
0: बिल्कुल।
1: पीते मजे से म्यूजिक सुनेंगे।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: तो श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने चाय पे चर्चा की, चाय पे बातें की, तो अब एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है।
4: 1991 में आज ही के दिन

0: तमिलनाडु के श्री
1: पैरम्बूर दूर में एक आत्मघाती हमले में, जैसा कि आपको पता है हमने शुरुआती में भी चर्चा की थी कि एक आत्मघाती हमले में हमने अपने युवा और गतिशील नेता को खो दिया था। वही नहीं अश्मिता, अगर हम देखें कि राजीव गांधी जी का राजनीति में आना अचानक हुआ था, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हमें राजनीति में ही जाना है, लेकिन राजीव गांधी का ऐसा कुछ नहीं था। वे पेशे से एक पायलट थे और राजनीति की चकाचौंध से दूर रहना पसंद करते थे, लेकिन 1984 में इंदिरा जी की शहादत के बाद देश के मुश्किल हालातों में उन्होंने महज 40 वर्ष की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में कमान संभाली।
0: जी हाँ प्रीतेश, इतनी कम उम्र में देश का नेतृत्व करना और वह भी एक गहरे संकट के समय उनके साहस को दर्शाता है। उन्होंने शोक के माहौल में भी देश को बिखरने नहीं दिया और एक नए आधुनिक और प्रगतिशील भारत की नींव रखने का संकल्प लिया। उनका वह शांत और सौम्य व्यक्तित्व आज भी याद किया जाता है।
1: बिल्कुल, आज 2026 में हम जिस डिजिटल इंडिया पर गर्व करते हैं, उसकी असली नींव जो है वो राजीव गांधी जी ने ही रखी थी। 1980 के दशक में जब लोग कंप्यूटर को रोजगार का दुश्मन मानते थे, तब राजीव जी ने ही सी डॉट की स्थापना की और देश में आईटी क्रांति का बिगुल फूंका।
0: बिल्कुल सही, सेम पित्रोदा के साथ मिलकर उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर का कायाकल्प किया। गांव-गांव में पीसीओ के पीले बोर्ड और एसटीडी बूथ उन्हीं के विजन की देन थे। उन्होंने समझा था कि तकनीक ही भारत को दुनिया के विकसित देशों की कतार में खड़ा कर सकती है।
1: राजीव जी युवाओं पर अटूट विश्वास रखते थे। उनके कार्यकाल का सबसे ऐतिहासिक फैसला था, अगर आप देखें कि 6वां संविधान संशोधन, जिसके तहत मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। उन्होंने देश की राजनीति में युवाओं को सीधे भागीदारी का हक दे दिया।
0: ये बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था प्रदेश। इस फैसले ने करोड़ों युवाओं को अपनी सरकार चुनने की ताकत दी और उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ा।
1: बिल्कुल,
0: राजीव जी का मानना था कि अगर 18 साल का युवा अपनी जिंदगी के फैसले ले सकता है, तो वह देश का भविष्य भी तय कर सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा। राजीव जी का एक और बड़ा सपना था सत्ता का विकेंद्रीकरण। वे चाहते थे कि दिल्ली से चला पैसा सीधे गांव के विकास में लगे। इसके लिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर कोशिश की, जिसे बाद में 73वें और 74वें संशोधनों के रूप में लागू किया गया।
0: सही कहा ब्रिटिश, उनका यह विजन ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए था। वे अक्सर कहते थे कि जब तक देश का गांव मजबूत नहीं होगा, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल,
0: पंचायतों को फंड और अधिकार देने की उनकी सोच ने ग्रामीण लोकतंत्र की तस्वीर बदल दी।
1: बिल्कुल अस्मिता। तो चलिए इसी पर हमारे श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।
3: भारत

मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है रोचक तथ्य का। श्रेयसी सिंह जमुई की रहने वाली, निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। उन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था।
1: वाह
0: खेल के मैदान में अपनी सटीकता के लिए मशहूर श्रेयसी सिंह अब राजनीति के जरिए भी समाज की सेवा कर रही है। वे बिहार के उन चंद युवाओं में से हैं जो खेल और सार्वजनिक जीवन दोनों में से एक साथ सफल है।
1: बिल्कुल। वही नहीं, गोपालगंज से ताल्लुक रखने वाली रानी खानम स्वतंत्र भारत की पहली मुस्लिम कथक नृत्यांगना है, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त की। रूढ़िवादी बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपनी कला के जरिए विश्व शांति और महिला अधिकारों का संदेश दिया। वे इस बात का प्रमाण है कि बिहार की कलात्मक जड़ें कितनी गहरी और आधुनिक सोच रख सकती हैं। स्मिता, पता ही नहीं चला टाइम का, हमें अब श्रोताओं से अलविदा लेना होगा। तो
0: तो
1: श्रोताओं, आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम तक। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सुनते रहिएगा अगला कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं मैथिली कार्यक्रम भारती।

आजुक भारतीमे पवन अपने लोकनिक स्वागत करैत अछि। श्रोताई भारतीमे प्रभा झा काव्य पाठ करती, संगहि अशोक कुमार झा गीत सुनौता, मुदा पहिने किछु गपसप कऽ ली। श्रोता, आइ गप चाह आ चौपालक करब। चौपाल ग्रामीण क्षेत्रक ओ सार्वजनिक जगह थिक जतय गाम आ समुदायक लोक जमा होइत छथि आ आपसी गपसप करैत छथि, चर्चा होइत अछि, हँसी मजाक होइत अछि। गपसप केर विखय होइत छल कोनो घटना, कोनो समस्या आ ओकर समाधान वा कोनो विवाद आ ओकर पंचायती। वर्तमानमे परिवारक चौपाल मने चौपालक अवधारणा जे परिवारमे देखबामे अबै छ से प्रायः चाह पीबा काल भेटबामे अबैत अछि। जखन सब सदस्य एक ठाम बैसै छथि ओहन दृश्य तखन सोझामे अबैत अछि। चाह पर चर्चा के परिवारक चौपाल कहल जा सकैत अछि। ई ओ घड़ी रहै छै जखन परिवारक सदस्य आपस में जुड़ाव महसूस करै छथि, हुनका बीच आपस में जुड़ाव होइ छनि आ दिन भरिक जे भेल गतिविधि छै, घटनाक्रम छै, से आपस में साझा करै छथि, आपसी संवाद करै छथि। चाहक बैसारे, चाहक बहाने सब सदस्य एके संग बैसै छथि, संवाद में धियापुता पढ़ाई, व्यापार वा नौकरीक उतार चढ़ावक संदर्भ, कोनो संबंधी ओतय आबय वाला काज भेले, चाहे अपना घर में होबय वाला कोनो आयोजन भेले वा कतौ घूमा फिरक के जे कार्यक्रम बनै छै तै सब पर चर्चा होइ छै वा पुरखाक कोनो काज जकरा आगा बढ़ायल जाय, ई सब अलग अलग तरहक विखा भ सकै छै। श्रोता, कहबाक मतलब ई जे चाहक बहाने बैसै वाला चौपाल मात्र चाहेला टा लेल नहि अछि, संपूर्ण परिवारक संसद होइत अछि जतय परिवारक सर्वांगीण विकासक गप संपूर्ण होइत अछि। श्रोता, अपने लोकनिके मन में ई बात जरूर आबैत होयत जे चाह पर चर्चा के अखन संदर्भ किया लगलै। तऽ श्रोता, आइ अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस थी, तैं लऽ कऽ आइ चाह पर चर्चा भेल। श्रोता, आब एकटा दोसर विखा लै छी। आइ 21 मई थिक, आइ देशक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जीक पुण्यतिथि मनाओल जा रहल अछि। वर्ष 1991 में आजुक दिन तमिलनाडु राज्यक श्री पेरम्बदूर में भेल आत्मघाती हमला में हुनक मृत्यु भऽ गेल छलनि। आजुक दिन के आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में सेहो याद कयल जाइत अछि। 40 वर्षक वयस में प्रधानमंत्री बनय वाला राजीव गांधी देशक सबसे कम वयसक प्रधानमंत्री छला। स्वभाव से गंभीर मुदा आधुनिक सोच आ निर्णय लेबाक अद्भुत क्षमता वाला श्री राजीव गांधी देश के ऊंच तकनीकी से युक्त करय चाहै छला। हुनक कहब छलनि जे भारतक एकता बनौने रखबाक उद्देश्यक अलावे आन मुख्य उद्देश्य जे थिक ओ अछि 21वीं सदीक केर भारतक निर्माण। हुनक पुण्यतिथि पर हुनका शत शत नमन। श्रोता, गप करब राष्ट्रीय एकता संदर्भ में। राष्ट्रीय एकता देशक सामाजिक, आर्थिक आ राजनीतिक स्थिरताक लेल बड़ जरूरी थी। ई अलग अलग संस्कृति, भाखा आ धर्मक लोक के एक संग जोड़ मजबूत आ एकजुट राष्ट्र बनबैत अछि। राष्ट्रीय एकता सँ सामाजिक समरसता बढ़ैत अछि, लोकक बीच आपसी विश्वास आ समझ सेहो बढ़ैत अछि, जाहि सँ देश में शांति आ विकासक बढ़ोतरी संभव भ सकै। श्रोता, जँ राष्ट्रीय एकताक महत्वक गप करी तऽ सामाजिक समरसताक अलावे एहिके कारण सँ आन समुदाय, जाति आ धर्मक लोक मिल भाईचारक भावना के बढ़बैत छथि, जाहिसँ शांति बनल रहै छै। एहिसँ सामाजिक जीवन मजबूत होइत अछि, लोक एक दोसराक प्रति बेसी जिम्मेवार आ संवेदनशील होइ छथि। राष्ट्रीय एकता देशक नागरिक में सामूहिक पहचानक भावना विकसित करैत अछि, जाहिसँ सब मिलकर मजबूत राष्ट्रक निर्माण करै छथि। राष्ट्रीय एकता सँ देश में विकास आ समृद्धि के बढ़ावा भेटै छै, कारण जखन सब मिलकर काज करता तब बेसी उत्पादन होयत, जाहिसँ देशक विकास तेज गति होयत। राष्ट्रीय एकता बिन

भेदभाव के अपन तरीका से जीवन जीवे के स्वतंत्रता दैत अछि। एहिसँ देश के आंतरिक आ बाहरी खतरा के बचेबा में मदद भेटै छै। कारण सबके एकजुट रहने देशक रक्षाक लेल सब मिलकर काज करता। राष्ट्रीय एकता लोकतंत्रक सफलताक लेल सेहो जरूरी थिक। कारण ई निश्चित करैत अछि जे सब नागरिक समान रूपे कानून के सीमा में रहत आ हुनक भागीदारी बनल रहन। श्रोताओ कार्यक्रम दिस बढ़ी, पहिने सुनी अशोक कुमार झा सँ ई विद्यापति।

0: श्रोता छले त अशोक कुमार झा सुना रहल छले त विद्यापति गीत आगा कार्यक्रम में हिनका सा आर गीत सुना आओ एखन सुनी हमरा लोकन काव्य पाठ अपन सरल स्वभाव आ सुमधुर आवाज में प्रभा झा ई काव्य पाठ सुना रहल छथि त आओ सुनी हुनके सा ई काव्य पाठ।
1: हमर पहिल कविताक शीर्षक थिक परिष्कार बारंबार। बाल्यकाल में चांदनीक इजोरिया में डूबल दूधक सुगंध छल। आंगन में छल स्वर्णिम रौदक चद्दर बिछल। मायक आंचर में उतरैत छल स्वर्ग आ बाबूक डांट में प्रेमक भास छल। भाईक संग झगड़ा तो खूब होइत छल आ साँझखन भाई वह भाई अपन

कान पर उठा लैत छल। बहिनक चोटी घीच ओकरो खूब कनाबैत रही, मुदा रातिमे ओही बहिन के ठोक देला पर हमर सपना नींद पबैत छल। खक्का सुनबैत रहथि रामायणक पाठ, मुदा एक दिन धृतराष्ट्रक मोह सँ भरल हुनक स्वर लोभ सँ ग्रसल छल। बालपन विचित्रे छल ने, रोटी भले आधा मुदा आनंद अतृप्ति पूर्ण छल। कपड़ा फाटल हृदयक उत्साह उज्ज्वल, पैर में चपलो ने मुदा उड़बाक साहस असीम छल। युवा मुखमंडल पर नाना तरहक दायित्वक कठोर कटु सत्य छल। युवा मुखमंडल पर नाना तरहक दायित्वक कठोर कटु सत्य छल और आँखि में स्वप्नक दंगल। घर आब आश्रय से बेसी कर्तव्यक अदालत पूजना जायत छल। कार्यालय में योग्यता नहीं मुस्की बिकायत छल। चापलूसी पदोन्नति पबैत छल, जे सत्य बाजल से कटु कहल गेल। झूठक चानन के निहार व्यवहार कुशल कहबैत छल। मनुख, हाँ मनुख, मनुख मुँह पर सभ्यता लेप मन में ईर्ष्याक अजगर पोसने छल। कॉलेज में संग संग भविष्य लिखनिहार मित्र नौकरी भेटते प्रतिस्पर्धी भ गेला। जे कहैत छल तोहर दुख हमर से मुँह आ आँखि चोरा अपन बाट बदल लेला। समाजक गली में प्रतिष्ठाक मेला छल। ईमानदार गरीब मूर्ख कहाओल आ धनवानक दोषो गुण मानल जायत छल। स्त्री जो सहनशील कोमल हृदय भेली तो अबला कहौली, आ जो स्वाभिमानी भ गेली तो अहंकारी कहौली। विवाहों में कम विरोधाभास नहीं छल। दू आत्माक मिलन दू अपेक्षाक युद्ध बन गेल। कमा का आयल पतिक मौन परिश्रम कहाओल, दिन भर घरक परिश्रम सँ क्लांत पत्नीक मौन उपेक्षा कहाओल। घर में प्रेम छल मुदा समय नहीं, संग छल मुदा संवाद नहीं। संतानक लेल रात दिन परिश्रम आ जागरण कैल, ओकरे लेल माय बाबू पुरान विचार भ गेल। डेगा डेगी चला कर सक्षम बनो निहार बाबू बुढ़ारी में संतानक सहारा पैबा लेल प्रतीक्षा करत रह गेला। बुढ़ारी जीवनक साँझ नहीं, अनुभवक मंद अग्नि नुकौने जेना राख है। शरीर छुकि गेल मुदा स्मृति सोझा ठाढ़ है। कतेक विचित्र है जीवन, बाल्यकाल में पैग होयबाक अधीरता आ बुढ़ारी में फेर सँ नेनपन करबाक लालसा। यौवन में धनक प्यास, बुढ़ारी में शांतिक तलाश। भीड़ में चाही अपन खास पहचान, भीड़ में चाही अपन खास पहचान, आ पहचान भेटला पर चाही एकांत। मनुख मंदिर बनबैत अछि मुदा मन में करुणा नहीं, धर्मक झंडा ऊंच आ आचरण नीच। जीवन सरिपहु विरोधाभासक विराट ग्रंथ अछि। प्रेम में भय अछि, वियोग में स्मृति। हसीक भीतर रुदन, रुदनक भीतर मुक्ति। हसीक भीतर रुदन आ रुदनक भीतर मुक्ति। ई संसार अछि विरोधाभासक अग्निकुंड, जे करैत अछि मनुष्यक परिष्कार। ई संसार अछि विरोधाभासक अग्निकुंड, जे करैत अछि मनुष्यक परिष्कार बारंबार। आ ओहि अग्नि में मनुखक आत्मा धीरे धीरे स्वर्ण बनैत अछि। ओहि अग्नि में मनुखक आत्मा धीरे धीरे स्वर्ण बनैत अछि। हमर दोसर कविताक शीर्षक थिक बाहर सँ पाथर भीतर सँ नीर। ई कविता स्त्रीक जीवनक विरोधाभास के परिलक्षित कऽ कऽ लिखल गेल अछि। बाहर सँ पाथर भीतर सँ नीर, ओ स्त्री छली। धधकैत रौद में चलैत एकटा चुप अरण्य, जकर आँखि में समेटल अथाह बरखा छल मुदा ठोर पर कठोर अग्निकण। धधकैत रौद में चलैत एकटा चुप अरण्य, जकर आँखि में समेटल अथाह बरखा छल मुदा ठोर पर कठोर अग्निकण। लोक कहलक ई तो बड़ अभिमानी छैक, अपना में डूबल मात्र अपना में मगन,
ने ककरो नहीं

चाहिए करा ने ककरो सहारा। ओ हंसै छल जेना युद्ध भूमि में थाकल सैनिक। छद्म हंसी सँ अपन पीड़ा कटैत छल स्त्री। छद्म हंसी सँ अपन पीड़ा कटैत छल स्त्री। कखनो काल बाह्य परिवेश बिसरि ओ स्त्री याद करैत अछि अपन प्रेम, कोमलता, सरसता, अपन मुस्की, स्वप्न, हंसी आ सहजता। फिर झलकर लगैत छैक ओकर मुखमंडल पर सौम्यता। झरऽ लगैत छैक ममताक निर्झर, चमकऽ लगैत छैक ममता। मुदा बस अगिला क्षण फेर वह पाथरक कठोरता। स्त्री कोना एतेक कठोर? बड्ड जोर सँ बंद कयने अपन आँखि, मोनक केबाड़ आ जोर सँ मुन्ने अपन ठोर। नहि, दुर्बलताक स्वाद फेर नहि, अपना आत्माक संग संवाद फेर नहि। स्त्री बुझि चुकल अछि जीवनक सत्य। समाजक धर्म के बीच कतेको बेर मारल गेल छल ओकर आत्मा, आब नहि। एक कबछुआक जंगल में आत्माक रक्षा हमर मात्र हमरे दायित्व अछि। बुझि गेल अछि स्त्री। तैं ओ नहि हटायत ई आवरण। पाथर मात्र पाथर बन जो रक्षित होइत अछि ओकर आत्मा, अस्मिता आ स्वाभिमान। मात्र पाथर बनिकऽ जो रक्षित होइत अछि ओकर आत्मा, अस्मिता आ स्वाभिमान। तऽ स्त्री कहैत अछि हम पाथर रहब, मात्र पाथर रहब। एहि पाथर संसारमे हमहूँ पाथर रहब, हमर तेसर कविताक स्वर सेहो विरोधाभास पर अछि, मुदा एहिमे कनेक हास्यक जोग सेहो देलियै यऽ। तऽ सुनल जाय, बाहर सँ साधु भीतर सँ शैतान, मुख पर गीता आ मन में दुकान। भोर में योगाक सेल्फी खिंचैत, हर राति में रसगुल्ला 10-10 घिंचैत। बाबूजी कहैत छथि बचत करू बेटा, आ अपने किनलनि हँ 5म मोबाइल मेटा। माय कहैत छथि क्रोध केनाई खराब होइ छै, आ ओतै काजवाली पर हुनकर झप झप बिजली झरै छै। बड़का भैया अपना के त्यागी कहबैत छथि, आ जमीनक नाप नाप में इंच इंच बढ़बैत छथि। बहिनो कहैत छथि हम तो सहज छी, सरल छी, मुदा सब संगे स्टेटस में प्रतिदिन हुनकर युद्ध चलै छै। दोस्त सब कहैत छथि तोहर सुख हमर, आ पाछा अनका सँ पूछैत छथिन आहो कतेक छै ओकर दरमाहा, केहन छै ओकर घर। आ पड़ोसीक प्रेमक तऽ जानि पूछू, पड़ोसीक प्रेमक तऽ गजब तमाशा। आ चिन्नी मांगैत, मिठाई मांगैत आ घुराबैत निराशा। आ देहक विरोधाभास के की कहू चर्चा, देह चाहे गरम जिलेबी, आ डॉक्टर कहैत खाऊ मेथी। मन कहैया ध्यान लगाओ, नीक स्वास्थ्य चाही तो ध्यान लगाओ। मन कहैया ध्यान लगाओ, मोबाइल कहैत अछि रील देखाओ। समाजक नीति बड़ निराला, गरीब हंसल तो कहल मत वाला। धनिक कानल तो संवेदना जागल, धनिक जो कानल तो सबक संवेदना जागल। आ फोटो सब संग में सब सहानुभूति भागल, फोटो खिंचेलक तकरा बाद सब सहानुभूति भागल। समाजक नीति बड़ा निराला, गरीब हंसल तो कहल मत वाला। धनिक कानल सबक संवेदना जागल, आ फोटो खिंचा कर सब सहानुभूति भागल। धनिक कानल तो सबक संवेदना जागल, आ फोटो खिंचा कर सब सहानुभूति भागल। आ धर्मक चर्चा में सब छथि भारी,
आ भीतर खुलल छन

0: लोभक पिटारी। धर्मक चर्चा में सब छथि भारी आ भीतर खुलल छनि लोभक पिटारी। मंदिर में जाकर सब शीश नवाबे, मंदिर में जाकर सब शीश नवाबे आ घर पहुँच जौन बनिहार पर गरजाबे। स्वामी कहैत छथि स्त्रीक सम्मान जरूरी, मुदा रिमोट लेल युद्ध में कोनो कसर नहीं छोड़ी। पत्नी कहैत छथि हम छी निस्वार्थी आ जौन साड़ीक सेल लागल तब बनि जाइ छथि स्वार्थी। बुढ़ापा आयल ज्ञान उफनायल, मोह सब छोड़ू उपदेश सुनायल। बुढ़ापा आयल तो ज्ञान उफनायल, मोह सब छोड़ू उपदेश सुनायल। किंतु डांटक डिब्बा जखन हेरायल तो पूरा घर कुरुक्षेत्र बनी पायल। दांतक डिब्बा जखन हेरायल तो पूरा घर कुरुक्षेत्र बनायल। ई जीवन विरोधक मेला, हंसी में नुकायल गंभीर खेला। ई जीवन विरोधक मेला, हंसी में नुकायल गंभीर खेला। मनुख सब छथि स्वयं सँ हारल, मनुख सब छथि स्वयं सँ हारल। मुख पर खिलल कमल आ भीतर हारल झारल, मुख पर खिलल कमल मुदा भीतर हारल झारल। तैयो तैयो ई दुनिया सुंदर लागे, तैयो ई दुनिया सुंदर लागे। यह विरोध सब रस उपजाबे। कनितो मनुख हसैत रहैत छै, कनितो मनुख हसैत रहै छै। एहने विरोधाभास के जीवन कहै छै, एहने विरोधाभास के जीवन कहै छै।
1: हाँ ठीक है श्रोता, यह विरोधाभास तो जीवन ठीक वो एक पद छै। ये जीवन क्या है, निर्जर है, सुख दुखी इसका पानी है। तस जीवन सै छै, एत विरोधाभास छै तहने ठोर पर मुस्की छै। धन्यवाद दियन प्रभा झा के एतक बढ़िया काव्य के लिए। श्रोता देखो काल 22 मई ठीक सब वर्ग 22 मई का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाओल जात है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ई दिवस हमरा लोकन के मोन पारित है जे गाछ वृक्ष जीव जंतु आ पारिस्थितिकी तंत्र हमरा लोकनिक अस्तित्व आ मानव कल्याणक लेल कतेक जरूरी है। एहि दिवसक उद्देश्य जैविक विविधता के महत्व आ पर्यावरण संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता पसारब थिक। वर्ष 2026 के लेल एहि दिवसक थीम राखल गेल अछि वैश्विक प्रभावक लेल स्थानीय स्तर पर काज करब। एहि विषय पर जागरूकता के लेल कतेको रास कार्यक्रमक आयोजन कयल जाइत अछि, जेना चित्रकारी प्रतियोगिता, प्रकृति भ्रमण आ कतेको कार्यशाला, संगे कतेको समूह पौधारोपण कार्यक्रम सेहो आयोजित करैत अछि। तऽ जैव विविधता के हमरा जीवन में जे महत्व अछि तै के परिलक्षित काल मनाओल जा रहल अछि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। श्रोता कार्यक्रम में आगा बढ़ी, आओ सुनी हमरा लोकनि पुनि अशोक कुमार झा सँ ई अगिला गीत।

अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम भारती, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको इस सभा में आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। छह बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। छह बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा, आतंकवाद निरोध दिवस, सुनेंगे वार्ता, दांतों एवं मशरूम में पायरिया। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दयाशंकर। साथ ही आनंद ले सकेंगे पारंपरिक लोकगीतों का टुकु पाठक के स्वर में। श्रोताओं, 7 बजे का वक्त होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती गृहस्थी का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, श्री अन्न की खेती, सुनेंगे वार्ता, बाग लगाने की तैयारी। वार्ताकार होंगे शशांक शेखर सोलंकी।

सुनेंगे लोकगीत, कलाकार होंगे टुकु पाठक। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीत, कलाकार होंगे सौम्य देव चक्रवर्ती। आठ बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

8:15 पर आप सुनेंगे बातों बातों में। नौ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कंट्री वाइड। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित करेंगे। 9:45 पर आप सुनेंगे इनसाइट्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 11:10 पर आप सुनेंगे क्षमा कीजिएगा 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के। 10:00 ये थी इस सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं भोजपुरी बुलेटिन।

प्रणाम। ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ सभे दिव्या से भोजपुरी में समाचार सुनी। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही के तुरंत प्रभाव से हटा दिहल गेल बा। लोक भवन ए संबंध में अधिसूचना जारी कैले बा। अधिसूचना के मुताबिक विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी के नया कुलपति के पक्का बहाली होके तक कुलपति के जिम्मा सौंपल गेल बा। एने लोक भवन 6 गो विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, उपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति के बहाली खातिर 20 जून तक आवेदन मांगले बा। विधान परिषद के भोजपुर बक्सर प्राधिकार सीट खातिर हाल में भय उपचुनाव में राजद के नवनिर्वाचित पार्षद सोनू कुमार राय आज सदन के सदस्यता ग्रहण कैले। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह उनकरा के सदस्यता ग्रहण करवैले। इस मौका पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत और कई गो गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज श्रावणी मेला और बाढ़ से पहले के तैयारी के समीक्षा खातिर एगो उच्च स्तरीय बैठक कैले। मुख्यमंत्री सचिवालय में भइल ई बैठक में अधिकारी लोगन के बाढ़ राहत और बचाव कार्य के तैयारी तेजी से पूरा करे के निर्देश दिहल गेल बा। मुख्यमंत्री श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालु लोगन के सुविधा और सुरक्षा खातिर भी तगड़ा इंतजाम करे के निर्देश दिहले। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजय प्रसाद यादव समेत कई गो विभाग के

0: लोग भी मौजूद रहे। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर उनकरा श्रद्धापूर्वक याद कर रहल बा। यही दिन साल 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री आतंकवादी के साजिश के शिकार भेल रहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के श्रद्धांजलि देले। पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में भयल श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता आ कार्यकर्ता लोग पूर्व प्रधानमंत्री के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दिहल लोग। आज के दिन के पूरा देश भर में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनावल जा रहल बा। ये दिवस के मनावे के मकसद युवा के आतंकवाद अहिंसा के संस्कृति से दूर रखे के बा। ये अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह के साथे साथे ढेर कार्यक्रम आयोजित कल गए। हमार औरंगाबाद संवाददाता बतावले कि समाहरणालय में भयल कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा के साथे साथे अन्य अधिकारी और कर्मी लोग आतंकवाद और हिंसा के डट कर विरोध करके शपथ लिहल लोग। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 24 मई के होखे वाला भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा खातिर 3 नया परीक्षा केंद्र शुरू कैले बा। आयोग के अनुसार केंद्र पर भीड़ कम करे खातिर भुवनेश्वर कानपुर और मेरठ में परीक्षा केंद्र स्थापित कैल गेल बा। एकरा साथ ही अब देश भर में केंद्र के कुल संख्या 83 हो गेल बा। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार कहलन ई सुनिश्चित कैल जा रहल बा कि दिव्यांग उम्मीदवार के उनकर मनपसंद परीक्षा केंद्र आवंटित कैल जाओ। ए साल सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 खातिर कुल 8,19,000 से बेसी आवेदन भइल बा। काल वैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के कई को भाग में आंधी बारिश की परिस्थिति बनल बा। मौसम विभाग अगला 2 से 3 घंटा के भीतर खगड़िया मधेपुरा सहरसा सुपौल सीतामढ़ी मधुबनी अररिया किशनगंज कटिहार सहित राज्य के उत्तर भाग में अधिकांश जगह पर आंधी पानी और ठनका गिरे के अलर्ट जारी कैले बा। लोग के सलाह दिहल गइल बा कि ए समय बिना कोनो काम के घर से बाहर ना निकली। उन्हें दक्षिण बिहार के ज्यादातर भाग में भीषण गर्मी के प्रकोप जारी बा। पटना गया नालंदा भभुआ रोहतास औरंगाबाद अरवल सहित राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में अधिकतर जगह पर लू की स्थिति बनल बा। पटना आसपास के क्षेत्र में तेज गर्मी और उमस के कारण आम लोगन के जनजीवन प्रभावित भइल बा। सुपौल जिला के बीरपुर में सालसपुर चौकी के लगे एसएसबी के जवान एगो नेपाली महिला के पास से हिरण के सिंह बरामद कैले बा। आरोपी महिला के हिरासत में लेके पूछताछ कैल जा रहल बा। अररिया जिले के पलासी प्रखंड के 5 पंचायत में आज जनजातीय गरमा उत्सव के तहत शिविर लगावल गई। एक कैंप में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगन के स्वास्थ्य के जांच कैल गई और विभिन्न सरकारी कार्यक्रम के जानकारी दिहल गई। नवादा जिला के गोविंदपुर में मौजूद ककलोत जलप्रपात में घूमे खातिर और गाड़ी खड़ा करे खातिर पार्किंग फीस 10 गुना तक बढ़ा दिहल गई बा। एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजे समाप्त भइल।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी बुलेटिन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं छिछोरे फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और इसे संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है गुड न्यूज फिल्म से बिपरा की आवाज में। गीत लिखा है रश्मि विरागनी और इसे संगीतबद्ध किया था निष्पाक्षी ने।

शादाब, आप सुन रहे थे गुड न्यूज़ फिल्म का ये गीत। बिप्रा की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हम सुनते हैं संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढ़ीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सर्वकारेण कस्यापि सौंदर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौंदर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषेधितम्। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयेन इबोला संक्रमणेन प्रभावित देशेभ्यः आगच्छद्भ्यः अथवा पारगमनं कुर्वद्भ्यः यात्रिणां कृते कश्चन विशेष स्वास्थ्य परामर्शः प्रसारितः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्रिणः सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वयुते मंत्रिमंडले द्वात्रिंशत् जनाः सम्मिलिताः, येषु चतस्रः महिला मंत्रिणः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य सायं अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स तथा चेन्नई सुपर किंग्स दलयोः मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढ़ीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारतस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा च तस्य इटली समकक्षीया जॉर्जिया मेलोनी इत्येतौ भारत मध्य

0: नमस्कार निमिषा बहन।
1: नमस्कार प्रिया बहन।
0: तो बताइए क्या हाल चाल है। वैसे ये गर्मी में ना, उफ, ये गर्मी, और आज की जो गर्मी है ना, मुझे तो लग रहा था ना कि मैं पानी पीते जाऊं, ग्लूकोज भी पी रही
1: हाँ
0: थी।
1: हाँ ये तो सबसे नीमन काम करला का है कि गर्मी से बचे के सबसे बढ़िया सबसे नीमन उपाय है कि हमने के शरीर में पानी की कमी ना होवे के चाहिए। और
0: हाँ
1: हमने के सबसे तो साधारण चीज है जो हमने सब सब कोई अपना सके है, पानी के पीते रहे के समय समय पे। अगर प्यासो ना लगले है तभी हो हमने के अपन परिवार के भी देवे के चाहिए, अपन लइकन बुतरू के भी, और
0: हाँ
1: खुद भी ध्यान देवे के चाहिए कि घर में भी पानी पी और बाहर निकली तो भर पेट बढ़िया से खा के
0: और
1: और पानी पी के ही निकली।
0: बिल्कुल। और अभी का जो समय है, खासतौर पर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चे खेलने के धुन में पसीना
1: हाँ
0: कितना
1: हाँ
0: आ रहा है, पानी के लिए भी बोलना पड़ता है, पानी पी लो पानी पी
1: ठीक
0: लो। तो ऐसे में बच्चे
1: है।
0: कभी कभी इरिटेट होते हैं, बोलते क्या तुम बार बार पानी पीने के लिए कह रही हो। तो ये हर माँ के साथ हो रहा होगा।
1: एकदम

0: घर के बड़ों के साथ, तो ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल ज्यादा रखना जरूरी, क्योंकि
1: हाँ
0: कोई भी मौसम है ना, उसमें ख्याल रखने की जहां तक बात होती है, खुद के साथ परिवार के जो बच्चे और बूढ़े हैं ना, उनका ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। घर से जब बाहर निकल रहे हैं, छाता, टोपी, गमछा, ये सब सर ढकने के लिए जरूर ले लेना चाहिए। निकलने से पहले एक गिलास पानी या कुछ भी जो पेट को ठंडा रखे, नारियल पानी हो गया या फिर छाछ हो गई, दही की छाछ, कितना अच्छा लगता है।
1: एकदम।
0: और जिन्हें नहीं पसंद नमकीन, वो थोड़ा मीठा पी ले।
1: हाँ तो सर, और घर में सत्तू है तो सत्तू एक घोर के जीरा जाल के पीला, दिखाई शरीर के कितना ठंडा
0: और
1: करे।
0: प्याज जरूर, क्योंकि कहते हैं ना लू से बचना है तो प्याज खा लो।
1: हाँ, प्याज का है, चाहे हमने के जो हमने के आम बनावे ही आम के पन्ना, ओका भी
0: हाँ
1: पी सके ही। तो हमने के गर्मी के बचे, अब हम गर्मी के मौसम में भी बहुत तरह के फल और बहुत तरह के चीज मिले जेका से हमने से
0: आम
1: बच
0: आम
1: सके ही।
0: ओहो
1: एकदम
0: आम
1: कुदरत
0: आम
1: ही देखी हमने के बनाए थे कितना सारा सामान की हमने सबके गर्मी से बचा रह
0: और
1: सके।
0: इसके साथ ही साथ बचने बचने की जो बात है, हर बात में हम बचने की बात करते हैं, वही स्वाद की बात करते हैं। आम की अगर बात करें तो बाजार में जाने पर लगता है उफ कौन सा आम ले लूं, ऐसा लगता है सब ले लूं। और इसके साथ ही साथ जो बचाव की बात है, तो राष्ट्रीय हित में अगर हम बात करें, ये तो हमने खान पान की बात की, धूप से बचने की बात की, तो जब ये इससे बचाव की बात हम करते हैं तो साथ ही साथ दिमाग में एक और बात आती है,
1: हाँ,
0: इन
1: वो
0: सबसे
1: कहा
0: तो
1: भाई।
0: हम इन सबसे तो हम खुद से देखभाल करके बच सकते हैं, लेकिन अभी जो काफी समय से आतंकवाद का जो मसला है,
1: हाँ
0: वो कभी कहीं अटैक कभी कुछ ये सुनने को मिलता है, तो ये सुनकर के बड़ा अजीब सा लगता है कि किस तरीके की शिक्षा ऐसे आतंकवादी नाम जो हम बोलते हैं उन बच्चों को
1: हाँ
0: दी जाती होगी या उन लोगों को दी जाती होगी जो इतने कट्टर हो जाते हैं।
1: एकदम बहन, चाहे हमने के देश के रहे चाहे दूसरे देश के, लेकिन जो हुआ थी अगर उनको में आतंकवादी आतंक के कोई चीज भी द्रोपल जाए तो दूसरा के जान लेवे ला भी आतुर हो जाती।
0: क्योंकि कोई भी
1: लेकिन
0: इंसान, कोई भी
1: हाँ
0: बच्चा
1: इंसान इंसान,
0: खराब
1: हाँ
0: नहीं
1: एकदम
0: होता, उसकी शिक्षा कैसी
1: शिक्षा
0: दी जाती है,
1: खराब
0: वो किस परिवेश में है, ये बहुत निर्भर करता है। तो जो भी आतंकवादी कहलाते हैं, तो ऐसे में हम बहुत बार डर से जाते हैं। और बात करें आतंकवाद की, जो हम बात कर रहे हैं, तो आज पूरा राष्ट्र हमारा भारत मना रहा है राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आतंकवादी से जो भी नुकसान होता है हमारे सैन्य बल को या फिर आम जनता को
1: आम
0: या फिर
1: जनता के
0: कहीं कहीं बम
1: जीवन।
0: विस्फोट, जो बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं, और सबसे पहले याद आती है वो बात जब शायद हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन इसकी जो शुरुआत है राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस की जो शुरुआत हुई, ये हर वर्ष 21 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन
1: हाँ
0: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1951 में हत्या की गई थी, वो भी एक आतंकवादी के
1: हाँ
0: द्वारा
1: आतंकवादी
0: ही।
1: हमला ये हले। देखिए इस देश में शांति के और मानवता के हमने के दूर करे है, और ये आतंकवाद जो है आज के दिन जैसे दिवस मनावल जाए निरोध दिवस, तो ये दिन के यही ला मनावल जाए कि हमने के देश में शांति हो, मानवता रहे, देश प्रेम रहे। और इस देश के उद्देश्य ये भी है कि सभी वर्ग के लोगों के आतंकवाद और हिंसा के खतरे के बारे में और समाज में जनता में और देश में एक प्रभाव के बारे में लोगों के जागरूक कराया जाए।
0: खासतौर पे बच्चों को जागरूक करना ज़रूरी है,
1: एकदम
0: बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि अगर अपने घर में या दूसरे के घर में आप चाहते, घर की बात मतलब देशों की बात कर रहे हैं हम,
1: हाँ
0: तो देशों की इसलिए बात कर रहे हैं कि ना हमारे देश में किसी तरीके का नुकसान हो ना ही किसी और देश में,
1: एकदम
0: तो इसका बीड़ा हमारे बच्चे, हमारे युवा जिनमें ये बीज बोया जा सकता है, उन्हें हम ये बताएं कि कि हमें किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखना है, शांति और भाईचारे की भावना रखनी है।
1: देखिए शांति और भाईचारा अगर अपनावल जाए तो हर देश के विकास निश्चित हुए हैं। काहे कि शांति और भाईचारे से जो हमने कर सके ही वो कभी आतंक के रास्ता पे चल के कभी ना कर सके ही।
0: हाँ, लड़ाई झगड़ा
1: हाँ
0: इसका
1: एकदम
0: इसका सोल्यूशन है ही नहीं।
1: जैसे ना कि एक आतंकवाद के उद्देश्य का है कि कोई भी खास राजनीतिक या धार्मिक या सामाजिक या वैचारिक उद्देश्य लाए एकरा के कर जाए। लेकिन अगर हमने सब ये आतंकवाद के छोड़ के अगर हमने सब शांति का रास्ता अपनावे तो वो जो पैसा हम आतंकवाद पे दे रही है या कोई खर्च कर रही है अपन

0: लोगन के जीवन के बर्बाद करे। अगर वही जीवन के हम अगर समाज सुधार में, देश के विकास में लगाई, तो हमने के देश और विदेश तरक्की करते।
1: बिल्कुल बिल्कुल यही सही है। और मैं तो यही कहूंगी, परिवेश ऐसा दें हम अपने बच्चों को और अपने घर के युवाओं को और अपने समाज में, क्योंकि ये जो कहते हैं ना, दायित्व सिर्फ सरकार या गैर सरकारी संस्थान की नहीं है, ये हर घर का दायित्व है, हर परिवार का दायित्व है कि अच्छी सोच पैदा करें। और ये तो बात हमने की राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस की। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास, जिसे
0: हाँ
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज मनाया जा रहा है, जिसे हम कहें ना, सुख हो चाहे दुख हो, हर एक पल हर एक मौसम में बड़े प्यार से पी और पिलाई जाती है।
0: तो देखा
1: समझ
0: शाम
1: में
0: के
1: बात
0: साथ,
1: आई?
0: शाम के घड़ी है और शाम के घड़ी में क्या पियल जाए। देखिए पानी के बाद तो एगो सबसे ज्यादा पियल जाए वो तो हवे चाय, और शाम के समय में सभी को लोगों के हाथ में हम के चौपाल के कार्यक्रम सुन रहे थी ना,
1: हाँ
0: अच्छा है कि कप।

0: का दायित्व है, हर परिवार का दायित्व है कि अच्छी सोच पैदा करें। और ये तो बात हमने की राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस की, अब बात करते हैं एक बहुत ही खास जिसे
1: हाँ
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज मनाया जा रहा है, जिसे हम कहें ना सुख हो चाहे दुख हो, हर एक पल हर एक मौसम में बड़े प्यार से पी और पिलाई जाती है।
1: तो देखा
0: समझ
1: शाम
0: में
1: के
0: बात
1: साथ
0: आई?
1: शाम के घड़ी है और शाम के घड़ी में क्या पियल जाए। देखिए पानी के बाद तो सबसे ज्यादा पियल जाए वो तो हवे चाय। और शाम के समय में सभी को लोगों के हाथ में हमने के चौपाल के कार्यक्रम सुन रहे थी ना,
0: हाँ,
1: चाय के कप हाथ में
0: चुस्की
1: होते
0: ले रहे
1: हैं।
0: होंगे। अच्छा, कोई
1: हाँ
0: भी मौसम हो, बहुत गर्मी भी है फिर भी चाय किसी की नहीं छूटती, जो पीते हैं। मैं भी बहुत पसंद करती हूँ,
1: एकदम
0: तो गर्मी के मौसम में वैसे इसका कम इस्तेमाल करना चाहिए, कम ही पीना चाहिए, लेकिन चाय छूट जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
1: दिखाच।
0: अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की जो बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2019 में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया था, तब से हम ये मना रहे हैं।
1: आप देखा चाय खाली चाय ना होवे है, ई थकान के भी मिटावे अगर नियमित रूप से अगर पियल जाए और सही मात्रा में पियल जाए तो एकरा से हृदय रोग के खतरा कम हो जाए। ग्रीन टी और ब्लैक टी जो कहल जाए उस शरीर से हानिकारक रेडिकल्स के भी खत्म करे है। और हमनी के संस्कृति में मेहमानबाजी अगर गेस्ट कोई आए कोई आदमी के अतिथि आए तो उनका के सबसे पहले अगर स्वागत करे लाए तो हमने एक कप चाय के साथ करे, उनका के पूछे है कि चाय लेथिन कि ना लेथिन, तो पानी के साथ हमने सब चाय
0: अच्छा,
1: जरूर पिला दे।
0: चाय एक ऐसी चीज है, मैं बात दुख की भी करूं, मैं
1: हाँ
0: बात
1: हाँ
0: सुख की भी करूं, मैं किसी जैसे आप किसी ऑफिस में गई तो भी पहला जो ऑफर किया जाता
1: हाँ
0: है चाय। आप कहीं गई, आपसे चाय नहीं पूछा गया, तो पहली बात यही निकलती है, पूछा ही नहीं किसी ने चाय के बारे में। मतलब चाय का महत्व जो है वो कितना
1: बहुत
0: बड़ा है।
1: एकदम अगर गप सखी के संग करेला है अपन दोस्तन के साथ करेला है तो चाय के चुस्की के साथ हमने की एकजुट हो गए भी बैठ जाए चौपाल में
0: चौपाल में।
1: का।
0: और क्या किया जाए,
1: हाँ
0: खाने पीने के बाद छोड़िए, चाय
1: एकदम
0: मंगा ली जाए। अब जैसे अभी हम चाय पी करके यहाँ आ गए आपसे बातचीत करने के लिए,
1: एकदम
0: अपने श्रोताओं के साथ भी,
1: तो
0: तो
1: ईमेल मिलाप के भी बढ़ावे के वो
0: बहुत
1: जरिया
0: बहुत,
1: है
0: अगर
1: एकदम।
0: कोई लड़ाई झगड़ा है तो बैठ के चाय पी ले, अपने आप बात हो
1: एकदम
0: जाएगी।
1: लेकिन चाय पी थी लेकिन सीमित मात्रा में
0: सीमित मात्रा,
1: एकदम
0: ये
1: ये तो
0: भी
1: ध्यान
0: किसी
1: रहे के
0: चीज का
1: चाय
0: सेवन बहुत ज्यादा नहीं,
1: एकदम।
0: लेकिन फिर भी कोई कहे मुझसे कि चाय छोड़ दो तो ये तो नहीं हो सकता।
1: लेकिन चाय के वो घड़ी
0: तो
1: हो गए वो समय हो गए और हमने के और भी ऑप्शन है जैसे कि नींबू का चाय है हमने ग्रीन टी जैसे कह ली
0: हाँ,
1: तो मसाला वाला चाय में जो आदि दी के चाय जैसे अभी मौसम बदले है तो कैसे गए थोड़ा सा आदि डाल के चाय पी ली तो ये सब हमने के स्वास्थ्य के वर्धक भी हो गए हैं।
0: बिल्कुल। और
1: और हम
0: चाय पीने के बाद
1: हाँ
0: मतलब थोड़ा फिर से स्नान कर ले, स्नान करने के बाद अब समय हो चला है दिया बत्ती दिखाने का।
1: एकदम तो दी। अच्छा एक बात आप बता दी कि प्रिया
0: हाँ
1: बहन की चाय तो हमने जैसे के महत्व बारे में बताई लेकिन ई दिवस के ये भी उद्देश्य है कि एकरा से जुड़ल सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण प्रश्न के वैश्विक समुदाय में उठावल जाए और उनका प्रति ध्यान आकर्षित कर जाए, खास
0: हाँ
1: करके चाय उत्पादक और श्रमिक के अधिकार के सुरक्षा और उनका आजीविका में सुधार भी लावल जाए, ई दिवस
0: बिल्कुल
1: के उद्देश्य है।
0: बिल्कुल।
1: और
0: अब चाय तो हमने
1: हाँ
0: पी ली,
1: हाँ
0: शाम की बेला है, हमारे
1: एकदम
0: श्रोता भी हमारे इस कार्यक्रम का मजा जरूर ले रहे होंगे। लेकिन
1: चाहिए।
0: लेकिन संध्या बत्ती दिखाना होगा तो उसके लिए जरूरी है कि साथ में गीत नाद भी हो,
1: एकदम
0: और हमारे बिहार में, हमारे इस राज्य में लोकगीत की जो मिठास है वो हम
1: हाँ
0: अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। तो शुरुआत ही करते हैं टुक्कू पाठक की सुमधुर आवाज में, ये प्यारा सा देवी गीत।
1: चला सुनल जाए।

0: वाह, जय अम्बे महारानी हो, जय दुर्गे भवानी।
1: भवानी।
0: एकदम मन
1: वाह
0: प्रसन्न हो गया,
1: एकदम।
0: इतनी इतना अच्छा हमने ये देवी गीत सुना। अच्छा, हमने बात की अपने मतलब किस तरीके से खुद को स्वस्थ रखें,
1: हाँ
0: और स्वस्थ रखने के साथ ही साथ हमारे जो शरीर का बहुत सा ऐसा हिस्सा है जिसपे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए।
1: एकदम।
0: अब जिसका इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं, जैसे अभी ही कर रहे हैं, बताइए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे
1: देखिए
0: हैं, जुबान की
1: अब
0: कर रहे हैं।
1: मुस्कान के लिए अगर कि कोई मुस्कान अच्छा लगे है तो
0: हाँ,
1: ओकरा में सबसे जरूरी होवे है ओकरा के दांत कैसन है,
0: उसके
1: कितना
0: होंठ कैसे
1: मुस्कुराए, होंठ
0: हैं।
1: कैसन है। तो हमने की सही के कोई भी अंग रहे, चाहे आंख रहे, चाहे कोई भी दूसरा अंग रहे,
0: लेकिन
1: चाहे
0: लेकिन
1: दांत ही
0: लेकिन
1: रहे।
0: लेकिन लेकिन चेहरे
1: हाँ
0: की जहां तक हम बात करें, सबसे ज्यादा आकर्षण इसमें
1: हाँ
0: होता है कि किसी के चेहरे, किसी की आंखों से, और वो मुस्कान जो बच्चे को भी रहता है ना, तो जब बच्चे दांत नया नया आते लगता
1: हाँ
0: है।
1: दो दूँ हुआ दांत तो कितना
0: हाँ
1: कितना निम्न लगेगा, लेकिन दांत में अगर कोई समस्या आ जाए तो वही दांत देखा हमने के समय बहुत बड़ा चिंता के विषय हो जाए कि का करे, ना कुछ खा पावे ही, ना कोई के सामने बोल
0: हाँ
1: पावे।
0: जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनका

0: दांतों से खून आना शुरू हो जाता
1: हाँ
0: है, महकता बहुत है।
1: हाँ तो देखा है ई पायरिया के भी कारण हो सका है। और आज एकरे से बहुत निमन जानकारी हमने सबके भेटते ई वार्ता से, कहे कि आज वार्ता के विषय है दांतों में पायरिया, और वार्ता का रथिन डॉक्टर दयाशंकर। तो सुनल जाए और उनकर से लेवल जाए ई विशेष जानकारी।
2: जैसा कि हम जानते हैं, स्वस्थ, चमकदार और सुंदर दांत और मसूड़े हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं एवं अभिन्न अंग है। आकर्षक मुस्कान हमारी पर्सनालिटी को निखारती है और आत्मविश्वास से जीने की अनुभूति प्रदान करती है। आज हम दांत और मसूड़े के पायरिया रोग के क्या क्या लक्षण हैं, कारण, बचाव, उपचार के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पायरिया रोग, जिसे हम पेरोडोंटाइटिस के भी नाम से जानते हैं, पायरिया एक तरह का मुंह का इन्फेक्शन है जो मसूड़ों और दांतों के बीच वाले हिस्से पर अधिक असर करता है। अगर इसे हम समय पर नहीं रोकते हैं तो यह इन्फेक्शन धीरे धीरे हड्डियों तक पहुंच जाता है, जो कि मसूड़े की बीमारी का एक गंभीर रूप बनकर दांत गिरने का अभिन्न कारण बन जाता है। पायरिया कैसे हमारे मुंह में संक्रमण करता है? स्वस्थ लोगों के मुंह में आम तौर पर सैकड़ों बैक्टीरिया होते हैं। उनमें ज़्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जब आप अपने दांतों को ठीक से साफ सफाई नहीं करते हैं तो यही बैक्टीरिया संख्या में अधिक बढ़ जाते हैं और हमारे दांतों पर जमा होने लगते हैं, और जिसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया समय के साथ प्लाक के भीतर बहुत सारे मिनरल्स जमा करने लगते हैं। इस जमे हुए मिनरल्स को टार्टर का रूप माना जाता है। यह दांत की जड़ों से मसूड़ों का जुड़ाव धीरे धीरे नष्ट करने लगता है, जिससे मसूड़े और दांत के जड़ों के बीच एक गैप बन जाता है। टार्टर यदि लंबी अवधि तक जमाव के कारण बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, जिससे सूजन, मसूड़ों के उत्तकों का विनाश तथा दांतों को सहारा देने वाली हड्डियों को नुकसान पहुंचता है, जो मसूड़े की बीमारी का एक गंभीर रूप भी है। पायरिया के मुख्य कारण है खराब मौखिक स्वच्छता और दांतों पर लगा प्लाक और टार्टर का जमाव। पायरिया का कुछ जोखिम कारक भी हो सकता है, जिसमें सबसे ऊपर आता है धूम्रपान, जो कि पायरिया के सबसे गंभीर कारकों में से एक है। जैसे तंबाकू का सेवन, पान और पान मसाला का सेवन, मधुमेह, मोटापा और महिलाओं में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन, HIV और ल्यूकीमिया जैसे गंभीर बीमारियों की स्थिति आपकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को जो प्रभावित करती है, ऐसी बीमारियाँ, खराब पोषण और विटामिन सी की भी कमी एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक हो सकता है। पायरिया के लक्षण हैं मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में लालिमा और दर्द, मुंह से हरदम बदबू आना, ब्रश करने या खाना खाते समय मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से गाढ़ा सफ़ेद या पीला मवाद जैसा कुछ निकलना, दांतों का अपनी जगह पर ढीला होना या गिरना, चबाने में दांतों में दर्द होना, मसूड़े संवेदनशील होना, ठंडे, गर्म व मसालेदार भोजन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना, मुंह में हमेशा खराब स्वाद बना रहना। स्वास्थ्य पर पायरिया के बहुत सारे बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे दांतों और हड्डियों का नुकसान। पायरिया और मसूड़ों के बीच की हड्डी को कमजोर करता है, जिससे दांत ढीले पड़ने लगते हैं और कुछ समय के बाद गिर सकते हैं। इसमें हृदय रोग का खतरा भी बढ़ता है। अनुपचारित पायरिया से हृदय रोगों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि संक्रमण रक्त में प्रवेश कर ये आपके हृदय को नुकसान पहुंचाता है। फेफड़ों का संक्रमण, पायरिया के जीवाणु फेफड़ों में पहुंचकर फेफड़ों का संक्रमण भी फैला सकते हैं। गर्भ अवस्था से जुड़ी कुछ जटिलताएं भी बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं को पायरिया से समय से पहले प्रसव का होना और कम वजन वाले बच्चों के जन्म का खतरा बढ़ जाता है। पाचन तंत्र की समस्या, दांतों के कमजोर होने से हम भोजन को ठीक से चबा नहीं पाते हैं, जिसे पाचन में बहुत कठिनाइयां आती है। मुंह से बदबू या हैलिटोसिस एक सामाजिक शर्मिंदगी का प्रतीक है, इससे अलगाव और चिंता बढ़ जाता है। तनाव और अवसाद जैसे मनोवैज्ञानिक संकट पैदा हो जाती है। पायरिया से बचाव के उपाय हैं, सही ब्रशिंग की आदत डालें, दिन में दो

बार सही तकनीक से ब्रश करें, सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश का उपयोग करें, फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, डेंटल फ्लॉस और माउथवाश का यूज करें, फ्लॉस से दांतों के बीच की सफाई करें और एंटीसेप्टिक माउथवाश का उपयोग करें, तंबाकू और धूम्रपान से दूरी बनाएं, हेल्दी डाइट लें जिसमें विटामिन सी और कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें, जंक फूड और ज़्यादा मीठा खाने से बचें, हर 6 महीने में अपने दंत चिकित्सक या डेंटिस्ट से मुंह का प्रशिक्षण करवाएं, जो कि ज़रूरत के हिसाब से प्रोफेशनल क्लीनिंग से टाटर को हटा सकें। पारिया को खत्म करने का कुछ घरेलू उपाय। घरेलू उपाय है, सरसों का तेल, नमक और हल्दी का मिश्रण बना के 1 चम्मच सरसों का तेल लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी या सेंधा नमक मिलाएं। इस मिश्रण से मसूड़ों को हल्की हाथों से मालिश करें। 5 मिनट बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करें और दिन में 2 बार करने से इससे मसूड़े की बीमारी में लाभ मिलता है। हिबिस्कस के फूल का प्रयोग करें। लौंग का तेल का उपयोग कर सकते हैं। 1 से 2 बूंद लौंग का तेल रुई पर लगा के मसूड़े पर मालिश की जा सकती है। यह मुंह के बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है। हल्दी और एलोवेरा जैसे एंटीबैक्टीरियल गुणों वाली कुछ घरेलू उपचार करके मसूड़ों की बीमारी में ठीक किया जा सकता है। घरेलू उपाय केवल हल्की समस्याओं के लिए है। गंभीरता की स्थिति में अपने डॉक्टर से मिलना जरूरी से जरूरी कोशिश करें। पायरिया होने पर खान पान में कुछ सावधानियां बरतनी होती है। पायरिया में सही खान पान चुनकर भी इस बीमारी में रोगी को मदद मिल सकती है। क्या खाना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें पालक, मेथी, धनिया का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। विटामिन सी युक्त फल जैसे आंवला, संतरा, नींबू, इन सब का सेवन बहुत हद तक लाभकारी होता है। दूध, दही, पनीर जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है उसका उपयोग करें। त्रिफला, गिलोय जैसे हर्बल का भी सेवन कर सकते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए? मीठी और चिपचिपे खाद्य पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, अधिक चीनी वाले जूस, अत्यधिक मसालेदार और तले भुने व्यंजन, धूम्रपान, तंबाकू और पान मसाला का भी सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। पायरिया का डेंटल इलाज क्या है? अगर पायरिया ज़्यादा बढ़ चुका है तो अपने दंत चिकित्सक से मिलकर कुछ दंत चिकित्सा प्रक्रिया करवाएं। सर्वप्रथम इसमें होता है स्केलिंग और रूट प्लानिंग। इसमें मसूड़े के नीचे जमे प्लाक और टाटर को हटा दिया जाता है जिससे दांतों की सतह चिकनी हो जाती है ताकि बैक्टीरिया वहाँ पर अपना घर नहीं बना सके और बैक्टीरिया फिर से दांतों से जुड़ नहीं सके। दूसरा चीज है एंटीबायोटिक्स का प्रयोग। एंटीबायोटिक संक्रमण से लड़ने के लिए दंत चिकित्सक कुछ एंटीबायोटिक गोलियों का सेवन करने के लिए आपको दे सकते हैं या संक्रमित मसूड़े के नीचे एंटीबायोटिक रख के जो समय के साथ संक्रमण को ठीक कर देता है ऐसी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। कुछ सर्जिकल प्रक्रिया भी हैं। या अगर मसूड़े के पॉकेट बहुत गहरे हो जाते हैं तो उन्हें कम करने के लिए हड्डियों की खामियां को ठीक करने के लिए सर्जरी की जाती है जिसे हम लोग फ्लैप सर्जरी कहते हैं, जिसमें मसूड़ों में छोटा सा चीरा लगाकर उनके ऊपर उठाया जाता है ताकि दांत की जड़ों तक गहराई से सफाई की जा सके, रोगग्रस्त ऊतक को हटाया दिया जाए और प्लाक व टाटर कैलकुलस को पूरी तरह से हटाया जाता है। फिर मसूड़े के फ्लैप को वापस सील कर दिया जाता है जिससे दांतों के पॉकेट छोटे हो जाते हैं और स्वस्थ मसूड़ों का पुनर्जन्म होता है। इसके बाद आता है लेजर ट्रीटमेंट। पायरिया के लिए लेजर उपचार एक अत्याधुनिक तकनीक है। इसमें लेजर उपकरण का प्रयोग करके दांतों की सतह से और मसूड़े के नीचे से प्लाक और बैक्टीरिया को हटाए जाते हैं। यह प्रक्रिया पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक आरामदायक होता है क्योंकि इसमें पारंपरिक सर्जिकल तरीकों की तुलना में कम दर्द और कम सूजन और कम जख्म होता है। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो हमारी सभी श्रोताओं को पायरिया जैसी नाक और मसूड़े की बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है वो है, प्रतिदिन 2 बार ब्रश करने की आदत डालें, विशेष रूप से रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें और साथ के साथ जीभ साफ करें और मसूड़ों के नियमित रूप से मालिश करने की आदत डालें। 2 भोजन के अंतराल रखें।
चाय, शीतल पेय और स्नैक्स बीच में खाने से बचें और बचने की कोशिश करिए। यदि ऐसा हो जाए तो कृपया अपने

0: मुंह को अच्छी तरह साफ कर ले कुल्ला करके। अपने आहार में चीनी की मात्रा कम करें या उससे बचें। अधिक से अधिक मौसमी रसदार फलों का सेवन करें, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद आदि की मात्रा बढ़ाएं। पान खैनी, पान मसाला, तंबाकू, धूम्रपान आदि का सेवन जल्द से जल्द बंद करें। कृपया सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से 6 महीने के अंतराल पर अपने दंत चिकित्सक के पास जाएं और अपना मौखिक दांत जांच जरूर से जरूर कराएं। मैं चाहता हूं कि हमारी सभी श्रोतागण उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए अनुसरण करें एवं स्वयं को स्वस्थ, प्रसन्न, मुस्कान के साथ खुशियां बिखेरते रहें।
1: तो बहुत ही उपयोगी वार्ता सुनी हमने।
2: हाँ
1: दांतों में पैरिया जिन्हें हो तो वो किस किस तरीके का कार्य करे जिससे कि उनकी दांत फिर से
2: स्वस्थ हो जाए,
1: चमकने लगे
2: सुंदर
1: और
2: रहे,
1: स्वस्थ,
2: अच्छा।
1: हाँ, और झरे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए डॉक्टर दया शंकर को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम गर्मी के बारे में बात कर रहे थे कि गर्मी ऐसी है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी। जब भी खाना खाएं एक तो कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है बच्चे भी नहीं करते हैं कुल्ला और कहते हैं कि नहीं नहीं चलो चलो ठीक है, तो लेकिन ज़बरदस्ती ये बात करवानी चाहिए ताकि दांतों में कुछ फंसा
2: कुछ
1: ना
2: फंसा
1: रहे।
2: रहे खाना का कोई भी अंश रह जाए तो
1: हाँ,
2: निकल जाए।
1: निकल
2: और
1: जाए।
2: देखिए सुबह में तो ब्रश करे के ही चाहिए, संगे संगे रात के सूते घड़ी अगर कर जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद हो गए।
1: हाँ
2: काहे कि सूते घड़ी हमने के लंबा समय होवे है जो हकरे में हमने ना पानी पिए ना खाए, तो अगर ओकरा साफ करके अगर सोते ही तो हमने के कीड़ा खाए के मौका ना रहे कि कीड़ा लोग अपना जो अंश रहे ओकरा खाए लगे तो दांत सड़ा दे। तो अगर हम दांत अगर अच्छे से साफ करके सोते ही तो हमने के लंबा समय तक दांत साफ रहे
1: तो
2: और
1: ये
2: सुबह।
1: नियम नियम
2: हाँ
1: बना ले हर किसी
2: एकदम,
1: के लिए, बच्चों को
2: और पूछू
1: सिखाएं
2: ना
1: खुद
2: तो
1: भी
2: कम से
1: करें।
2: कम अगर आप अपने पेस्ट ना ले रहे थे ना कोई अथी मंजन ना लेते थे तो आप ब्रशो खाली ब्रश भिंगा के धो दा
1: हाँ
2: और एक बार घुमा दा दांत में अकुल्ला कर ला, देखा कितना फ्रेश लगे है।
1: बहुत बहुत ज्यादा
2: हाँ
1: उससे तरोताजा, आप सुबह भी उठेंगे तो या जो भी करेंगे तो सुबह वो जो एक महक होती ना गंदी
2: हाँ
1: वाली
2: वो ना
1: वो
2: हो
1: नहीं
2: जाए।
1: आएगी।
2: आज देखिए दांत में समय समय ला हमने के कोई भी चीज खाए तो कुल्ला जरूर करके चाहिए,
1: कुल्ला
2: क्या कि
1: जरूर,
2: कुल्ला बहुत खास होवे है जेकरा से हमने सब दांत साफ रख सके। और हमने के पानी पीते रहे के चाहिए जेकरा
1: ये
2: से।
1: तो
2: हाँ
1: जरूरी
2: हाँ
1: है, पानी पीना बहुत ही जरूरी है। और निमिषा बहन, हमने तो बातें बहुत की और बातों के साथ ही साथ हमने बहुत अच्छी जानकारी ली भी और अपने श्रोताओं को दी भी, लेकिन अभी समय हो चला है आंगन कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे खेती गृहस्थी की।
2: हाँ
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: गर्मी का मौसम है और ऐसे मौसम में बहुत सारे जो फसल हैं उसकी शुरुआत की जाती है, उसकी बुआई की शुरुआत की जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप उस मौसम में महीनों का ध्यान रखें, किस मौसम में हमें उन फसलों को
2: हाँ
1: मतलब उसकी
2: उपजा
1: पैदावार के लिए उपजाना
2: हाँ
1: आवश्यक है। अब
2: एकदम
1: जैसे खरीफ का मौसम,
2: हाँ। देखा साल में दो बहुत ज्यादा खास मौसम हमें
1: हाँ
2: रबी और फस खरीफ के, और अभी गर्मी के समय है तो खरीफ के फसल के तैयारी हो रही है खेत में।
1: अच्छा,
2: और खरीफ
1: खरीफ के
2: हाँ
1: मौसम में जो
2: धन
1: तैयारी हो रही है
2: हाँ
1: वो हमें मिलेगा अनाज के रूप में,
2: धान के हाँ
1: ये जाड़े के दिन में
2: हाँ
1: जो बहुत ही फायदेमंद होता है। जाड़े के दिन में कहा जाता है कि जो हमारी सरकार भी कहती है कि आप मोटे अनाज का सेवन करें जिससे
2: हाँ
1: कि वो जो कहते हैं ना कि
2: पौष्टिकता
1: पौष्टिकता तो
2: हाँ
1: रहे और आप मजबूत रहें, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, लेकिन
2: एक
1: वो जाड़े के दिन में पाने के लिए या हर मौसम में उसे पाने के लिए ज़रूरी है कि इस खरीफ के मौसम में जो श्री अन्न है जिसे हम एक दूसरे नाम से, जैसे हम आमतौर पे मोटा अनाज कहते हैं तो उसे श्री अन्न भी कहते हैं।
2: देखा इतना ही पौष्टिक होवे है, इतना ही बढ़िया होवे है कि एकरा के हमनी के सरकार श्री अन्न के उपमा देलथिन है, मतलब सभी अन्न में सबसे बढ़िया।
1: हाँ
2: तो एकरा में फाइबर भी बहुत होवे, प्रोटीन रहे, आयरन।

0: कैल्शियम, विटामिन एकरा में भरपूर मात्रा में पावल जाए है। और ई हमनी के शरीर के बहुत स्वस्थ रखे है। अगर पहले के लोग मोटा ना जैसन कि खालथिन रागी रहे, ज्वार रहे, बाजरा रहे, तो ई सब जो मोटा अनाज खा दी, और मोटा काम भी कर, जैसे खेती बाड़ी के काम खूब आराम से निमन से कर ले हथिन। और आजकल के जो हमने के गेहूं के आटा खा है, मैदा खा है, ई सबसे हमने के शरीर में पचे भी जल्दी ना है, और ई हमने के शरीर में जितना पौष्टिकता लावे के चाहे उतना ना ला पावे।
1: और इसीलिए हाँ। अगर ताकत के मामले में कहे, जैसे हमारी जो माँ है या हमारे जो पिताजी हैं, तो उन लोगों की इस उम्र में भी वो ताकत है जो शायद हम जब उस उम्र में जाएं हाँ। तो हमारे पास ना हो। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, कि आपने बचपन से क्या कुछ खाया पिया है, उस तरीके के खान पान रहे हैं। अब भले ही दौर बदला है, खाने का मतलब वो चलन जो है वो बदल गया है। सबसे पहले तो जो हम ये श्री अन्न की बात कर रहे हैं, सबसे उच्च मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, खरीफ मौसम में जो की जाती है, तो खरीफ में बुआई का सही समय जो है वो जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई का दूसरा पखवाड़ा होता है।
0: अच्छा, देखा है, एक खेती भी बहुत बड़ा आसान से हुए का है कि एक में कम पानी की खपत हो पे, जैसे कि धान और गेहूं में पानी की तुलना में अगर कहा जाए तो इसमें बहुत कम मात्रा में सिंचाई हो सके है। और इसे हमने के जलवायु भी अनुकूल होवे है, काहे कि गर्मी और सुखाड़ के सहे में एकरा में बहुत अद्भुत क्षमता होवे है। मतलब ज्यादा गर्मी भी सह सके है और जेकरा में पानी की जरूरत न है।
1: और तो, वही सबसे हाँ। पहले एक से दो बार गहरी जुताई करके पाटा लगा ले ताकि मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाए, क्योंकि जब आप फसल लगाने जा रहे हैं तो मिट्टी को पहले आप उस तरीके से बना करके रखें जिसमें जब बीज बीज का छिड़काव आप करें तो वो अच्छे तरीके से उसकी उपज बढ़े। तो बीजों को छिड़कने के बजाय एक जो आजकल है कि सीड ड्रिल की मदद से कतारों में बोना चाहिए, कतार से कतार की दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। वहीं बीज को बोने से पहले बीज उपचार अवश्य करा लेना चाहिए कि वो बीज कैसा है।
0: अच्छा, तो इस तरह की खेती हमने सब कर सके ही, मतलब है ना, मोटा अनाज के
1: बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं
0: एकदम। और देखिए, ये मोटा अनाज की खेती के बाद कहा जाए प्रिय बहन, तो ये कम लागत में ही हमने के एकर खेती हो जाए। कहे कि एकरा में रासायनिक उर्वरक जैसे कि यूरिया की जरूरत ना पड़े, और कीटनाशक के भी जरूरत लगभग ना के बराबर हो। कहे कि एकरा से का होवे कि एकरा में कीट और कीड़ा जो होवे बहुत कम लगे है, जेकरा से हमने के कीटनाशक पे जो खर्चा होवे वो बच जाए।
1: वो बच जाता है, मतलब कम लागत में अच्छी उपज। और आज की इस तारीख में आधुनिक युग में हम कहें फिर से उसी तरीके से कहते ना कि साइकिल
0: की ओर बढ़ा,
1: साइकिल का जो टायर होता है वो घूम के फिर वहीं आता है, उसी तरीके से जो पहले चल रहा था वो फिर घूम के वहीं आया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब देरी करते हैं तो फिर से याद आता है नहीं नहीं वही ठीक था तो वही ठीक था तो उसी को करना जरूरी है।
0: और ये पर्यावरण संरक्षण भी बहुत बढ़िया है, कहे कि एकरा में कार्बन उत्सर्जन कम होवे है। तो पर्यावरण को स्वस्थ रखेला और हमनी के स्वास्थ्य के ला मोटा अनाज की खेती अगर करल जाए तो बहुत निमन होते।
1: तो अनाज की खेती कर लिया, इतने खाने पीने की बात कर ली, लेकिन खाने के साथ ही साथ बहुत सारी चीज होती है, मील में जाकर के हम पिसवा लेते हैं लेकिन पहले का जो समय था वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा था, जाता था, जाता में ऐसे ऐसे करने से किसी के हाथ में दर्द सुना नहीं, लेकिन आज आप घर घर में सुनिए एक उम्र के बाद, अरे मेरे कंधे में बहुत दर्द है, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, लेकिन पहले के लोगों को ये सब नहीं होता था।
0: यह वही हम तो ज्यादा तो ना ला सके लेकिन सार गीत जरूर सुना सके।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं भी कहना चाह रही थी कि ये मत सोचिए कि मैं जाता लाने के लिए कह रही हूँ, मैं करने वाली हूँ, लेकिन हाँ उसको योगा के तौर पे हम जाता जरूर पीस रहे हैं।
0: भाई अपने की और अपने श्रोता लोग इनके इज्जत सार गीत टुकु पाठक के आवाज में।

0: क्या कि हमने अपन अब फायदा उठा सके ही। तो
1: हम्म,
0: आज के वार्ता के विषय भी है पाग लगाने की तैयारी, और वार्ताकार हथिन शशांक शेखर सोलंकी।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज का विषय है बाग लगाने की तैयारी। क्योंकि बाग की स्थापना एक दीर्घकालिक निवेश है और इसके लिए पूर्व योजना बनाने की आवश्यकता होती है। बाग की उत्पादन क्षमता और उत्पादकता उचित जलवायु और मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। यदि स्थल के चयन, रोपण, फसल या किस्म के चयन एवं रोपण सामग्री की खरीद आदि को ध्यान नहीं रखा गया तो निश्चित तौर पर बाग की स्थापना प्रभावित होती है। सीधे बाग के प्रदर्शन क्षमता और लाभप्रद को बुरी तरह से प्रभावित करती है। अतः फल उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे बाग लगाने से पूर्व किसी अनुभवी बागवान से समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। बाग के स्थान चयन करते समय भूमि की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। बागों की सफलता और असफलता निश्चित रूप से मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करती है, क्योंकि यह पौधों की वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व और नमी प्रदान करती है। मिट्टी की भुरभुरा शक्ति और समतल करने के लिए जुताई करते रहना चाहिए। मिट्टी की भौतिक स्थिति पौधों की रोपाई के लिए उचित हो जाए उसके पश्चात ही उसमें गड्ढे बनाए जाते हैं। किसी भी फल वृक्ष के बगीचों की उचित वृद्धि और उत्पादन क्षमता के लिए मूल रूप से गहरी और सूखी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जबकि कठोर और पैनी कैल्शियम कार्बोनेट युक्त मिट्टी अच्छी नहीं मानी जाती। बाग की स्थापना के लिए अच्छी तरह से स्थापित सिंचाई सुविधा अति आवश्यक है। इस प्रकार न केवल शुष्क अवधि के दौरान बल्कि पूरे वर्ष काल में हमें हर समय सिंचाई की एक उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई की आवृत्ति और मात्रा मिट्टी के प्रकार, जलवायु परिस्थितियों, विशेष रूप से वर्षा की आवृत्ति, तीव्रता और उनके वितरण के साथ साथ पेड़ पौधों की उम्र पर भी निर्भर करती है। बाग लगाने की शुरुआती अवस्था में हमें बाड़ लगाना या विंड ब्रेक को की स्थापना भी करनी चाहिए। आम के बगीचों को जंगली और आवारा जानवरों से बचाने के लिए चारों ओर से रोकने के लिए फेंसिंग या बाड़ बनाने की अति आवश्यकता है। आम के बाग को चारों ओर की सीमा को खंभों और कटीले तारों से भी घेरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एंगल आयरन, पत्थर, ईंट, कंक्रीट, लकड़ी आदि के खंभे भी बनाए जा सकते हैं। लाइव हेज द्वारा बाड़ भी बनाया जा सकता है, जो जानवरों एवं अन्य अजनबी मनुष्यों के प्रवेश को रोकने एवं गोपनीयता को बनाए रखने और उत्पादों की सुरक्षा के लिए सहायक होता है। लाइव हेज के लिए उपयुक्त पौधे जैसे करोदा, विलायती बबूल, बोगनवेलिया, कचनार, बबूल, बेर, मेहंदी इत्यादि को लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तेज गति की हवाओं से आमतौर पर बाग को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तेज हवा से आम के पेड़ों को कई तरह से नुकसान पहुंचता है। बगीचों के लेआउट योजना में पवन रोधक की स्थापना भी अति आवश्यक है, जो वाष्पीकरण को रोकती है, मिट्टी में नमी की कमी, हवा के वेग को कम करती है, ठंडी हवा को भी रोकती है और ठंड की क्षति को कम करती है। पेड़ लगाने से कम 2 से 3 साल पहले पवन रोधकों को आम तौर पर उत्तर पश्चिम की दिशा में स्थापित करना अति आवश्यक हो जाता है। पानी और पोषक तत्वों के लिए हवा के प्रकोप और बाग के पेड़ों के बीच प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए बगीचों के चारों ओर 1 मीटर गहरी खाई खोदकर देखभाल की जानी चाहिए। वायुरोधक के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ पौधे जैसे कैजुरिना, ग्रेवेलिया, आर्टोकार्पस, नीलगिरी, बबूल, करोदा, जामुन आदि लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त लेआउट जैसे भवन, सड़कें, पथ, सिंचाई और जल निकास चैनल की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्षेत्र में पौधों की स्थिति के आकलन को लेआउट कहा जाता है। बगीचों के लेआउट योजना को बागवानी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अधिमानतः तैयार किया जाना चाहिए। इसमें रोपण की व्यवस्था, बगीचों के रास्तों, सड़कों, सिंचाई और जल निकासी चैनल और खेत के निर्माण की व्यवस्था भी शामिल होती है। लोगों और मशीनों के कुशल आवागमन के लिए मुख्य चौराहों और रास्तों का एक आंतरिक नेटवर्क भी किसान भाइयों को तैयार कर लेना चाहिए। सड़क रास्तों, खेत और इमारतों जैसे कि कार्यान्वयन शेड, श्रम और गार्ड क्वार्टर, सिंचाई और जल निकासी चैनल की योजना पहले से ही अच्छी तरह से की जानी चाहिए, अन्यथा बाद में ये बाग स्थापना में और तथा फल के जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो ये एक समस्या

0: प्यारा ये जत्सार हमने सुना टुकी पाठक की आवाज में, और भी गीत समय रहा तो जरूर
1: हाँ
0: सुनेंगे,
1: हाँ
0: लेकिन अभी वक्त हो चला है एक उपयोगी वार्ता सुनने की।
1: देखा हमने की खेती बाड़ी के बात कर ली तो कहा ना बाग बगीचा के बात करी, काहे कि देखा गर्मी के बाद हमने के हो जाए बाग लगावे के मौसम आ जाए, अगर हमने अभी से तैयारी कर लेवे तो एगो नीमन सा बाग तैयार।

बन जाती है अगर आपने पूर्व में ही इसे अच्छे से लेआउट के समय स्थापित बनाया नहीं है। खेत में भूमि की तैयारी सबसे आवश्यक और सबसे महंगी प्रक्रिया मानी जाती है। खेती की कुशल कुल लागत का लगभग 30% भूमि की तैयारी में ही उपयोग हो किए जाने वाले औजारों की लागत से आ जाता है। अतः किसान बंधुओं से यह गुजारिश की जाती है कि मशीनीकृत खेती के अपने आप में जो कई फायदे हैं, जो जल्दी कर सकते हैं, पैसों को अपने बचा सकते हैं, तथा समुचित रूप से बाकी स्थापना में इनका उपयोग लाना चाहिए। जैसे कि समय की बचत भी कर सकते हैं, श्रम की लागत में बचत कर सकते हैं, और सही समय पर आसानी से ये उपलब्ध भी हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के उन्नत उपकरण भी अब चलन में आ चुके हैं, जो विभिन्न फसलों की खेती को बहुत ही आसान और संयमित बना देते हैं। भूमि तैयारी की प्रक्रिया भी किसान भाइयों को ध्यान में रखना है कि जैसे भूमि की तैयारी में सतह सफाई, गहरी जुताई खासकर के ग्रीष्मकाल में, और मिट्टी को भुरभुरा करना है तथा मिट्टी को ऊंचे और नीचे की ओर ले जाना है, खेत की सड़कें बनाना और समतल करना आदि भी इसमें शामिल है। यदि भूमि पर पहले से ही खेती की जा रही है तो भूमि की प्रारंभिक तैयारी आवश्यक है, लेकिन एक अनुपयुक्त भूमि को समतल करने के साथ साथ गहरी जुताई और हैरो की आवश्यकता भी होती है। यदि चयनित स्थल जंगल स्वरूप है तो मौजूदा झाड़ियों और पेड़ को उखाड़ देना चाहिए। रोपण से पहले भूमि की जुताई, हैरो और समतल किया जाना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता को समृद्ध करने और इसकी भौतिक स्थिति में सुधार करने के लिए भूमि की तैयारी के दौरान हरी खाद वाली फसलें जैसे ढैचा, सन, लोबिया आदि उगाई और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं। लेवलिंग और सफाई जैसे कि बगीचे में सिंचाई प्रणाली के प्रकार पर निर्भर करती है। उचित जल निकास सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि आम के पौधे लंबे समय तक जल भराव का सामना नहीं कर सकते, और साथ ही कई और महत्वपूर्ण पौधे हैं जहां पे जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अतः कृषक बंधुओं को सदैव बगीचों की अच्छी लेवलिंग किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बिहार में खास करके जो पौधे हैं किसान बंधु उगा रहे हैं, फलों के पौधे, ज़्यादातर पौधों की जड़ों जो है उसमें पानी जब रुकता है तो वो काफ़ी क्षति पहुंचती है, और इसलिए उचित जल निकास अति आवश्यक हो जाता है। वांछित रोपण प्रणाली जैसे वर्गाकार, त्रिकोणाकार, क्विनकक्स का उपयोग करके खेत का लेआउट तैयार किया जा सकता है। रोपण के लिए गड्ढे की तैयारी भी की जानी चाहिए। आमतौर पर चयनित स्थल की सफाई के बाद रोपण की वर्ग प्रणाली में लेआउट किया जाना चाहिए। रोपण बोर्ड की सहायता से गड्ढों का चिन्हीकरण और रोपण किया जाना चाहिए। अप्रैल मई के महीनों में 1x1x1 मीटर क्यूब आकार के गहरे गड्ढे बना लिए जाते हैं। गड्ढे खोदते समय ऊपर से 30 सेंटीमीटर सतह की मिट्टी अलग रखनी चाहिए। सफ़ेद चींटियों और दीमकों के हमलों को रोकने के लिए इन गड्ढों की सतह की मिट्टी में 20 से 25 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 50 ग्राम क्लोरोपाइरिफास ग्रेन्यूल प्रति गड्ढे के मिश्रण बनाकर भर दिया जाता है। 500 ग्राम नीम की खली को भी मिट्टी के मिश्रण के रूप में मिला देना उपयुक्त पाया जाता है। खास करके बारिश या बरसात के मौसम से पहले गड्ढों को अच्छी तरह से भर देना चाहिए। पूरे भारत में जो रोपण का सबसे अच्छा समय माना जाता है फल फूल के पौधों के लिए, वो मानसून का समय है जो अभी चल रहा है। जब वातावरण में पर्याप्त नमी हो उस समय पौधों को लगाया जाना चाहिए, और खास करके सायंकाल लगाना ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। इसके साथ ही कृषक बंधुओं को उर्वरकों की संतुलित जो मात्रा है मिट्टी में उर्वरता के स्तर के साथ साथ विशेष क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के आधार पर तय की जानी चाहिए। इसका अंदाजा हम मिट्टी के परीक्षण और विशेषज्ञ की राय के अनुसार भी कर सकते हैं। अच्छे भाग की सफलता अच्छे व सही किस्म के पौधों पर भी निर्भर करती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि आदर्श पौधशाला से ही निरंतर स्वस्थ एवं प्रमाणित उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध लेने चाहिए। यदि प्रारंभ में ही रोगग्रस्त पौधे हम लगाएंगे तो अनुत्पादक मात्र पौधे के बाग से इसकी स्थापना की जाती है तो निश्चित तौर पर हमें घाटा लग सकता है, तो बाद में देखरेख भी बेकार हो जाती है। ऐसे पौधों को कभी भी आगे बाग में की स्थापना फल पौधों के उत्पादन उचित नहीं मिल पाता कृषक बंधुओं को, तो इसको भी ध्यान रखना है। बाग लगाने हैं तो जो विभिन्न रेखांकन की विधियां हैं, जैसे बाग की कई विधियां हैं, आयताकार विधि है, वर्गाकार, खडभुजाकार, त्रिभुजाकार, पूरक विधि, परिरेखा विधि है। तो जैसे हमारे यहाँ आयताकार और वर्गाकार बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। आयताकार विधि में क्या करते हैं कृषक बंधु,

0: क्योंकि पौधे जो है सारे पौधे एक बराबर दूरी पर लगते हैं और सभी क्रियाएं इसमें आसानी से हो जाती हैं। और इसमें जो चीज़ है कि पौधों के विकास और सूर्य को का प्रकाश उचित मिल जाता है, इस विधि में सस्य क्रियाएं जो हैं वो एक दिशा में ही हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो वर्गाकार विधि है, इसमें जो ये वर्ग के आकार का होता है, इसमें सारे पौधे एक समान दूरी पर ही लगते हैं तथा इसमें जो दो दिशाओं से इसमें कृषि क्रियाएं की जा सकती हैं और ये सरल और उपयोगी और ज़्यादातर कृषक बंधु इसको उपयोग में ला भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त खटभुजा भुजाकार विधि भी है, जिसे समत्रिबाहु विधि भी कहते हैं। पौधे त्रिभुज के तीन कोनों पर लगाए जाते हैं। खटभुज के आकार में कुल खटभुजा का नाम ही है, तो छह वृक्ष लगाए जाते हैं या छह पौधे लगाए जाते हैं और एक पौधा जो है इसके केंद्र में लगाया जाता है। इस विधि में वर्गाकार की अपेक्षा 15% अधिक पौधे आ जाते हैं। जुताई की क्रियाएं तीन दिशाओं से की जा सकती हैं। इस विधि में जमीन की अधिक से अधिक उपयोग हो पाता है। हाँ, इसके अतिरिक्त जो त्रिभुजाकार विधि है उसे भी कृषक बंधु लगा सकते हैं, जिसमें कि वर्गाकार विधि की तरह ही है सब कुछ, लेकिन केवल इतना अंतर है कि समान अंकों वाली कतारों के पौधे आसमान अंकों वाली कतारों के मध्य में लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो एक विधि है अभी प्रचलन में, ये भी आई है, जहाँ पे हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करते हैं हम लोग, पूरक विधि। इस विधि के रेखांकन वर्गाकार विधि की भांति ही करते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ग के केंद्र में एक वृक्ष अधिक लगा देते हैं, एक पौधा ज़्यादा लगा सकते हैं हम लोग। यह अतिरिक्त पौधा अस्थायी रूप से लगाया जाता है, जो कि बाद में निकाल दिया जाता है। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा दोगुने पौधे आ जाते हैं। जहाँ पर जमीन बहुत महंगी है, वहाँ पर कृषक बंधु इस विधि को अपना सकते हैं। इस विधि में केंद्र के लिए उपयुक्त जो पौधे लगाते हैं वो पपीता, फालसा, इस तरह के सीजनल प्लांट्स पौधे लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिरेखा विधि है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जहां जमीन समतल नहीं है वहां पर बाग की रोपाई के लिए इस विधि को लगाया जा सकता है, जहां पर ढाल बहुत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त कृषक बंधुओं को फल वृक्षों की जो समय समय पर छटाई कटाई करना चाहिए। मैंने बताया कि आपको किस्मों का चुनाव बहुत अच्छे से करना चाहिए और बाग की स्थापना के लिए जहाँ भी रोगी पौधे शुरू में दिखाई दिए उन्हें हटा देना चाहिए और पौधों को उचित आकार देना अति आवश्यक हो जाता है, उनसे ज़्यादा मात्रा में फल प्राप्त करने हेतु। अगर कृषक बंधु निश्चित तौर पर जो बताई गई विधियाँ हैं, जो बताई गई तकनीक है, उसको अपनाएंगे बाग लगाने के समय, जो कि अभी चल रहा है, तो निश्चित तौर पर वह अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और कृषक बंधु अच्छी किस्मों को लगाएं, जैसे आम में आम्रपाली है, मल्लिका है, इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगा सकते हैं।
1: तो अभी बहुत ही उपयोगी वार्ता हमने सुनी बाग लगाने की तैयारी, और वार्ताकार थे शशांक शेखर सोलंकी। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। अब आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार निमिषा बहन।
2: नमस्कार प्रिया बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में हर हाल में सुशासन कायम रहेगा। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी बने प्रभारी कुलपति। भोजपुर बक्सर प्राधिकार सीट से नवनिर्वाचित पार्षद सोनू कुमार राय ने विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली। और काल बैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश और वज्रपात से 3 लोगों की मौत। दक्षिणी भागों में जारी है भीषण गर्मी का प्रकोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में हर हाल में सुशासन कायम रहेगा। श्री चौधरी ने पटना में पुलिस कर्मियों के परिवारों को बीमा राशि का चेक सौंपने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों से कहा कि आप ड्यूटी कीजिए, आपके परिवार की चिंता सरकार करेगी।
1: बिहार में सुशासन और आपके बल पर सुशासन, बिहार की समृद्धि का भी रास्ता आप ही है, क्योंकि आप सुशासन देंगे तो हमारी व्यवस्था खड़ी हो जाए, और जब व्यवस्था खड़ी होगी तो उद्योग धंधे लगने लगे। सभी पुलिस वाले को कहा है कि आंख मून कर सुशासन स्थापित करने में सहयोग, और आपके परिवार आपके लोगों की चिंता सरकार करे।
0: श्री चौधरी ने कहा कि राज्य की समृद्धि के लिए उद्योगों का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश हो, इसके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज श्रावणी मेला और बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को बाढ़ राहत और बचाव कार्य की तैयारियों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी व्यापक प्रबंध

0: किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई विभागों के मंत्री मौजूद थे। जदयू के वरिष्ठ नेता और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। श्री चौधरी ने पटना स्थित जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए विपक्ष के एक खास जाति को टारगेट बनाने के बयान को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की जाति नहीं देखी जाती है।
1: प्रश्न ये नहीं है कि वो जाति किसका है, प्रश्न ये है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है। जिसका भी पुलिस से मुठभेड़ हुआ वो आदमी, वो व्यक्ति क्रिमिनल हिस्ट्री का था कि नहीं था। अब क्रिमिनल को भी अगर कोई मारा जा रहा है इनकाउंटर में या पुलिस मुठभेड़ में करिए तो उसको कह रहे हैं जाति मार रहा है। क्रिमिनल का कोई जाति होता है? क्रिमिनल का तो सबसे बड़ा जाति क्रिमिनल होता है।
0: मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोक भवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी को नए कुलपति के स्थायी नियुक्ति होने तक कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। हमारे गया संवाददाता ने बताया है कि प्रोफेसर दिलीप कुमार केसरी ने आज कार्यवाहक कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर मगध विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मंगलम सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। लोक भवन ने राज्य के 6 विश्वविद्यालयों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बी आर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में कुलपति की नियुक्ति के लिए 20 जून तक आवेदन मांगे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने TRE4 शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं लेकिन परीक्षा नहीं ली जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है।
2: TRE4 के मामले में हम लगातार इस बात को रखते हैं, अब बिहार की जनता तरस रही, उम्र निकला जा रहा है, तैयारियों में इतना पैसा खर्च हुआ, लोग इतने मेहनत किए और परीक्षा नहीं होता, इससे बड़ा दुख की क्या बात हो सकती। इतने लोग पीड़ित हैं, सरकार वादा करके अगर मुखर जाती है, नहीं कर पाती तो ये सरकार की फेलियर। परीक्षा
0: विधान परिषद की भोजपुर बक्सर प्राधिकार सीट के लिए हाल ही में संपन्न उपचुनाव में राजद के नवनिर्वाचित पार्षद सोनू कुमार राय ने आज सदन की सदस्यता की शपथ ली। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आर्थिक अपराध इकाई EOU का विशेष सेल गठित किया गया है। विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि यह सेल विभाग में व्यवस्था सुधार और भ्रष्टाचार पर निगरानी रखेगा। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही अवैध वसूली की शिकायत, राजस्व कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों को देखते हुए सेल के गठन का निर्णय लिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष टीम की प्रतिनियुक्ति कर दी है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। विभाग की ओर से बताया गया है कि सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा के विज्ञापन प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार मठ मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थानों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराएगी। श्री जायसवाल ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इसकी रूपरेखा तय करने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी।
1: देखिए, राजस्व विभाग ने धार्मिक न्यास परिषद के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध किया है कि हम लोग राजस्व विभाग एक बैठक बुला रहे हैं जिसमें धार्मिक न्यास परिषद के सभी सदस्य और उनके सचिव रहेंगे, लॉ सेक्रेटरी रहेंगे और राजस्व विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे। धार्मिक न्यास परिषद का लाखों एकड़ जमीन या तो मठ मंदिर का हो, चाहे धार्मिक न्यास परिषद का हो, वो या

0: न्यास परिषद के सभी सदस्य और उनके सचिव रहेंगे, लॉ सेक्रेटरी रहेंगे और राजस्व विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे। धार्मिक न्यास परिषद का लाखों एकड़ जमीन या तो मठ मंदिर का हो, चाहे धार्मिक न्यास परिषद का हो, वो या तो अतिक्रमण के है या फिर आपसी विवाद में फंसा हुआ है। इसी के लिए राजस्व विभाग ये पहल करने जा रही है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के सभी जमीन सुरक्षित रहें।
1: काल बैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, कटिहार समेत राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 22 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: आंधी बारिश और वज्रपात की घटना में राज्य के अलग अलग भागों में 3 लोगों की मौत की खबर है। मधेपुरा के बिहारीगंज में वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई और 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान गया और नवादा जिले में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इधर दक्षिण बिहार के अधिकतर भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अरवल, भोजपुर और रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई है।
2: राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों अरवल, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
1: बेगूसराय जिला प्रशासन ने अत्यधिक गर्मी के मद्देनजर 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 11 बजे के बाद पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने इस संबंध में आदेश जारी किया। यह आदेश 25 मई तक लागू रहेगा। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज का दिन देशभर में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय
4: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: शेखपुरा की स्थानीय अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी 6 भाइयों को शस्त्र अधिनियम के तहत 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ के चकबंदी रोड में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय शुरू हो गया है। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत गंगटा पंचायत के सोनरवा गांव में ग्रामीणों ने नल जल योजना बंद होने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी ने

0: बताया कि सोलर पैनल में गड़बड़ी के कारण समस्या हुई है, इसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरवाल के नेतृत्व में आयोजित अभियान के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया गया। नवादा जिले के गोविंदपुर स्थित ककोलत जलप्रपात में प्रवेश और पार्किंग शुल्क को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने, उनकी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए यह बढ़ोतरी की गई है। सुपौल जिले के बीरपुर में शैलेशपुर चौकी के पास एसएसबी जवानों ने एक नेपाली महिला के पास से हिरण का सिंह बरामद किया है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अररिया जिले के प्लासी प्रखंड के 5 पंचायतों में आज जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में हर हाल में सुशासन कायम रहेगा। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। डॉक्टर दिलीप कुमार केसरी बने प्रभारी कुलपति। भोजपुर बक्सर प्राधिकार सीट से नवनिर्वाचित पार्षद सोनू कुमार राय ने विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली। और काल बैसाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी बारिश और वज्रपात से 3 लोगों की मौत। दक्षिणी भागों में जारी है भीषण गर्मी का प्रकोप। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
2: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन।
6: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूर्णिया जिले के सभी 14 प्रखंडों की पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। डगरवा प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने आमजनों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, शिकायतों और आवश्यकताओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता देखने को मिली। लोगों ने भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य जनहित से जुड़े मामलों को मंत्री के समक्ष रखा। इस अवसर पर प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अंजनी कुमार ने कहा कि पहले शिविर में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है।
7: सहयोग शिविर में स्पष्ट रूप से राज्य सरकार का निर्देश है कि जनता का जो आवेदन आ रहा है उसको 30 दिनों के अंदर डिस्पोजल करना है। तो पहले सहयोग शिविर में जो आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग डिस्पोजल की दिशा में अग्रसर है।
6: इधर सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, प्रखंडों एवं पंचायतों में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जहां नियमित रूप से अधिकारी भाग लेकर आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच पूर्णिया जिले में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति

0: स्थिति सामान्य बनी हुई है। गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से होम डिलीवरी सेवा प्रदान की जा रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि जिले में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराहट या पैनिक में आकर घरेलू गैस सिलेंडर की अनावश्यक बुकिंग न करें। जिला प्रशासन द्वारा जिले के वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों से मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की अपील की गई है। कला और संस्कृति विभाग द्वारा संचालित इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य राज्य की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना तथा वर्षों से कला साधना में समर्पित कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले पारंपरिक शास्त्रीय चाक्षुष और प्रदर्शन कलाओं से जुड़े 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र कलाकारों को 3,000 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग बिहार के माध्यम से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 18 से 25 मई तक जनजातीय बाहुल गांव में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में प्रभारी जिला पदाधिकारी अंजनी कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत विभिन्न सेवाओं जैसे आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान, पीएम उज्ज्वला, पीएम जनधन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड आदि योजनाओं से संबंधित शिविर लगाकर निष्पादन किया जाएगा। रुपोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक लाधर प्रसाद मंडल ने भवानीपुर अंचल कार्यालय परिसर में 29 अग्निकांड पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता राशि के चेक वितरित किए। ये चेक भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र के जावे पंचायत, शहीदगंज पंचायत, गोदावार, पतकेली पंचायत और बसंतपुर चिंतामणि उसकावरी पंचायत के विभिन्न गाँव के कुल 29 पीड़ित परिवारों को प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक कलाधर प्रसाद मंडल ने कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। गौरतलब हो कि भवानीपुर प्रखंड के बसंतपुर चिंतामणि उसकावरी पंचायत स्थित बलिया आश्रम टोला में बीते दिनों आधी रात भीषण आग लग गई थी। इस अग्निकांड में कई परिवारों की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई, जिससे उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। पूर्णिया जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नप्राशन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चों का विधिवत अन्नप्राशन कराया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के माता पिता और अभिभावकों को संतुलित तथा पोषण युक्त आहार की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि बच्चों को समय पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है गीत। कलाकार हैं तान्या सौम्यदीप चक्रवर्ती।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गीत तान्या सौम्य देव चक्रवर्ती के स्वर में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम कुछ ही पल में प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत मीट ब्रोस की आवाज में। शब्द हैं शब्बीर अहमद के और संगीत मीत ब्रोस का।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

KIR at 90. श्रोताओं आइए सुनते हैं हेट स्टोरी फिल्म का ये गीत जुबिन नौटियाल और अमृता सिंह की आवाज़ में। गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने और इसे संगीत से सजाया है मिथुन ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज़ में नमस्ते इंग्लैंड फिल्म का ये गीत। जावेद अख्तर की लिखी इस रचना को तर्ज दिया है मनान शाह ने।

0: श्रोताओं, राहत फतेह अली खां की आवाज में गायस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं बातों बातों में।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम बातों बातों में। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान। बहुत ही लंबा करियर रहा इनका, आकाशवाणी से इनका जुड़ाव रहा है और प्रशासनिक करियर भी रहा है, उस काफ़ी अनुभव इनके पास है प्रशासनिक कार्य के भी। तो हमारे आज के मेहमान हैं विनोद कुमार सिन्हा जी। विनोद जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
2: नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और हमें ये मौका दिया आपसे बात करने का।
1: ये देखिए, आज जहां हम बैठे हैं ये है रिकॉर्डिंग स्टूडियो।
2: जी जी जी।
1: और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो से जो आज के हमारे मेहमान हैं विनोद सिन्हा जी, इनका बहुत पुराना नाता रहा है, आज से नहीं पिछले कई दशकों से इनका ये नाता रहा है और ये आज तक चलता आ रहा है। तो माइक्रोफोन से इनका नाता ये कैसे बना, आगे कैसे बढ़ा और अब तक ये कैसे इतना एक्टिव रह रहे हैं, तो ये हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे
2: भाई? देखिए, आपका जो ये रेडियो है ना, ये संचार का और आपसी संपर्क का सबसे लोकप्रिय और सशक्त माध्यम है। सैनिक को कोई साधन नहीं है सुदूर इलाकों में, लेकिन रेडियो है उनके पास। तो ये सारी चीज उत्सुकता तो थी इसके प्रति। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो रेडियो, जब पहले वॉल वाला रेडियो हुआ करता था, जिज्ञासा ऐसी होती थी कि जब मैकेनिक कभी आता था रेडियो बनाने के लिए तो हम लोग उसमें ताक झांक करते थे, इसमें आवाज निकलती है तो
1: कहीं कौन बोलता है, बैठा तो नहीं,
2: कौन बोलता है इसमें। और मैं बताऊंगा आपको कि इस केंद्र से मेरा जुड़ाव 1975 में, 74 में आपके यहाँ युवाणी कार्यक्रम की शुरुआत हुई और एक वार्ताकार के रूप में 75 में मैं जुड़ा पहली बार,
1: युवा वार्ताकार
2: के रूप में। किशोर उम्र थी, मैट्रिक की परीक्षा मैंने दी थी, एक लघु वार्ता के साथ मैं जुड़ा था और मैं भाग्यशाली हूँ कि कार्यक्रम अधिशासी थी विजय लक्ष्मी सिन्हा। तो वो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, पहला प्रयास था, काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया हमें और प्रोग्राम वो सफल रहा। मैं दिल की बात बताऊं, उसके बाद एक चस्का सा लग गया इस केंद्र से जुड़ने का। फिर तो
1: जब आप अपने घर से रेडियो स्टेशन आया करते थे, आकाशवाणी केंद्र आया करते थे, तो कैसा माहौल था, सड़कें कैसी थीं, लोग कैसे थे, मकान कैसे थे, मतलब कैसा दृश्य हुआ करता था? और आपके दिल में आकाशवाणी केंद्र जा करके प्रोग्राम करने की जो खुशी रही होगी उसके बारे में भी बताएं।
2: देखिए, उस समय तो दूरदर्शन भी नहीं था और रेडियो ऐसा माध्यम था कि मैं आपको बताऊं, हम लोगों का एक पाक्षिक कार्यक्रम हुआ करता था, कॉमेडी प्रोग्राम हुआ करता था, वो हंसिए हंसाइए गुनगुनाइए।
1: क्या बात!
2: वो सौभाग्य ऐसा रहा कि इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन एक दिन छठ के घाट पर मैं खड़ा था और बगल में उस कार्यक्रम की चर्चा हो रही थी। ये चीज़ है, ये मैंने कहा कि एक एक आदमी तक आप पहुँच पाते हैं।

0: और दूसरा माध्यम भी नहीं था, टीवी वगैरह तो बाद में आया, रेडियो उस समय एकमात्र माध्यम था।
1: और देखिए उस माध्यम को आकाशवाणी के प्रसारण के 90 शानदार वर्ष भी अब पूरे हो चुके हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो ने सबसे बड़ा चीज जो मुझे दिया वो एक तो मंच दिया, लिखने पढ़ने का शौकीन हूँ तो वो एक जगह दी मुझे कि अपनी बातें मैं रख सकूँ, अपने विचार मैं अभिव्यक्त कर सकूँ, और उससे बढ़कर एक से एक दिग्गज लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ा जो संभव नहीं था।
1: अच्छा, तो उस दिन जिस दिन आपकी रिकॉर्डिंग थी आपके आपके वार्ता की,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: पहली बार जब आप आ रहे थे आकाशवाणी, तो कैसे आए थे आप? उस जमाने में क्या ये रिक्शा चला करता होगा?
0: उस समय तो हम लोग बिल्कुल, मैंने बताया कि मैंने मैट्रिकुलेशन किया था और साइकिलिंग किया करते थे हम लोग
1: क्या बात, क्या
0: साइकिल से
1: बात
0: रेडियो आते थे और वार्ता करते थे। और यही नहीं, उन दिनों उस वार्ता के लिए मुझे 15 रुपये का चेक मिला था आपके यहाँ से, और वो
1: वाह,
0: रिजर्व बैंक का,
1: क्या बात।
0: और हमारे एक संबंधी उन दिनों रिजर्व बैंक में थे, वो लोगों को दिखा रहे थे कि देखो मेरा ये कजन है, ये रेडियो पर प्रोग्राम करके आया है। वो समझ लिए कि इतना बड़ा पुरस्कार था कि कह नहीं सकते हैं।
1: और आपने बताया कि उस समय पेक्स थी विजय लक्ष्मी मैडम,
0: जी जी जी
1: तो
0: जी
1: उस समय स्टेशन डायरेक्टर कौन थे? क्या आपकी भेंट हुई उनसे कभी, उस जमाने के स्टेशन डायरेक्टर से?
0: नहीं, उन दिनों तो नहीं, किसी भी केंद्र निदेशक से पहली मुलाकात यहाँ हुई। मैं बताऊँ, 77-79 मेरा ग्रेजुएशन का बैच था और 80 में सेशन लेट होने से मैं 80 में आया था आपके यहाँ। युवाणी का ही एक प्रोग्राम हुआ करता था, मेरी पसंद, फिल्मी गानों पर
1: जी,
0: आधारित।
1: आज तक वो चल रहा है
0: हाँ, वो
1: कार्यक्रम?
0: चल रहा
1: हाँ
0: है।
1: जी,
0: उसको पेश करने के लिए मैं आया था। अनाउंसमेंट कर पाऊंगा मैं खुद कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन यहाँ एक सीनियर उद्घोषक हुआ करते थे, वो इस प्रोग्राम को सुन रहे थे, प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम हुआ करता था। प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे टोका कि आप ग्रेजुएशन कर गए हैं? मैंने कहा कि अभी जस्ट रिजल्ट हुआ। तो बोले कि आकस्मिक उद्घोषों की मांग है यहाँ, आप आवेदन कर दें। मैंने कहा कि क्या मजाक कर रहे हैं, मैं और अनाउंसमेंट करूंगा? तो बोले कि ऐसा क्या है। मैंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन की बात मैं बताऊं, ऑडिशन के बाद जो मैं बाहर निकला, मेरे दोनों हाथ बिल्कुल भीगे हुए थे, टप टप पानी टपक रहा था, इतना नर्वस था मैं। लेकिन भोजपुरी और युवाणी दोनों के लिए मेरा चयन हुआ, और युवाणी के आकस्मिक उद्घोषक के रूप में मैंने शुरू किया काम यहाँ। मैं खुद कॉन्फिडेंस नहीं था कि कैसा होगा, लेकिन शनिवार रविवार 2 दिन मैंने काम किया। सोमवार के दिन कार्यक्रम अधिशासी ने मुझसे कहा कि निदेशक थे श्री सत्य प्रकाश नारायण किरण, बड़े विद्वान आदमी, और रेडियो वो सुनते थे। उनके कहने पर मैं उनसे मिलने गया, और उन्होंने मेरा पीठ ठोका, बोले कि बहुत अच्छा कर रहे हो। वो मेरे लिए जस्ट एक शाबाशी नहीं थी, मेरा आत्मबल जो मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था मैं अपने अंदर, वो उन्होंने बढ़ाया
1: वो वापस आ
0: और
1: गया।
0: वो वापस आया, और तब पूरे निर्भीकता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस केंद्र से जुड़ सका। और उसके बाद तो कई कार्यक्रम
1: उसके
0: किए।
1: बाद तो आपने हर तरह के प्रोग्राम किए, फिल्म म्यूजिक का भी प्रोग्राम किया, अनाउंसमेंट भी करा, आपने ड्रामा में भी कभी पार्ट लिया था
0: हाँ,
1: आपने?
0: ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में हम समझते हैं कि 4-5 साल रहा, उसके बाद नौकरी में आ गया राज्य सरकार की। तो नौकरी में आने के बाद व्यस्तता कुछ वैसी रही कि वो आगे जारी नहीं रख सका। देखिए, लेखन के प्रति मेरा झुकाव, या खास के कहानी लेखन के प्रति मेरा झुकाव, पहली बार जब मैंने फणीश्वर रेणु साहब को देखा था बहुत छोटपन में, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ लिखना चाहिए।
1: कुछ लिखना
0: तो
1: चाहिए।
0: फिल्म तीसरी कसम का एक गीत, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई,
1: क्या बात
0: सुनते
1: है,
0: हैं
1: बहुत बहुत बढ़िया गाना चुना है
0: हम।
1: आपने। तो श्रोताओं, पहले सुनते हैं ये गाना, और फिर इस कार्यक्रम में विनोद जी से हमारी बातचीत यूं ही चलती रहेगी। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी पटना।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम है बातों बातों में। और आज बात हो रही है, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान जिनके पास है आकाशवाणी में काम करने का अनुभव, प्रशासनिक अनुभव, और बहुत ही बढ़िया लेखक भी है, कलाकार भी हैं। आप हैं विनोद कुमार सिन्हा जी। तो आपसे बात हो रही थी सिन्हा जी कि कैसे आपके मन में लेखन की ललक जग गई जब आपने अपने बचपन में देखा था फणीश्वर
1: हाँ,
0: नाथ रेणु को।
1: मैं बताऊं, लगभग 10वीं क्लास में मैं उन दिनों पढ़ता था, और शाम में जहां हम लोग रहते थे नज़दीक में ही एक सेमिनार चल रहा था, इसका भारतीय भवन संस्था की
0: जी
1: तरफ से एक सेमिनार आयोजित था। उसमें फणीश्वर नाथ रेणु अपना बोल रहे थे, और उन दिनों एक उनकी कहानी थी हमारे पाठ्यक्रम में। तो जब उनकी बातें मैंने सुनी, इतना उन्होंने प्रभावित किया, आज हम लोग खुश नसीब हैं कि वो पल हम भूल नहीं सकते हैं। और उसके बाद पहली बार स्कूल पत्रिका के लिए मैंने लिखा, एक परिकथा जैसे लिखा मैंने, और उसके बाद की तो बात मैंने बताई। आपके यहाँ युवाणी शुरू हुई, और रेडियो से जुड़ने के बाद ये सिलसिला जो चला, काफ़ी कुछ लिखने को मिला, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी। मैं एक बात और यहाँ बताऊँ, भोजपुरी में मेरी कहानी जो प्रसारित हुई थी, उन दिनों मैं थर्ड ईयर में पढ़ता था, हमारे उस समय जो कार्यक्रम अधिशासी थे उन्हें भारत सरकार ने फीजी भेजा था कुछ भोजपुरी की रिकॉर्डिंग्स के साथ। उन्होंने मुझे बताया था कि जो रिकॉर्डिंग जा रही हैं उसमें मैं आपकी कहानी भी लेके जा रहा हूँ। मैंने बोले कि वहाँ लोग भोजपुरी बोलते हैं, मैं आपकी कहानी लेके जा रहा हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि
0: क्या बात,
1: मेरे लिए
0: क्या
1: थी।
0: बात, सच में वाकई। अच्छा, साहित्य जो आकाशवाणी में तब भी और अब भी जो भी साहित्य यहाँ से प्रसारित होता है उसे काफ़ी करीब से पहले देखा समझा जाता है, और उसके
1: बिल्कुल
0: बाद ही यहाँ से कोई कहानी या किसी कविता का प्रसारण होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और यही आकाशवाणी की महत्ता है। और ये जो बीज जो है नवाचार के बीज कह लें या साहित्य के बीज कह लें, जब
1: बिल्कुल
0: ये श्रोताओं तक पहुंचते हैं ध्वनि तरंगों के माध्यम से, तो
1: बिल्कुल
0: एक अंकुर का, किसी के मन में एक विचार का अंकुरण होता है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: और तब हमें ऐसा लगता है कि जो

0: प्रसारण है हमारा वो सार्थक हो गया हो।
1: बिल्कुल, हम आज भी जो लोग रेडियो के लिए कार्यक्रम करते हैं उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि आदमी की जिंदगी में तनाव कम नहीं है, आदमी अपने आम जिंदगी में बहुत तनावग्रस्त रहता है, लेकिन जब आप माइक्रोफोन के सामने बैठते हैं, आपकी ड्यूटी बनती है, यू मस्ट लव योर माइक्रोफोन, अपने माइक्रोफोन से आप प्यार करें और लोगों से खूब प्यारी प्यारी बातें करें, खुल के बातें करें, सब कुछ भूल कर लोग आपको सुनेंगे, आप पूरे यकीन के साथ सुनेंगे, पूरी चाहे माध्यम कोई भी हो, आज भले ही टीवी आ गया हो और
0: सोशल मीडिया का
1: सोशल
0: जमाना
1: मीडिया
0: है।
1: सोशल मीडिया का
0: जी
1: ज़माना है, लेकिन अगर आप बढ़िया प्रोग्राम करेंगे, और एक चीज़ और, रेडियो में एक बहुत बड़ी खासियत है, आपकी पर्सनालिटी चाहे जो भी हो, आपके पास अगर आवाज़ का जादू है, आप लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं, हमारा दावा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए कि रेडियो के साथ जो आपका नाता रहा है, यहाँ से जो आपने कुछ सीखा और जो तत्व आपके अंदर था उसको मिला करके आपने और भी बहुत तरह के प्रोग्राम्स बनाए हैं, और सोशल मीडिया पे भी आप लगातार एक्टिव रहते हैं, और कई फिल्मी सितारों पे आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो ये करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और इतना सारा मटेरियल आपने इकट्ठा कैसे किया?
1: देखिए, कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आदमी चाहता नहीं है, उसकी एक आदत बन जाती है, वो छोड़ ही नहीं सकता है। जब तक नौकरी का तनाव था, नौकरी की व्यस्तता थी, क्रिएटिविटी का बहुत कम मौका मिलता है। हालांकि जहां भी मैं रहा, मेरा सौभाग्य है कि सरकारी स्तर पर जो भी सांस्कृतिक आयोजन होते रहे उनमें कहीं ना कहीं मैं नोडल के रूप में काम करता था, और जहां भी रहा कला संस्कृति को मैंने खुल के प्रोत्साहित किया, कला संस्कृति में कलाकारों को प्रोत्साहित मैंने किया, इसके मंच दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जब अवकाश ग्रहण कर लिया तो मुझे लगा कि नहीं, वो छटपटाहट जो होती है ना आदमी के अंदर, वो कहीं ना कहीं निकलनी चाहिए।
0: हाँ
1: और तब शुरुआत मिमिक्री की तरह था कि एक ही डिफरेंट प्लेबैक सिंगर्स कैसे चाय बेचते हैं, तो वो एक मैंने तैयार किया था और उसको पहली बार यूट्यूब पर मैंने डाला, और फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम करके शुरू किया, और उसके बाद तो फिर फिल्मी हस्तियों के लाइफ स्टोरी को लेकर के निरंतर जारी।
0: और ये जो इनका सफ़र है फिल्मी सितारों पर, जो इन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं वो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, और इनके पास, हम अपने श्रोताओं को बता दें, काफ़ी जानकारी और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही ये कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जो कि आकाशवाणी की भी खासियत है।
1: देखिए, किसी भी काम को जब आप करते हैं, मेरी एक कमजोरी रही है कि जब तक मैं खुद अपना क्रिटिक में खुद रहा हूँ, जब तक मैं पूरी तरह खुद संतुष्ट नहीं हो जाता, लोगों के सामने उसको रख ही नहीं पाता हूँ,
0: और
1: कई
0: ये
1: बार उस पर मंथन करना पड़ता है मुझे।
0: बिल्कुल, और ये आदत हमें रखनी चाहिए।
1: जी जी जी
0: अब लगभग जो भी काम हम करते हैं हमारे डेली लाइफ में, जितने भी काम हैं, उन कामों को में भी हमें ये आदत रखनी चाहिए।
1: हाँ हाँ
0: कि एक और बात है विनोद जी, जो बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई है, कि आपके जीवन में आप वैसा काम करें जिससे कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपकी सोच, आपके विचार, आपके कार्य, आपका एक्शन, आपके हाव भाव ऐसे होने चाहिए
1: जी जी
0: जिससे
1: जी
0: कि अगर ये निजी जीवन में आप कर रहे हैं या सार्वजनिक जीवन में आप कर रहे हैं, तो
1: हाँ
0: उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं और सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं।
1: मैं बताऊं आपको, मुझे कई जिम्मेवारियां भी मिली अपने करियर में, मगर जहां भी मेरा आम आदमी से हर जगह एक सीधा संपर्क रहा। कई लोग इसको तरह तरह से लेते थे, लेकिन मेरा गरीबों की झोपड़ियों में बैठकर मैं उनसे बातें करता था, उनकी समस्याओं को सुनता रहा, और उसका समाधान कैसे होगा। हालांकि दुर्भाग्य है, कई बार जो लोग ट्रेडिशन जो इससे बने हुए हैं, कोई सुधार नहीं चाहते हैं, वो उनके बीच उसका ये होता रहा कि कैसे काम करता है, कैसे क्या करता है, लेकिन पता नहीं, मैं तो हर लोगों शाम में भी काम खत्म होने के बाद जब शाम में निकलता था, एक एक लोगों से मिलता था, जुलता था, लोगों की बातें सुनता था, ये एक आदत बन जाती है, और ये रेडियो ने सिखाया। हम लोग एक ओबी प्रोग्राम करते थे, मजदूरों की रिकॉर्डिंग, हम लोग सड़कों पे जाके उनकी बातें सुनते थे, वो युवाणी में आपके यहाँ हम लोग
0: जी
1: बनाते थे ओबी बेस्ड प्रोग्राम, उसमें उनके कैसे वो काम करते हैं, कैसे उनका लाइफ स्टाइल है, ये सब पर हम लोग प्रोग्राम बनाते थे, ये सब ताकि लोग उनकी स्थिति को समझ सकें।
0: ये जो है ये पाठ पढ़ा।

0: हाँ है अपने और इस पार्ट को लेकर के आप आगे चले हैं। चलिए अब कार्यक्रम में वक्त है, एक और गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कौन सा गाना श्रोताओं को सुनवाएंगे?
1: भाई देखिए, मुकेश साहब शुरू से मेरे फेवरेट रहे हैं,
0: हाँ जी,
1: और मुकेश साहब के बहुत सारे दर्द भरे नगमे हैं, लेकिन उनमें मेरा नाम जोकर का, जाने कहाँ गए वो दिन, उसकी शुरुआत आप देखें, इतना बढ़िया उस गाने की शुरुआत है, आप बिल्कुल खो जाएंगे। तो हम सुनते
0: क्या
1: हैं उसको।
0: चलिए सुनते हैं ये गाना।

तो श्रोताओं, गाने के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम है बातों बातों में, और आज बातों ही बातों में बहुत सारी बातें निकल के सामने आई हैं, और बातें निकल के सामने आनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारे आज के मेहमान, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ, हमारे

0: हमारे युवा जो है उनकी आकांक्षाएं, जो उनका एम्बिशंस है, जो उनकी सोच है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अंतर आ चुका है। तो अब उस दौर को देखते हैं, इस दौर को देखते हैं, क्या अंतर पाते हैं और क्या युवाओं को सलाह देना चाहेंगे?
1: देखिए, आज का युवा, उस समय टेक्नोलॉजी कम थी, लोग डेवलपमेंट कर रहे थे, लेकिन शहर भी पटना काफ़ी कुछ बदला है। इतने दिनों में काफ़ी कुछ बदल गया है। बहुत सारे सड़कें अच्छी हो गई हैं, पुल पुलिया वगैरह बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कुछ बदला है। आज का युवा, उसके बावजूद उसकी अब सोच बदल गई है, वो उसमें छटपटाहट एक है कि हम क्या करें। तो सबसे पहले हमारा सुझाव है कि अपना कैरियर आप खुद पहले डिसाइड करें और उसके लिए पूरे लगन से लगें। ये नहीं कि हम ये बनना चाहते हैं और हो गया,
0: केवल सोचने से कुछ नहीं
1: सोचने से
0: होगा।
1: कुछ नहीं है। उसके लिए आप कैरियर स्कूलिंग के समय से आप जिंदगी में आपको क्या करना है वो डिसाइड आप कर लें और तब उसी क्षेत्र में आप बढ़ें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद सिन्हा जी, आज आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी बातचीत की। बातों ही बातों में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। तो श्रोताओं, अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे बातों बातों में। इस कार्यक्रम में विनोद कुमार सिन्हा से बातचीत कर रहे थे अंशुमान झा। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हम अगला कार्यक्रम प्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
6: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
3: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
4: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और

0: अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
2: अमेरिका एंड इंडिया,
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
2: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच
1: अदर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से

निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीराजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासर मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और BJP लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीराजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन-आमेज बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में MSME के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें समाज दुश्मन अनासिर शामिल थे। वजारत ने बताया कि इन वाकयात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और रेलवे की तहफुजाती फोर्स पूरी सरगर्मी के साथ इसकी छानबीन कर रही है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज को वसत देने और सिक्योरिटी कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। हुकूमत ने आज एक बार फिर यकीन दिलाया है कि भारत में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की भरपूर सप्लाई है और रिफाइनरीज मांग पूरा करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर रही हैं। LPG की पैदावार में इजाफा हुआ है और रिफाइनरीज में रोजाना तकरीबन 46 से 47 हजार टन LPG तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत

0: हाल पर बैन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सप्लाई मुस्तहकम है और सभी पेट्रोल पंपों पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: रसोई के मकसद के लिए एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और पिछले 3 दिन में 1 करोड़ 34 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर फराहम किए गए हैं। सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल ने मुतासर मुल्कों से आने वाले या वहां से गुजरकर आने वाले मुसाफिरों के लिए इबोला बीमारी के मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक वो मुसाफिर जिन्होंने ज्यादा खतरे वाले मुल्कों जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान शामिल हैं, इनका सफर किया है और जिन्हें बुखार, सरदर्द, आसाब में जकड़न, बगैर किसी वजह के खून बहने और कह आने और निगलने में परेशानी का सामना है, तो उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो फौरन तिब्बी अमले से रुजू करें। एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने कहा है कि तस्दीकशुदा इबोला मरीजों या मुश्तबा मरीजों से खून लेने के सबब बराह रास्त राबते में आए मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस से कबल हवाई अड्डे की सेहत ऑफिसर या हेल्थ डेस्क से फौरन रुजू करें। हुकाम ने मजीद कहा है कि किसी मुसाफिर के अपनी आमद के 21 दिन के अंदर ऐसी किसी बीमारी के आसार पैदा होते हैं तो उसे फौरन तिब्बी मदद तलब करनी चाहिए और अपने पिछले सफर के मुतालिक हिफ्जान सेहत के अहलकारों को खबर देनी चाहिए। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सेहत से मुतालिक बैनुल अक्वामी जाब्तों पर अमल आवरी और तहफ्फुज को यकीनी बनाने की गरज से सेहत जाँच और अवामी सेहत के इकदाम के सिलसिले में ताउन करें। दिल्ली से दीपेंद्र और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि 21 मई तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और युगांडा में इबोला की एक अनोखी किस्म बुंदी बोगियों से मुतालिक 650 मुश्तबा मामलात का पता चला है जिसमें 144 अमवात भी शामिल हैं। इतवार को आलमी सेहत तंजीम ने इसे बैन अलाक्वामी तशबीश की एक अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया था, अलबत्ता उसने कहा था कि ये वबाई सतह पर नहीं है। सेहत की इस सूरत हाल के पेश नज़र भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होना थे मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल आज ही भारतीय हुकूमत ने अफ्रीका में रहने वाले, सफर पर जाने वाले या अफ्रीकी मुल्कों से वापस आने वाले इबोला वायरस से मुतासर लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। अब तक भारत में किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ज़रई पैदावार में इजाफा करके गजा की फराहमी को यकीनी बनाने के अमल को मुस्तहकम करने और लाखों की किसानों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाकर दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है। रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गजा और ज़रई तंजीम FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजे जाने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि ये एजाज नए भारत के बढ़ते हुए वकार की एक अलामत है।
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: चौथा भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख से 31 तारीख तक नई दिल्ली में मुनक्कद होना था, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सेहत की सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत अफ्रीकी यूनियन के सदर नशीं और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के दरमियान मुशावरत की गई जिसमें समिट और उससे वाबस्ता सरगर्मियों को मुनक्कद करने पर गौर खोज किया गया जिसमें अफ्रीकी लीडरों और तरफेन की मुकम्मल शराकतदारी और शमूलियत को यकीनी बनाने की अहमियत का एतराफ़ किया गया। इस सलाह मशवरे के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि चौथा भारत अफ्रीकी फोरम समिट बाद की किसी तारीख पर तलब करना ज्यादा मुनासिब होगा। समिट और इससे वाबस्ता मीटिंगों की नई तारीख बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी और जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा। भारत ने अफ्रीका के अवाम और वहां की सरकारों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि वो अफ्रीका की CDC की क्यादत वाली कोशिशों में तआवुन के लिए तैयार है। जिनका मकसद सेहत की मौजूदा सूरतहाल से निमटना है।

0: ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही है। भारत ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों खुसूसन सरहद पार की दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुत्तहिदा आलमी कोशिशों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए मगरबी खित्तों के खारिजी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी हिमायत करने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए MEA के सेक्रेटरी ने दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने और उनको पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी की माली एयानत इंतहा पसंदी और दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से उभरती हुई टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए मजबूत बैन अलाक़वामी तआवुन की अपील की। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाज़राई में आम शहरियों के तहफ़ुज़ के बारे में सलामती कौंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदा हरीश प्रवर्तन ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी की बात है कि पाकिस्तान ने जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो कुल्ली तौर पर भारत के दाखिली मामलात हैं। जनाब हरीश ने ये रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के स्कूल तलबा के एक वफद ने आज उपराष्ट्रपति भवन में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया ने सरकारी स्कूलों के गरीब और पसमानदा तबके के तलबा को एक तालीमी दौरे पर दिल्ली लाने के कदम को सराहते हुए कहा कि इस तरह के दौरों से तलबा क्लासरूम से हटकर काफ़ी कुछ सीखेंगे और उनके नज़रियात में वसत पैदा होगी। नायब सदर जमहूरिया ने अपनी बातचीत में तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने मौजूदा माली हालात की वजह से हिम्मत न हारे। उन्होंने ये भी कहा कि तालीम से वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के अहल बनेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 16वीं आसाम कानून साज असेंबली का स्पीकर मंतखब होने पर रंजीत कुमार दास को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जनाब दास का कानून साजी का वसी तजर्बा और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतजलजल अज़्म असेंबली के वक़ार और जमहूरी रिवायात को मजबूत करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए शदीद से शदीद तरीन गर्म लहर की सूरत हाल के बारे में रेड अलर्ट किया है। इस तरह की सूरत हाल इस हफ्ते जारी रहेगी। इसी तरह के हालात दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और साहिली आंध्र प्रदेश में भी रहने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा पंजाब राजस्थान तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल और तेलंगाना में कल से इख्तितामी हफ्ता तक गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आइंदा 2 से 3 दिन तक गर्म और मरतूब मौसम रहने की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि सब हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इतवार तक शदीद से शदीद तरीन बारिश होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल तक गरज चमक और झालाबारी के साथ तूफान की पेशगोई की है। इसी दौरान IMD ने अंडमान निकोबार जजायर केरलम माहे लक्षद्वीप उत्तराखंड साहिल कर्नाटक कोंकण गोवा और शिमाल मशरक के खत्ते में आइंदा 2 दिनों तक बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बारे में भी पेशगोई की है। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइस ने आज मुंबई में कौमी स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और घंटी बजाने की रिवायती तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कलीदी खुतबा देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि कुब्रुस भारत और यूरोप के दरमियान एक कुदरती राहदारी है, नीज वो वसीतर मशरकी बहरे अरब और मशरक वस्ता के दरमियान एक राहदारी है जो उमंग इख्तरा और मुस्तकबिल पर मरकूज खाके के साथ सियासी और इकतसादी इस्तेहकाम फराहम करती है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत कल अच्छी कारकर्दगी वाली निगहदाश्त मईशत तख्लीक देने के एक वर्ष

0: ورچوئل پروگرام کا انعقاد کرے گی۔ وزارت نے بتایا کہ اس تقریب کی اہم سرگرمی معمر شہریوں کے لیے جیون ایپ اور معمر افراد کی نگہداشت والے کرنے والوں کے بارے میں جانکاری کے شتایو ڈیش بورڈ کا آغاز کرے گی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں جاری ایک میچ میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو جیت کے لیے 230 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اس سے پہلے چنئی سپر کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ گجرات ٹائٹنز کی طرف سے سدرشن نے 53 گیندوں میں شاندار 84 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا 5 ملکوں کا دورہ سماج کے ہر طبقے کے لیے فوائد کی گارنٹی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھارت کو ایک بھروسے مند پارٹنر کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ٹیکنالوجی سے چلنے والے سیکیورٹی نظاموں کو بڑھانے اور سیکیورٹی کی کارروائی کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ حکومت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ملک میں خام تیل، پیٹرول، ڈیزل، قدرتی گیس اور ایل پی جی کی خاطر خاص سپلائی موجود ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है।
2: देखिए, हीट वेव जो हमारा समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज का टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिवेल करता है।
1: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हम इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
2: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल था, काल बांडा में ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री। तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया, कर्नाटक कोस्टल एरिया, वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग वो जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
2: हीट वेव भी आजकल स्लो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव में चलते बहुत कर कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें 4 कलर जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 4 कलर में देते हैं। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहाँ येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है। एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइन होता है कि ऐसे ऐसा स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, NDMA या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, यही हम कलर को वार्निंग के देके उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देख के उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
1: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और तीव्रता होती है।

0: है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
1: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं? हमारा जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम लेह लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में, जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है। तभी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
0: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है। किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
1: देश की बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये तीन राज्य जो है मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर दिए हुए हैं। देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा। धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
0: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
1: हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है, हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे। दिल्ली में क्या है, आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह में 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि एक दिन के अंदर, आज ये शाम को 4 बजे के बाद किया होगा, 6 बजे के बाद किया होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हैवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने AI का टेक्निक टूल भी हम उसमें लगा के उस हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
0: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं?
1: हाँ, अर्बन हीट आइलैंड ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से, तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा, और उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका AC है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
0: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
1: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहला स्टार्ट हुआ, बहुत सारे राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो IMD की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा, तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान, तो ये हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है, ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
0: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है, एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आप को भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है, तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
1: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए।

0: डायरेक्ट सनलाइट का इतना वो करना चाहिए जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है, या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा, या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो, उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, कभी हम देख

0: वाह इफेक्ट की बात होती है, जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है।
1: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली, दिल्ली का तो हर साल में तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा, या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर के कारण, काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है, लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है, तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए हमको एक्सट्रीम बोलते हैं, वो ऑलरेडी हर मंथ का हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसे कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है, एलिनो के कारण तो आपका मानसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है, और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है, और थोड़ा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण, बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है, तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल फैक्टर के भी ऊपर निर्भर करता है।
0: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: मॉनसून का IMD फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है, एलिनो वैली बताया कि एलिनो जो है मानसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकाता है, मतलब मानसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एलिनो होगा, ये हमारा जो फोरकास्ट, उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है, तो इसलिए एलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, और इसका जानकारी हमने पब्लिक को गवर्नमेंट को सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
0: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
1: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं, लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है जिसको हम बिलो नॉर्मल नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारण तो ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट में तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का कुट पार्क और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
0: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में, खासतौर पे हीट वेव की परिस्थितियों में, अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सकें।
1: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जो जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े, एंड पानी सफिशिएंट पीना चाहिए, ये सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहे, क्या क्या करोगे, एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है, एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैल है उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
0: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
1: मौसम विभाग तो हम सर अपडेट करते रहते हैं, हम जो जो परिस्थिति है जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बताए हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउ कास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
0: डॉक्टर पटनायक इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR

0: Listeners, you can listen to this program again on our YouTube channel, News on AIR Official, and on our mobile app, News on AIR.
1: Insights.
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में जमीर फिल्म का ये गीत। शब्द हैं सही लुधियानवी के और संगीत दिया है सपन चक्रवर्ती ने।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है महेंद्र कपूर की आवाज में गुमराह फिल्म से। गीत लिखा है सहेल लुधियानवी ने और इसे संगीत दिया है रवि ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, शब्द है इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं मौसम फिल्म का ये गीत। गुलजार की लिखी इस रचना को तर्ज दिया है मदन मोहन ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनते हैं एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं छोटी सी बात फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है योगेश ने और इसे संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कुछ और मधुर गीतों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

पुनः हाजिर हैं कुछ और मधुर गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं दो बदन फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले की आवाज में। गीत लिखा है शकील वदायनी ने और इसे संगीत दिया है रवि ने।

श्रोताओं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आइए सुनते हैं आंधी फिल्म का ये गीत। शब्द है गुलजार के और संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज़ में आइए सुनते हैं अनुरोध फिल्म का ये गीत। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: Chand Kumar. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

11:10 हो चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा समाप्त होती है। हम पुनः आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे कल प्रातः 5:43 से। जय हिंद।